0: जद्दा से रुकने कौमी असम्बली फजल खान को 22 सितंबर को रशकई से उठाया गया। जनूबी वजीरिस्तान से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली जुबैर खान को 22 और 23 सितंबर की दरमियानी शब डेरा इस्माइल खान में उनके घर से अगवा किए जाने का वाकया भी रिपोर्ट हुआ। पीटीआई के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद रियाज को 25 सितंबर, सवाद से रुकन सूबाई असम्बली सुल्तान रूम को 26 सितंबर को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि वह गोली चलाएंगे, हम अपने सीने पेश करेंगे। इनकी कोशिश है कि हम कोई गैर आइनी कदम उठाएं, लेकिन हमारी जिद्दोजहद आइन और कानून के अंदर रहकर ही होगी। मशरकी पाकिस्तान को अलग करने वाले अब सूबे में गवर्नर राज लगाने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, मगर हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। हम किसी के बयानिए में आकर मुल्क को टूटने नहीं देंगे। हमारा लीडर तो कौमी यकजहती की अलामत है। मैंने 7 मुतालबात पेश किए और चैलेंज दिया कि इनमें से एक भी मुतालबा गैर कानूनी साबित कर दें, हमारी दी गई पॉलिसी पर अमल करें, तो 100 दिनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल हो सकता है। वफाकी आईनी अदालत ने बुशरा बीबी का जमानत से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस अली पाकिर नशवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत 15 अक्टूबर को करेगा। वाजे रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की सजा मौतली के लिए वफाकी आईनी अदालत से रुजू किया गया था। सामीन को बताते चलें कि आज GTA और इसके गिरदो नवाह में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 सेंट कमी का इम्कान है। इसी के साथ खबरें इख्तिताम पजीर हुई।
1: टोरंटो 360 टीवी आपका अपना 24/7 चैनल, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बोल, शावा और जूम बॉक्स पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में देखिए। टोरंटो बेस्ड पाकिस्तानी चैनल्स में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल। सुबह अजान फजर के बाद एक पारे की तिलावत उर्दू तर्जमे के साथ, इस्लामिक सेगमेंट, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, सोशल इश्यूज, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के साथ साथ कॉमेडी प्रोग्राम भी। हर रात 8 और 10 बजे टोरंटो 360 स्पेशल प्रेजेंटेशन। पाकिस्तानी फीचर फिल्म रात 11 और दिन 1 बजे। शहर में होने वाली तकरीबात की कवरेज और बहुत कुछ। टोरंटो 360 टीवी पाकिस्तान की पहचान, आपका अपना 24/7 चैनल टोरंटो 360 टीवी, आपकी आवाज आपके अंदाज में।
2: टोरंटो 360 जेलविन अब आप LTV, Amazon Fire TV, रोको टीवी के साथ साथ गुगल के थ्रू रॉजर्स पे भी हमारे निशान देख सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुर के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच 15 अक्टूबर को केस की समाअत करेगा। एडवोकेट शेर अफसल मरवत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी चैलेंज कर रखी है। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया कि सजा याफ्ता शख्स किसी अवामी ओहदे की नामजदगी का अख्तियार नहीं रखता। इमरान खान साहब ने इन्हें नामजद किया था और अब वो नवाज शरीफ साहब का हवाला देते हैं कि वो जब उनकी किसी भी एक शायद मुकदमे में उन्होंने कोई तकर्रियां की थी तो उनको नल एंड वाइट करार दिया था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक तो शेर अफसर मरो साहब अभी कहते हैं कि मैं हूँ PTI में, PTI का हिस्सा हूँ, गो के टेक्निकली जितने भी PTI के जो टिकट कह लीजिए, क्योंकि दूसरी टिकट पे वो सब लोग किसी और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर थे, गो के 90 सीटें हैं लेकिन वो आज़ाद रुकन उनको जो है वो तसव्वुर किया जाता है। और शेर अफसर मरो साहब खुलकर जो है वो तनकीद भी करते हैं सुहेल अफरीदी साहब पे। अब के अदालत का एक और इम्तिहान है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी केस को, क्योंकि फौरी तौर पर जो समाअत के लिए भी मंजूर कर लिया गया है, उनको यहाँ पे नाहल करके एक नया केओस जो है वो KP में कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा इमरान खान साहब की ही हिदायत पर जो नया चीफ मिनिस्टर जो है मुंतखब होता है या मुकर्रर होता है, उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही है किसी की, तो वो हिदायत अगर नहीं मिलती है, इनको नाहल कर देते हैं, तो फिर कौन बनेगा नया चीफ मिनिस्टर, क्या तरीक़ेकार होगा। तो कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब पैरेलल चल रही हैं, यहाँ भी मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। तो खैर मुज़ाकरात वाली बात तो मेरे ख्याल ऐसे टाइम पास है, वो मतलब अभी मौलाना फजल रहमान से बात कर लें, फलां से बात कर लें, मुज़ाकरात कई दफ़ा हो चुके हैं, कई दफ़ा बैठ चुके हैं, कोई हल नज़र आता ही नहीं है उसका, ना वो मानने को तैयार है ना वो मानने को तैयार हैं। और अभी तक जो लॉन्ग मार्च है वहीं है, अभी तक चला ही नहीं है, वहीं घूम रहा है, और मैंने लगता है कि अगले 15 तारीख तक तो वो इस्लामाबाद की तरफ आता नज़र नहीं आता। शायद ये भी इंतज़ार कर लें 15 अक्टूबर का, क्योंकि आज वहाँ पर तो 9 तारीख हो गई है और बाकी जो है वो 6 दिन बाकी हैं। تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کنفیوژن والی صورتحال ہے اور آج سے نہیں ہے, پچھلے کئی سال سے یہی صورتحال ہے. اور روز ہم بھی بات کرتے ہیں, پاکستان کا بھی ہر چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ان دی اینڈ جو ہے وہ چلیں ایک لوگوں کو بھی شاید کیتھارسس کا موقع مل جاتا ہے ہر جگہ پہ, کیونکہ آؤٹ پٹ تو کچھ نظر آ ہی نہیں رہی ہے. وہ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے جی بس بڑا مشکل, ابھی بس تھوڑے دن باقی ہیں حکومت کے بھی, چلیے وہ بھی چلے جا رہی ہے, دو تین سال تو انہوں نے بھی گزار لی ہیں, دو سال بعد تو ویسے الیکشن ہو جائیں گے. تو ایک سسٹم ہے جو کہتے ہیں نا داروں کا سفر ہے, پاکستان میں داروں کا سفر جاری ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ ہوں دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग गाला डिनर सैटरडे अक्टूबर 10th को कैपिटल बैंक्वेट हॉल में सागा में हो रहा है। हमजा लिबासी खासतौर पर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और ये नेक काज है, जरूर इसको सपोर्ट कीजिए। फॉर टिकट्स इन्फॉर्मेशन कॉल वसीउद्दीन 416-566-3642 416-566-3642। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले 8 बजे का वक्त था लेकिन अब उसको 6 बजे कर दिया गया है और इस तरह से 9 बज जाएंगे हम, यानी शाम को 6 बजे वहां से शुरू होगा, क्योंकि कहते हैं सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। तो कैनेडियन वक्त देखें तो सुबह 9 बजे जो है ये मैच शुरू हो जाएगा और कप्तान जो हैं फरहान जो हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कप्तानी कर रहे हैं, बड़े वो इस वक्त पुरजोश भी हैं। तो लेट्स सी क्या सूरत हाल कल पहले T20 बनती है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर लीग PSL के 12वें एडिशन की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 18 मार्च से 2 मई तक ये खेला जाएगा 2027 और इवेंट में इस बार भी 8 टीमें शिरकत करेंगी।

0: करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यू लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स
1: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 9052829868।
0: यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम की एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप घर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं और हुकूमत से 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक का लोन हासिल करें जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें कोई एग्जाम भी नहीं है, कोई क्रेडिट चेक नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, कोई पर्सनल गारंटी नहीं और ना ही कोई इनकम रिक्वायरमेंट। इनकी फीस सिर्फ $199 है। अभी कॉल कर लें 4372643175।
2: I'm your counselor candidate Naila Saeed from Ward 7, Mississauga. I'm an educator, mother of three daughters, master's in public administration and proudly serving the community last 28 years. Vote in support, main 28 saal se community ke saath judi hu aur maine apni successful business yahan establish kiya hai jiske zariye se hazaron subsidized child care spaces create hue hain, kai so jobs create hue hain. Now I want to make a real change in Ward 7. I'm bringing that practical, compassionate leadership on the table and I need your help to be your voice. I need your support to become your representative for Ward 7, Mississauga, as a counselor candidate.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
0: आज की बदलती दुनिया में कनाडा में डॉक्टर और लॉयर के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर का होना भी बहुत जरूरी है। क्या किसी इमरजेंसी में आप और आपकी फैमिली सरवाइव कर सकते हैं? आप अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन बचत नहीं होती। आप स्टेट प्लानिंग के बारे में क्या जानते हैं? इसी तरह आपकी इनकम तो कम है लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा देते हैं। क्या आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अच्छी हो रही है या फिर ना होने के बराबर? अगर एक भी सवाल का जवाब वाज़े नहीं तो आपको जरूरत है एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की। केयर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल लिमिटेड के आरिफ शेख और उनकी टीम आपके इन मामलों में आपको प्रोफेशनली गाइड करेंगे। आरिफ शेख ऑफ केयर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल लिमिटेड एट 416-722-1111 या लॉग इन हो careinsurance.ca फॉर केयर यू ट्रस्ट। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
6: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
0: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के तावन से पेश किया जा रहा है. फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861.
7: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. اچھا جناب, ہم کچھ آج کے دو تین ٹاپکس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو شیر افضل مروت صاحب نے جو ایک آئینی درخواست جو ہے آئینی عدالت میں جو کی ہے, اس میں انہوں نے سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کو جب نامزد کیا گیا وہ سزا یافتہ ہیں, اور اس حوالے سے نواز شریف صاحب کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا, اور اس کے بعد اب عدالت اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہوگی. کیا ایسا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ تو دیکھنی جائے گی, کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہاں پہ عدالت کو اپنا رول نہ ادا کر دے 15 اکتوبر کو, کہیں ان کو نااہل نہ قرار دے دے. مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ دونوں طرف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ کوئی ایسی آپس میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں, لیکن دونوں طرف سے ملے وہ ضرور ہیں. دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کے لیے سفری انتباہ جاری کیا کہ سعودی عرب پہ جب میزائل حملے لگاتار ہو رہے ہیں کہ وہ احتیاط کریں, یمن کی سرحد سے 10 کلومیٹر کے اندر تک جو ہیں وہ سفر نہ کریں. پاکستان اور سری لنکا کا پہلا T20 میچ کل ہو رہا ہے, اور دیکھیں اس میں کیا صورتحال بنتی. تنقید تو بہت ٹیم پہ ہوئی ہے, لیکن شاید پاکستان میں ہونے والے میچز, بہرحال پاکستان جیت ہی جاتا ہے, لیکن کل جو ہے ان کا بھی پہلا ایز اے کیپٹن پاکستان میں فرحان صاحب کا, دیکھیں کیا رزلٹس بنتے ہیں. کالرز اس وقت موجود ہیں, تو فرسٹ آج اسحاق ملک صاحب پہلے ہی کالر تھے, تو اسحاق صاحب کو لے لیتے ہیں. آنر اسحاق بھائی, آپ آنر ہیں, بات کیجیے.
8: جی السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام سر.
8: جی جناب, میں نے یہ بھی آج جو ہے یہ بریک نیوز دیکھی تھی, تو جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے ایز اے لائر جو بات کی حامد میر کے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کے تحت اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل بکواس چیز ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا, اور اس کو بالکل عدالت جو ہے نا اس کو مانے گی نہیں. تو وہ ان کا اپنا جو رائے ہے,
7: صاحب کی اپلیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.
8: جی جی بالکل بالکل, کہتے ہیں یہ ایک سیاسی جو ہے نا ایک وہ انہوں نے گیم کھیل لیا ہے ان کو ان کے ساتھ
7: پریشرائز کرنے کے لیے,
8: تو ان کو جی پریشرائز کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں آئینی طور پہ ایز اے لائر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی جو ہے یعنی نام بالکل بیکار چیز ہے, انہوں نے یہ کہا ہے, یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے وہ.
7: بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک.
8: اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بیچ میں جب بھی کوئی سیاسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ایز اے سیاسی لیڈر جو ہے ہر جگہ جو ہے آپس میں ملنا اور جلنا یہ چیز ہوتی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ پریشر تو یہ ہے گورنمنٹ میں کہ آپ مذاکرات رہے بنسبت کہ آپ جو ہے کسی ایکشن یا کوئی اس کی طرف جائیں, کیونکہ اس سے پھر اور حالات خراب ہوں گے. پتہ لگا کہ جو چیز کے پی کی میں ہو رہی ہے وہ دوسری جگہ پھیل رہی ہے پورے پاکستان میں, تو یہ چیز ہے. بہت بہت شکریہ.
7: تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں, 5415 سر آپ آنے میں بات کیجیے. 5415
9: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7: جی وعلیکم السلام سر.
9: پٹی صاحب کی آر ٹی کو.
7: جی بالکل ٹھیک سر, تھینک یو, بہت شکریہ.
9: آج تو میرا بڑی جلدی,
7: ہاں تھوڑا نمبر کمال ہے تو اس پہلے کال کر لیے. جی
9: اچھا, تھوڑا جہ اپنے کوسچن ریپیٹ کرو گے کیونکہ میں دوسری پاس
7: سر کال پھر جاتی ہو جاندی. پہلے میں نو 7997 او بھی کر دے سی, اور میں انہوں نے کہندا سی تو سنو تن میں نال پھر اس بار ریپیٹ کر دوں گا. 7997 سر آپ آنے رہے, 7997 آپ آنے رہے سر, بات کیجیے.
10: کیسے ہیں آپ؟
7: جی بالکل ٹھیک سر, تھینک یو.
10: دیکھیں یہ تو اچھا سائن ہے کہ لوگ آپس میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا ضبط اور تحمل سے کام کرنا چاہیے دونوں طرف.
7: اوکے
10: ٹھیک ہے. ابھی جو یہ عدالت ہے, میں سے سچ کہوں تو پبلک کو عدالت کی سپریم کورٹ کی رولنگ پہ اور ججوں کی رولنگ پہ کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ یہ سب اپنے اپنے پسند کے جج لگاتے ہیں, اور ہمارے بھی اپنے بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی, ان کی کوالیفیکیشن کچھ نہیں تھی, صرف جس سیاست میں جس کے ساتھ اس کا واسطہ تھا
7: جی
10: ان کو پوسٹ کر دیا گیا تھا.
7: اوکے,
10: تو اس لیے عدالتیں جو ہے وہ اسی طرح سے ہے, اور ہم سب پبلک کو پتا ہے پاکستانیوں کو کہ عدالت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور کتنا لمبا چلتا ہے, ڈیٹ کے بعد ڈیٹ, اور لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, तो एक तो ये है कि अदालत जो करेगी, अदालत बनी हो भाई, आपकी अदालत वो अदालत नहीं जिसको आप अदालत कहते हो।
7: पर ये तो केस जिस तरह से लगा है ये तो 15 अक्टूबर को है, ये इसका फैसला ना कर दें क्योंकि नाहली का केस बन सकता है सोहेल अफरीदी
10: साहब। वो इसीलिए देखे ना, वो इतने जल्दी लगाने की मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्यों लगा रहे इतने, वो इसीलिए लगा रहे हैं। और अगर इसमें एक बात, अगर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है और उन किसी जो भी पोजीशन के लोग हैं उनको ये समझ जाना चाहिए कि लोग बेवकूफ नहीं है। अब वो 1950 वाला या 1960 वाला पाकिस्तान नहीं है। इस वक्त हर बंदे के हाथ में सेलफोन है, दुनिया में है, हर जगह हर चीज लोगों को मालूम होती है।
7: ठीक।
10: और नाइंसाफी जो है ना, और एक बात याद रखे, इंसान का कानून तो छोड़े, ये जनरल हो गए या ये मिनिस्टर हो गए या प्राइम, इनकी कोई औकात नहीं है, जो ऊपर वाला निजाम चलाने वाला है
7: जी
10: उसकी सजा से डर जाए। अगर आप अपने जमीन पे नाइंसाफी कायम रखते हो ना, और अभी कल की खबर थी कि 48% लोग गुर्बत से नीचे हैं, वो $3 वाली, मेरा ख्याल में वो मुनासिब खबर नहीं थी, अब इतना भी नहीं है, वो रियल खबर नहीं है।
7: सही है,
10: $3 में कौन गुजारा करता है, ये ऐसी पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें ढूंढ ढूंढ के ये लोग डाल रहे होते इंटरनेशनल वाले भी, और इनके पीछे भी कुछ होते हैं। इंडिया में $2 में पता नहीं $1 में लोग जिंदा रहते हैं।
7: ठीक,
10: तो क्या उसमें,
7: अच्छा इस मौलाना फजल रहमान साहब कोई किरदार अदा करेंगे या बस वो भी टाइम पास है?
10: देखिए यार, मौलाना फजल रहमान, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर नहीं है, पाकिस्तान में आर्मी के लीडर नहीं है, जो जो जंग के लीडर होते हैं, जो अपने प्रोफेशन में माहिर होते हैं,
7: माहिर हैं, को अभी साबित नहीं किया पिछले साल, कमाल कर रहे हैं आप।
10: नहीं, वो एयरफोर्स ने किया,
7: तो आर्मी ने नहीं किया। वो जन फील्ड मार्शल वो है ना,
10: नहीं वो फील्ड मार्शल
7: आपका अपना पॉइंट
10: ऑफ व्यू है यार, बाद में बने, वो एयरफोर्स का काम था, एयरफोर्स का तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया, वो बेचारे आए नहीं ना रेडियो पे ना टीवी पे ना खबरों में, जिन्होंने जहाज गिराया या नहीं गिराया, काम तो उनका था। एमएम आलम होते थे, आपको पता है जंग हुई थी, एमएम आलम होते थे,
7: उन्होंने 5 जहाज गिराए थे विद इन मिनट्स,
10: गिराए थे ना, वो पूरी खबर आई थी। इस जंग में, आजकल की जंग में एयरफोर्स की बहुत बड़ा एक्शन होता है।
7: बिल्कुल ठीक है सर,
10: एयरफोर्स जो करती है ना, और उनको वो रिगार्ड देना चाहिए था, उनको भी कुछ चीज नवा देते, 10-20 प्लाट उनको भी दे देते,
7: क्या पता दे दिए सर, बता के थोड़ी देना होता है जब ऐसे लोग,
10: नहीं वो नहीं बाबा, सर सर सर चले, आप अभी आप तो अभी वही बात,
7: नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, जब इस किस्म के ऑपरेशन में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हिडन ही रखा जाता है।
10: भाई फौजियों को भी दो, जो सिपाही है ना
7: सर, सबको मिलते हैं रिटायरमेंट पे, फौज का अपना सिस्टम है,
10: और
7: नहीं सर मिलते, चलो ठीक है सर, ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं मौजूदा दोबारा बता दूं, सोहेल अफरीदी साहब कहीं 15 अक्टूबर को नाहल तो नहीं हो जाएंगे, आईनी अदालत में दरखास्त शेर अफजल मरवा साहब की है, मौलाना फजल रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई कहती कि अभी मुज़ाकरात उनके हवाले से, उनको उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूरत नहीं है। अमरीका बरतानिया ने अपने शहरियों के लिए सफरी इंतबाह जारी किया है सऊदी अरब में जो मिजाइल हमले हो रहे हैं उस हवाले से। तो चलिए 5415 सर आपको दोबारा लेते हैं, 5415 सर आप ऑन एयर हैं, 5415 जी शोर साहब, 5415
11: जी, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम साहब जी, सर
11: जनाब पटी साहब क्या?
7: जी जी बिल्कुल जी सर।
11: अच्छा पटी साहब, बात ये है कि देखे, पहले मैं मौलाना फजल रहमान से शुरू कर
7: जी,
11: देखे मौलाना फजल रहमान हो या कोई और हो, बात ये है पटी साहब कि ये सब पीटीआई समेत ये सब तालिबान से डरते हैं, ये सब
7: मौलाना फजल रहमान
11: पाकिस्तान, मौलाना फजल रहमान सबसे ज्यादा डरता है बटी साहब।
7: अच्छा
11: मौलाना फजल रहमान पे कितने हमले किए हैं उन्होंने,
7: ठीक है सही हो गया,
11: और मौलाना फजल रहमान ने कितनी दफा अपनी जबान खोली है, ये अंदर तबान देते हैं बटी साहब उनको सारे।
7: अच्छा
11: ये बुजदिल है, और अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी ने ये जब तय कर लिया कि हमने ये ग्रुप नहीं करने, और अगर देखे भट्टी साहब, अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर झुक जाता है इन इन इन इनके सामने, तो फिर पीछे बचेगा क्या? ये जो बड़ा शोर करते हैं कि ये पॉलिसियां तुम्हारी, और इन पॉलिसियों से दहशतगर्दी होती है, भट्टी साहब आपको वो दिन भी याद होंगे जब उन्होंने स्वात में अदालतें लगा के फांसियां देना लोगों को, बच्चियों को स्कूल जाना मना कर दिया था, हमाम को शेव करना मना कर दिया था
7: जी।
11: पट्टी साहब ये इनकी खाम ख्याली है, ये आमकू की जन्नत में रहते हैं, ये जो कहते हैं ना कि ये हमें कुछ नहीं कहेंगे, पट्टी साहब एक दफा उनको आने दें,
7: सही,
11: फिर देखें वो इनके साथ भी क्या सलूक करते हैं।
7: ठीक,
11: इसलिए अगर उस चीज को रोक रहे हैं तो वो पाकिस्तान रोक रहा है, एक बात तो ये होगी।
7: ठीक है,
11: दूसरी बात पट्टी साहब, ये जो रोज ये जो पीटीआई ने मुल्क में माशा लगाया हुआ है
7: जी,
11: भट्टी साहब देखें हुकूमतें एक महीना दो महीने तीन महीने चार महीने छह महीने, भट्टी साहब जब से ये वजीर आला आया या इससे पहला वजीर आला आया, भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि इन्होंने कौन से सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर, सूबे में जो दहशतगर्दी हो रही है उस दहशतगर्दी पर भट्टी साहब कौन से इजलास किए हैं, कौन से कदम उठाए हैं और पैसा इन्होंने कितना लिया है?
7: सही, अच्छा ये जो अभी आईनी अदालत में दरखास्त है उस पर बात करें कि वो क्यों ऐसे मौके पे क्यों एक्सेप्ट कर लेगी उसको और 15 अक्टूबर की डेट भी दे दी है।
11: भट्टी साहब बिल्कुल वो एक्सेप्ट के, देखें मेरी बात सुने, जबकि कोई भी बंदा किसी भी आयन की तशरी मांगता है तो भट्टी साहब अदालत आईनी अदालत का काम क्या है, उसका काम ही ये है वो तशरी करेगी। और देखें ये जो एक
7: बाकी जो एप्लीकेशन होती हैं वो उन पर तो इतनी जल्दी रद्द अमल नहीं आता है, मतलब इसी एप्लीकेशन पे क्यों फॉल फॉर।
11: भट्टी साहब देखें ये खबर जो होती है ना हमेशा वो उसकी बनती है जिसका चर्चा होता है, ठीक है कि नहीं, हर बंदे के रोज कितने अदालतों में फैसले होते हैं वो सारे खबरों में आते हैं
7: नहीं, लेकिन नहीं अदालत का मतलब यही हुआ ना फिर तरफदारी नहीं होगी अदालत की तरफ से।
11: भट्टी साहब देखें अगर तो अदालत कानून से हट के साथ बात करेगी, देखें मेरी बात सुने, डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि वो केस आज लग गया या कल लग गया, इसका मतलब है कि वो उसके पीछे छुपना चाहते, अगर अदालत कानून के खिलाफ फैसला करे फिर हम कहेंगे ये अदालत ने बदनीति की है, अगर अदालत कानून के मुताबिक फैसला करे तो भट्टी साहब उसमें बुरा है।
7: ठीक,
11: ये तो स्पीडी इंसाफ जो है ये तो इमरान खान का नारा है, इमरान खान तो कहता था कि मैं इंसाफ जल्दी सबके लिए एक जैसा इंसाफ कराऊंगा, और अगर इंसाफ जल्दी होता है तो मेरे ख्याल में इसमें तहरीक इंसाफ को तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए।
7: चलिए
11: कि ये देखे पाकिस्तान में स्पीडी इंसाफ हो रहा है।
7: ठीक हो गया सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इशफाक अहमद साहब आप ऑन एयर सर बात कीजिए। इशफाक अहमद साहब, इशफाक अहमद
12: जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम जनाब,
12: सर क्या हाल चाल है? सबसे पहली बात कि कौन सी आईनी अदालत, आप मानते हैं आईनी अदालत को?
7: बनाई हुई है, मानना पड़ेगा, अब क्या करें कोई हल नहीं,
12: मानना पड़ेगा ना, नहीं मानना पड़ेगा।
7: हाँ मैंने कहा वो तो बना दी दो, एक सुप्रीम कोर्ट होगी एक आईनी अदालत होगी, अब जाहिर वो सुपीरियर भी है उससे।
12: कोर्ट में तो फिर भी एक आधा जज है जो अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने के अख्तियार रखते हैं, बाकी आईनी अदालत में सारे लोंडियां हैं उसकी आर्मी की।
7: नहीं ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल करें, जज हैं, मतलब मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया करता हूँ जी।
12: आईनी अदालत कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, क्या गवर्नमेंट भी किसी अख्तियार में कुछ नहीं है, जो ऊपर बैठा हुआ है जो कुछ उसने करना है सब कुछ वो होता है। ये एक ड्रामा किया हुआ है कि जी हमने अगर गवर्नर राज लगा दिया तो सारे प्रधान उठ के सत्यानाश कर देंगे सरहद का, या इमरजेंसी लगा दी वो इसे काबू नहीं होने, चले आप अदालत के जरिए डराते हैं इनको, शायद इसमें कुछ इनको पला हो जाए। उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ना गवर्नमेंट है कोई, ना आईनी अदालत है, बाकी रह गए मौलाना फजलुर रहमान, जहाँ से उसको हड्डी मिलेगी उसने उधर ही जाना
7: है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, शुक्रिया भाई, थैंक यू। अक्रम साहब चौधरी, अक्रम साहब आप ऑनलाइन सर बात कीजिए। 5794 5794।
13: अस्सलाम वालेकुम, भट्टी साहब देखे मैं शुरू दो तबसरे करके आपकी खबर की तरफ आ जाता हूँ। देखे सुप्रीम कोर्ट जो पहले सुप्रीम कोर्ट थी या कोई किसी को बाजार की कोई दुकानदारी थी, सुप्रीम कोर्ट थी ना
7: जी, हाँ बिल्कुल सही है।
13: बाबा जी डैम वाले हमें पता है, सारी दुनिया को इधर पता है कि बाबा जी डैम वाले उसके थे ना, और जब भी कोई केस होता था तो वो हमें याद है तीन का टोला या पांच का टोला आता था ना, वही केस सुनते थे।
7: तो वो तारीख
13: सुन ले, सुन ले मेरी बात, सुन ले आप जो कहेंगे, मैं फिर आपका वक्त जाया किए बगैर मैं बात करता हूँ। देखें हर वो केस उधर लगता था ना तो मजबूरन वो कहते थे सुनना नहीं सुनना, और जनाब कभी जिंदगी में ये भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट बिकम्स द ट्रायल कोर्ट, ये ऐसे नहीं होते। देखे भट्टी साहब क्या सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बारे में आईनी वर्डिक्ट ये नहीं दिया था, दिया था या नहीं दिया था, आप सिर्फ ये बात बताएं मुझे, दिया था ना कि भाई एक कन्विक्टेड पर्सन जेल में सजा याफ्ता बंदा नहीं कर सकता, तो फिर आप भट्टी साहब अब किस बात की मर्चे लग रही है, उन्होंने तो कह रहा
7: है टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है ना, जिस
13: भट्टी साहब देखे अदालत में है, अदालत आज पहले करे या बाद में करे, इन बातों को छोड़ दे, हम मानते हैं आपकी बात, ये फिर या तो बोले पे भट्टी साहब मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ, अदालतें हमेशा ड्राइव एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती रही है ना, तो भाई अब किस बात का रोना पीटना किस बात का है, बात अब समझे, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना और आज ये कह देना जी ये आईनी अदालत, ओ भाई ये पाकिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसने आईनी अदालत बनाई है, जब आप आएंगे आप इसे खत्म कर ले, रोना पीटना छोड़ दे, एक्सेप्ट करें, और आज ये सलमान अकरम राजा को याद आ गया कि ये गलत है, और जो उस वक्त या तो ये कहता कि हम शर्म के सामने झुक जाते हैं कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, और आज भी ये करेगी तो गलत करेगी, ये नहीं करते ये बात इस तरह की, अच्छा ले इस बात को छोड़ते हैं, ये 110% सुप्रीम कोर्ट क्या अपने मुंह पे कारक बनेगी कि भाई पहले हमारा ये फैसला है और आज हम इसको और तरीके से बयान करते हैं, ऐसे नहीं होता, छोड़ते हैं बाद में दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। भट्टी साहब मौलाना फजलुर रहमान ने कोई क्या कच्ची गोलियां खेली हुई हैं कि वो इनके साथ मिल जाए गवर्नमेंट मकसद आनंद फानन, या चले मान लिया कि वो गिरा दे और बाद में पीटीआई के हवाले कर दे, तो भट्टी साहब ये उसके बाले अभी जमे भी नहीं हुए कि वो जिस तरह की वो बंदा सियासत करता है, वो सिर्फ अपना थोड़ा सा दूर है, वो अपना रेट लगवा रहा है हलवा मांडा का जो भी कह ले, तो वो इस तरह के चक्कर है, वो इनके हाथ में आने वाला बंदा है। बात देखे, बात ये हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान टीटीपी वाले, आपको याद होगा मैं गलत बात करूं तो मैं मुजरिम हूं, ये टीटीपी वाले मदरसा देवबंद के पास गए थे,
7: अच्छा।
13: उधर जाके उन्होंने उधर से फतवा लिया था, ये देखे मौलाना फजलुर रहमान सेम मदरसे से और सेम थिंकिंग से सेम मसलक से तलक रखते हैं, तो लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान को भी इनसे प्यार है, इस तालिबान एंड पार्टी से, ये उसी की लहर है और उसी की लड़ी है, और उधर से ये इनका सारा जाके या बाओजदाद मिलता है। बात वो बड़ी सीधी साधी है, मौलाना फजलुर रहमान को बच्चा नहीं है कि वो इनके आगे लग के बंदे आपने ले आए तहरीक चलाए और गवर्नमेंट गिरा दे और बाद में पीटीआई यूटर्न हान बन जाए, भाई तुम कौन और मैं कौन, ये इस तरह नहीं होता, ये सियासत करते हैं बच्चों वाली, इनके पास सियासतदान अब मुजाकरात भी करने जाते हैं तो किसी बंदे के पास हथियार ही नहीं है, इस तरह नहीं बातें होती। बाकी मैं तीसरी बात पे आपका कोई तबसरा नहीं करना चाहता,
7: सऊदी अरब वाले पे क्यों आप उस पे क्यों तबसरा नहीं करना चाहते, वहां पे अभी तो हम भी शुरू हो
13: गए हैं, नहीं हम तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ हैं 110%, लेकिन वो लोग ये देखे अमेरिका और बरतानिया और वो चाहते हैं कि ये मामलात उधर बढ़े, ये सऊदीया को भी टीज कर रहे हैं क्योंकि सऊदीया पाकिस्तान टर्की एक मुश्तरका पैक्ट में आ गए हैं, तो ये अमेरिका को भी ये बात नहीं मकसद अच्छी लग रही कि यार ये हमारे चुंगल से कह ले कि ये आजाद होके दूसरी तरफ चले गए हैं, तो लिहाजा वो तो चाहेंगे कि वहां ये मामलात चले और इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट निकले ताकि सऊदीया फिर इनसे भी मुतनफर हो, या फिर तुर्की और पाकिस्तान को 110% इनके सामने आना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी और हम तो इनके साथ है ना, तो लिहाजा ये मसाइल है, तो ये दिल्ली दूरस्थ, ये 110% ये बंदा इधर नहीं, 9 मई का केस है, ये फैसला हो चुका है, नो मोर दिस पर्सन।
7: चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया। 6141 सर आप अल्लाह हाफिज़। 6141 सर आप ऑनलाइन बात कीजिए। 6141
14: अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब।
7: जी वालेकुम सलाम सर।
14: भट्टी साहब फजल रहमान साहब जो है ना वो बहुत मैच्योर आदमी है, वो उतनी लिफ्ट करवाते हैं इन्हें कि वो अपनी शर्मिंदगी महसूस करें जैसे उनका नाम बिगाड़ा करते थे, जैसे उनके साथ जो है ये वो उनके जो है ना उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला करते थे तो उस पर इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, बाकी गंद इतना कर चुके हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ कि इनका इकट्ठे होके रहना भी ये दिल से इकट्ठे हो नहीं सकते कल्चर के हिसाब से भी।
7: सही,
14: बाकी ऐसा है कि पीटीआई अगर ये बात कहती है कि हम उनसे मिले और कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मिले हैं, तो पीटीआई के अंदर भी काफी सारे धड़े बन चुके हैं और मुझे नहीं लगता दूर दूर तक इनका कोई ठिकाना नहीं है, और ये कोई भी शिकंजे में आएगा तो बहुत सख्त रगड़ा जाएगा जैसे कुछ लोग पहले रगड़े गए। तो इन्हें चाहिए, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसे इन्होंने अवेल नहीं कर सका, इनसे हो गई है थोड़ी बहुत गलती, तो इन्हें चाहिए अब भी कि उन्हें जो है ऑप्शन दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमें दिल से लगाएं, आवाज दे रहे हैं कि हमें दिल से लगाएं। शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि लगा लें, क्योंकि खर्चा तो आफ्टर ऑल कंट्री का हो ही रहा है ना, नुकसान तो दोनों तरफ से हो ही रहा है, और बाहर के चैलेंजेस क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा अंदर जो है अमन रखना जरूरी है। आपने क्रिकेट को टच किया, बटी साहब हम लोगों की फीलिंग ये कहती है कि क्रिकेट इन्हें कम अज कम 5 साल के लिए बंद कर देनी चाहिए, जब तक नकवी साहब है ना इधर दिखते हैं इधर उधर, तो इन्हें क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।
7: अच्छा, वो सऊदी अरब वाले साल आपने उस पर कोई कॉमेंट नहीं किया, जो अभी अमेरिका और बरतानिया ने कहा अपने शहरियों को जो है वो सफरी वार्निंग दी है उन्हें कि भाई अब करीब ना जाए, मतलब अब उस तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। आज बल्कि इदारे ने कहा कि पाकिस्तानी वहां पे मौजूद थे। जी जी,
14: पाकिस्तानी वहां पे मौजूद हैं। देखें बटी साहब, ऐसा है कि ये जो पैक्ट हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, जब आप तीनों ने हाथों में हाथ डाल के, पहले भी आपने हाथ डाले हुए ही थे लेकिन वो सामने नहीं थे, वो छुपी लुकी थे, जब सामने आ गए ना ये, तो ये आपने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और याद रखें फिर इसराइल और यूएस का जोड़ है, और इसराइल जो है वो स्पॉइलर है, वो उधर सारे मामलात को उल्टा टेढ़ा करता है, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके हालात कशीदा हों, आपकी लड़ाइयां हों, आपके बॉर्डर अनसेफ हों, आपकी इकॉनमी अनस्टेबल हो, वो चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन देख लें आप, समझदारी जो है अपने लोगों की, जो चैलेंज एक्सेप्ट किया फिर लगानी है, निभानी भी तो है ना। बहुत शुक्रिया।
7: ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अभी जो कॉलर्स हमारे साथ हैं वो सारे सुनने वाले हैं, तो अभी मैं एक दो कॉल और जो हैं वो इंटरटेन कर सकता हूं, अगर कोई आप कॉल करते हैं तो वो जरूर मैं उसको इंटरटेन कर लूंगा। नाना पाटेकर साहब की जनाब डेथ हुई है, और बड़े वर्सटाइल किस्म के आर्टिस्ट थे, जिसको हम आर्ट फिल्में कहते हैं, उनमें उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है परिंदा मुझे याद है फिल्म उनकी, और बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, और एक जेन्युइन जो है अदाकार रहे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने उनकी जो एक्टिंग थी उसमें देखी कि स्पॉन्टेनियस और डिफरेंट अपना उनका स्टाइल था, और जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। यकीन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक ऐसा नाम है जो उनके जाने के बाद ऑफकोर्स जो है वो खला ज़रूर वहाँ पे जो है महसूस होगा। इसहाक भाई मेरे ख्याल दोबारा आए हैं, अगर वो कोई बात करना चाहें तो चलें, उनको इसहाक भाई को ले लेते हैं, और बस एक वक्त है थोड़ा सा। इसहाक भाई, आप कुछ बात करना चाहेंगे मजीद?
15: जी बिल्कुल, मैंने भी नाना पाटेकर साहब जो है उनकी मूवीज देखी हैं, और ये नहीं है कि 90s या 2000 लाइक अराउंड इन 88-89 में भी जो उनकी जो मूवीज आती थी एज आर्ट मूवीज, तो अगर आप आर्ट मूवीज को भी देखें तो उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी, जो वो मूवी में जिस तरह थे, इसी तरह उनकी रियल लाइफ देख लें आप, कि उन्होंने अपनी हर चीज करोड़ों रुपए जो है उन्होंने ऐसी ठुकरा दिए, किन के लिए? यतीमों के लिए। तो उन्होंने कोई मीडिया या उस वक्त कोई सोशल मीडिया ऐसी कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन इवन के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं, हम जब इनसे फीस का पूछते थे तो ये कहते थे कि ये एड्रेस है, यहाँ जाके ये दान कर दो। तो ये है उनकी रियलिटी के जिस तरह उन्होंने मदद की लोगों की, जो यानी इनके यहाँ इतने सैलाब आते हैं, इतने तूफान आते हैं, या जितने भी ऑर्फन्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो बस ये है, और ये कहते थे कि हर चीज यहाँ रह जाएगी, साथ मुझे कुछ नहीं लेके आना। तो वही चीज हुई उनके साथ, लेकिन वही है कि पूरी दुनिया उनको याद कर रही है उनके जाने के बाद भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब,
7: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब। क्लोज करेंगे यहीं पे, बाकी तमाम लोग जो है वो सुनने वाले हैं, ऑन एयर उनको मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो सुनते हैं, तो मैं अक्सर रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि अगर सिर्फ सुनना हो आपने तो वो 6475060063 पे कॉल करके जो है वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। यहाँ पे जो लोग कॉल करना चाह रहे होते हैं तो उनको हम ऑनर लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला निहारना, बल हौसला भी खोरने की चीज, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज बशत जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर कायनात और मेजबान अर्शद भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और सपुर्द-ए-मौला।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
3: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
4: आप सुन रहे CMRF 9, Monday to Friday, stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours north on Highway 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड डिपार्चर रिसोर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टेइंग कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीज हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। सो कॉल टुडे एट 705-378-2210, 705-378-2210।

0: आप सुन रहे CMR at 9 मंडे टू फ्राइडे, स्टे ट्यून्ड। Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buy back gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीट डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9059461000 for Midland and Sues and 416757 1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर।
3: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।

0: के लिए
1: एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट
0: नंबर टू कॉल इज 416-910-2000 दैट्स 416-910-2000
2: कुछ लोगों का नाम उनके काम

0: एशियन कनेक्शंस रेडियो सुन रहे सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं रणवीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। आज है दिन फ्राइडे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस वीक और अभी लॉन्ग वीकेंड आ गया है और लॉन्ग वीकेंड की सबने तैयारी कर ली होगी। मंडे छुट्टी है लेकिन हम आपकी सेवा में हाजिर जरूर होंगे, अच्छे अच्छे आपको गीत सुनाएंगे। आज आपका और हमारा साथ ठीक दोपहर के 12 बजे तक 10 AM to 12 PM ये सुनते हो आप एशियन कनेक्शंस ऑन CMR FM 101.3। और प्रोग्राम के दौरान कोई नंबर नोट कर लें बातचीत करना चाहें हमसे तो 416-5935 स्टूडियोज का नंबर और मेरा डायरेक्ट नंबर है 416-910-2000। आज के प्रोग्राम में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लेकर हाजिर हो रहे हैं और जो इलेक्शंस चल रहे हैं इसके बारे में डिटेल में बातचीत होगी और कुछ कैंडिडेट से बातचीत भी करेंगे। और सबसे जो कांटे की टक्कर चल रही है इसलिए टोरंटो मेयर की और मिसागा मेयर की है। ब्रैडफोर्ड भी अपनी जगह छा रहे हैं, ओलिविए चाओ भी छा रही है और मिसागा में तो बड़ी बड़ी क्लोज चल रही है टक्कर। और आज कोशिश करेंगे, आज बातचीत करेंगे, बॉनी क्रॉम्बी शायद स्टूडियो पहुंचे, मोस्ट प्रोबब्ली शी इज सो बिजी बट वी विल ट्राई कि आज वो या तो स्टूडियो आएंगे या फिर उनसे बातचीत होगी। सो शुरुआत हर रोज़ की तरह क्रिकेट अपडेट के साथ। आज तक क्रिकेट दे मैच दी चढ़ी लगी हुई लाइन लगी हुई है। गिरीश जी आपका हार्दिक स्वागत, कैसे हैं आप
1: जी? थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत और सभी लिस्टनर्स का भी स्वागत।
0: मुझे कल किसी ने कहा कि गिरीश जी बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं।
1: अच्छा तो हाँ। चलो ठीक है, हिंदी आपसे हिंदी प्रॉब्लम हिंदी में शुरू होता है और आफ्टर यू नो फ्यू सेकंड्स
0: थोड़ी देर ऑटोमेटिक पंजाबी में कन्वर्ट हो जाता हूँ,
1: बाय डिफॉल्ट
0: डिफॉल्ट हो जाता है। कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम। सभी रिस्पेक्ट टू ऑल द लिस्टनर्स
1: जी, बिल्कुल। और क्रिकेट की दुनिया आज बहुत बिजी है, इनफैक्ट 4 इंटरनेशनल मैचेस पैरेलल चल रहे हैं, 2 T20 एंड 2 टेस्ट मैचेस और स्टार्ट करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज का जरा सेकंड T20 गेम है और इंडिया ने शुरुआत की तबड़तोड़ इस वे शुरुआत है। इंडिया की टॉप ऑर्डर जरा कोई गुंजाइश नहीं हैगी एंड 87 for 1 सात ओवर हुए हैं 87 for 1 और जरा इन्हों का रन रेट आ, हालांकि रन रेट हूँ देखा नहीं जाता क्योंकि इन्ना ज़्यादा होंगे 13+ का जरा इस वे इन्हों की एवरेज चल रही है। अभिषेक शर्मा 2 चौके और छक्का लगाया, इन्होंने 20 स्कोर बना के आउट हो गए। संजू सैमसन एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड टूडे, 3 छक्के और 6 चौके लगा के ही इज़ नोटल एट 54, 23 बॉल्स फेस की। ईशान किशन बैटिंग एट 13 और सिमिलर मोड, इन्होंने भी आंदे ही एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं। सो बड़ा ही ताबड़तोड़ मैच जो इस वे चल रहा 88 for 1 7.2 ओवरस। सूर्यवंशी के फैंस में एक बार फिर निराश हुई और उन्होंने टीम च फिलहाल प्लेइंग 11 च जगह नहीं मिली और लगता है कि जो 5 मैचिज आ शायद किसी मैच में जगह मिल जाए, लेकिन फिलहाल टॉप ऑर्डर के जो सारे बैटर्स ने इनफैक्ट श्रेयस अय्यर लास्ट गेम च इन्होंने सेंचुरी लगाई। सो लग नहीं रहा कि जो टॉप के 4-5 बैटर्स ने उन्होंने कोई जगह बने, बट लेट सी क्या होंदा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एंड श्रीलंका इन्हों की जी T20 सीरीज है भी स्टार्ट हो गई, 97 for 4 श्रीलंका की बैटिंग चल रही है, 13th ओवर इस वे चल रहा 97 for 4 और ओपनर उदारा इज बैटिंग एट 57, 7 चौके लगा चुके ने। इन्हों के नाल जो पार्टनरस ने ही इज़ रनिंग आउट ऑफ गुड पार्टनरस क्योंकि अगले 4 जो खिलाड़ी है वो आउट हो चुके ने एंड इट वॉज मैंडिस हू मेड 23, बाकी 3 जो सिंगल डिजिट आउट हो गए एंड शनाका इज नॉट आउट एट 2, सो 101 for 4 एंड स्कोर इज 101.4 12.3 ओवरस हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जरा इस वे चल रहा है, इनफैक्ट पहले दिन का खेल जरा जल्दी ही खत्म हो गया बिकॉज ऑफ वैदर। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, 187 for 6 इन्हों का स्कोर है, ओपनर्स जल्दी आउट हो गए एंड दैन लबूशैन मेड 37 विद 6 बाउंड्रीज, स्मिथ मेड 25, 2 छक्के लगाए इन्होंने एंड रैनशॉ इज नॉट आउट एट 46 एंड कैप्टन पैट कमिंस ही इज नॉट आउट एट 33 एंड ऑफ द डे 187 for 6। एक होर मैच चल रहा जिदा कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान ओनली टेस्ट अबू धाबी से मैच खेलिया जा रहा एंड बांग्लादेश की जी बैटिंग चल रही है 317 for 8 84 ओवरस हुए हैं और पहले दिन का खेल खत्म हो चुका एंड 317 for 8 और फिलहाल ओपनर इस्लाम मेड 67, हसन मेड 83 एंड दैन आल्सो लिटन दास मेड 53 और जो नॉट आउट बैटर्स ने उस हसन इज नॉट आउट एट 11 एंड तेजुल इस्लाम इज नॉट आउट एट 4, सो 317 for 8 ये जरा स्कोर है इस वेले। ये चारों मैचेज चल रहे हैं और 2 जो मैच है इन्हों का टाइम टू टाइम लाइव अपडेट्स दिंदे रहेंगे। एक बार फिर इंडिया का स्कोर 94 for 1 आफ्टर 8 ओवरस
0: जी। और दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शुक्राना स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, 30 मैरीटाइम ओंटारियो बुलेवार्ड और यूनिट नंबर 30 है। और आप नोट करें, प्योर वेजिटेरियन फूड आप खाना चाहते हो तो डाइन इन टेकआउट के लिए नाम और नंबर शुक्राना स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 9057995771 और स्वामी नारायण और जैन फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पनीर लबाबदार एक बार ट्राई करो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। और केटरिंग कराना चाहते हो तो बहुत रीजनेबल रेट्स पे केटरिंग की स्टार्ट, मतलब 1099 में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, गुड क्वालिटी एंड क्वालिटी वेजिटेरियन फूड। नंबर नोट करें 9057995771 शुक्राना स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। और राज्य क्रिकेट की बातचीत चलती रहेगी लगातार, और गिरीश जी हमारे साथ हैं। गिरीश जी का नंबर है 416-451-4001। नाल दिला कुछ टिप्स भी दें रही है
1: जी। बिल्कुल, हमेशा दी तरह याद करवाने के अपनी पॉलिसीज पर निगम और अपनी इन्वेस्टमेंट्स देखो कितना ग्रोथ कर रहे हैं। खासकर पिछले 12 महीने जे डबल डिजिट ग्रोथ नहीं हुई दैन समथिंग इज़ रोंग एंड यू नीड टू चेंज। ओदे ते निगाह मारो, बच्चों के एजुकेशन प्लान जेड़े आ वो बहुत इंपॉर्टेंट ने, और ओदे बारे टिप यही आ कि जस्ट मेक श्योर कि बहुत हाई रिस्क दे विच ना पाओ। बच्चे जो 18 दे होने हैं उन्होंने फीस के पैसे चाहिए आ, उस वेले जो मार्केट क्रैश हो गई तो उन्होंने थोड़ा मुश्किल आ सकती है। सो और कंपनी भी चूज़ करो वह जी कि पैसे जल्दी रिलीज़ कर ले, और जिन्हें दे पैसे देन का जरा है वो जरा ईजी प्रोसैस हो, भी मैं थोड़ी हैल्प कर सकता। कोई भी रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड जो प्लान है जिद इन्वैसटमेंट करनी है वो कोई सलाह लैनी है, माई फोन नंबर इज 416-451-4001।
0: काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें लेकर हाजिर हो रहे हैं और लगातार गलाबाता चलती रहन गया। और कनाडा के जो इलेक्शन भाई गैमा गेमी बहुत है, इस बार अपनी कम्युनिटी
1: बहुत ज़्यादा।

0: एड योर वोटर इन्फॉर्मेशन इन पर्सन. कोई लोकेशन आप ढूंढना चाहते हैं तो वोटर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की चाहिए डिटेल, तो विजिट करें brampton.ca/brampton votes brampton.ca/brampton votes. ब्रेक ले ली, उसके बाद गीत सुनाइए
1: जी.
0: ब्रेक के बाद गीत सुनाते हैं. एक मैसेज आया था, देखो लोगों को याद है यार, कमाल है. बड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था मैंने गीत, कुछ ट्रिब्यूट टू किशोर साहब.
1: ओके,
0: फारूक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, स्टूडियो में बड़ी रौनकें लाई हमने. मंडे करते थे हम डे ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उन्होंने कुछ गीत रिकॉर्ड किए थे किशोर साहब के.
1: अच्छा,
0: मैंने कोशिश की थी लेकिन म्यूजिक अपना बनाया था उन्होंने.
1: ओके,
0: मॉडर्नाइज थोड़ा करने की कोशिश की है म्यूजिक, लेकिन गीत वही है, कंपोजिशन वही है.
1: क्या बात है.
0: सारा जमाना हसीनों का दीवाना. और मलिक साहब थैंक यू सो मच यार, तुम्हें याद से कि मैं गीत गाया है. और हमारे देखो कई रेगुलर जो लिसनर है, दे आर मोर देन ए फैमिली टू अस.
1: जी जी,
0: उनको सारा कुछ याद है. डेफिनेटली प्ले करेंगे गीत ब्रेक के बाद और सीधा ही सॉन्ग. चलो जी, ऑर्डर इशारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कि पहले गीत लगाएं. शुरुआत करते हैं एक प्यारे प्यारे गीत के साथ, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, पिक्चराइज ऑन अमिताभ बच्चन. याद ये रहना इस फिल्म
1: या
0: है,
1: उस पहले भी वो बड़े बड़े ना वेल बॉटम द रिवाज से मैंने पता, व्हाइट उन्होंने पाइयों से की, शाइनिंग थोड़ी जड़ी टॉप से का
0: सर, वो जड़ी ड्रेस डाली थी ना उन्होंने, उसके ऊपर लाइट्स लगाई थी. कहते उस इतनी गर्मी लग रही थी उन दिनों, लाइट्स लगा के ऐसी ड्रेस डाल के डांस करना. और
1: क्योंकि उस पहले एलईडी बल्ब तो होंगे नहीं, रेगुलर बल्ब सुने और बड़ी प्रोड्यूस करते.
0: वंडरफुल, लेट्स एंजॉय. गीत अच्छा लगे तो मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि मेरी ये छोटी सी कोशिश ए ट्रिब्यूट टू किशोर साहब आपको कैसी लगी.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड हफ्ते के 24 घंटे और सातों दिन खुले रहते हैं, जो एक ही छत के नीचे तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रक वॉश करना, तेल बदलना और रिपेयर करना। इनके पास बहुत बड़ा यार्ड है जहाँ काफी कैमरास लगे हुए हैं, ताकि आप ट्रक को वॉश और सर्विस के लिए ड्रॉप करके नेक्स्ट डे पिक कर सको। ट्रक वॉश विद ऑयल चेंज ओनली फॉर $45। फॉर बेटर डील्स एंड बेस्ट सर्विसेज एक बार जाओ ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, 71 स्टैफोर्ड ड्राइव, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9054529955, दैट इज 9054529955।
3: यदि आप एजुकेशन सेल्स में एक एक्साइटिंग करियर ढूंढ रहे हैं, तो कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज इज हायरिंग एजुकेशन रिक्रूटर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एजेंट्स टू प्रमोट हाई डिमांड एंड करियर फोकस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अर्ली चाइल्ड केयर असिस्टेंट, क्लाउड बेस्ड IT सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव AI। यदि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो या आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस है, तो कॉल करें 416-850-1456 और ईमेल योर रेज्यूमे study@thecanadiancollege.ca। कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज, बिल्ड योर करियर, क्रिएट योर फ्यूचर।

0: इमिग्रेशन।
1: जी हाँ, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को चाहिए विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा या स्पाउस और पेरेंट्स को इमिग्रेशन दिलानी है तो राजीव रामपाल को मिले 7895 यूनिट 22 इन मिसिसागा एट डिक्सी एंड डेरी। कॉल 416-500-8036 दैट्स 416-500-8036।
0: ब्लू ओशन इमिग्रेशन।
1: यदि आप होंडा की कोई भी न्यू और यूज्ड कार या वैन लेना चाहते हो तो एक बार बोल्टन होंडा पे जरूर जाओ। इनका दावा है कि यहाँ आपको बेस्ट डील्स के साथ साथ सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। आपका क्रेडिट खराब है? डोंट वरी, फाइनेंसिंग ऑन द स्पॉट। सोचो मत, एड्रेस नोट करो, 65 पिल्सवर्थ रोड बोल्टन। यू कैन कॉल 9054570888 दैट्स 9054570888 और विजिट boltonhonda.ca। यदि आपको घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स तो एक ही नाम, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। हमारी कम्युनिटी का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस एंड ग्रेट प्राइसिंग। चाहे सनरूम हो या कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। एशियन कनेक्शंस रेडियो का रेफरेंस देने पर मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। फॉर फ्री कोट अभी कॉल करें 416-831-4790 दैट इज 416-831-4790 और विजिट कैलिफोर्निया ऑनिंग डॉट सी ए। थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए है, जे दुख होवे दसना जरूर चाहिए है। और आप शायद इसलिए नहीं हंस रहे कि आपके दांतों में रहता है दर्द। डोंट वरी, जस्ट गो टू डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स लाइक फिलिंग, ब्रेसेस, इम्प्लांट और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। एड्रेस 735 ट्वेन एवेन्यू मिसिसागा, नॉर्थ ऑफ डेरी ऑन मेविस रोड। टेलीफोन 2894010076 दैट इज 2894010076।
2: थोड़ा थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिदा, दुख होवे दसना जरूर चाहिदा।
1: ऑलवेज रिमेम्बर डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर।
3: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
4: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
5: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288857 अनाज मार्ट।
6: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार वार्ड 9 और 10। ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।

0: वाह वाह क्या बात है, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट सुनकर बड़ा मजा आता है,
1: बहुत मजा आता
0: है ना, गीत से भी ज्यादा कई बार ये इंस्ट्रूमेंट अच्छे लगते हैं। ब्यूटीफुल कंपोजिशन, और किवें चल रहा सर नाल दे नाल मैच दस रही है?
1: मैच बड़े ही जबरदस्त तरीके चल रहा है, और इंडिया की दूसरी विकेट होनी आउट हो गई।
0: अच्छा,
1: और ईशान किशन जेड़े है वह क्लीन बोल्ड हो गए, और रस्टन चेज ने इन्होंने आउट किया, बट बिफोर ही मेड 43 क्विकली 22 बॉल्स इन्होंने, और चार छक्के, छह चौके और दो छक्के लगाए इन्होंने, एंड स्कोर इज 139/2। और अज संजू सैमसन इंडिया के विकेट कीपर 74 से बैटिंग कर रहे हैं, 34 बॉल्स फिलहाल फेस की दी, और 8 चौके और 4 छक्के लगा के जी नैट रन रेट हैगी काफ़ी इन्होंने हाई रखिया। सो 139/2, 11.3 ओवरस, यानी कि हाले 8.3 ओवरस बाकी ने, और बैटिंग चैस वेले आ गए ने शिवम दुबे, और जेडे अपने कैप्टन साहब ने सरपंच साहब उन्होंने शिवम दुबे नू पहले अपने तो भेज दिता। सो शिवम दुबे जेडे आ हार्ड हिटिंग फेमस ने, लेकिन फिलहाल पहलिया दो जेडियां डॉट बॉल्स खेल चुके ने, सो स्कोर इज 139/2। और दूसरी तरफ श्रीलंका के पंजवें विकेट गिर गई है, और 150/5 17 ओवरस हो गए ने, और 3 ओवर इन्होंने बाकी ने, एंड उडारा 77 ते नॉट आउट ने, 9 चौके और 1 छक्का लगाया इन्होंने, और दूसरी तरफ वेलेगेट इन्हों का साथ दे रहे ने, स्कोर इज 150/5 17 ओवर श्रीलंका अगेंस्ट पाकिस्तान, और इंडिया 140/2 11.3 ओवरस। जी
0: जी, और नाल नाल गलबात भी चलती रहेगी।
1: हाँ जी,
0: तो अज तो मैंने मैसेज आया कहते भाजी क्रिकेट ही क्रिकेट ज्यादा चलेगी और पॉलिटिक्स भी चलेगी, थोड़ी बहुत उनकी बातचीत भी करेंगे, लेकिन क्रिकेट की बातचीत भी चलते रहेंगे।
1: मिसी सागा तो तीन कैंडिडेट, फिर ट्रायंगुलर जी फाइट चल रही है, और तीनों देखो जो यू नो हैड टू हैड आ बहुत क्लोज है, एंड 30% तो इस वेले बॉनी क्रॉम्बी जी ने, एंड 29 तो जेडे इस वेले पैरिश जी ने, और आलसो एलविन टेजो एंड हीज एट 26%। सो जरा अगर देखा जाए तिना का रणवीर जी डिफरेंस जरा ना बहुत ही क्लोज है, और जो टोरंटो का 4% का, और इतने भी तिना के दरम्यान जो 4% का ही है, लेकिन यह उपर थले हों रहना, वी स्टिल हैव बट अबाउट 17 डेज, 26 अक्टूबर जरा दिन उस दिन डिसीजन होगा कि किने जितना है।
0: क्या बात है, 26 अक्टूबर आ गया जी दिन, और आज तो एडवांस पोलिंग स्टार्ट होगी।
1: हाँ, इंडिया कहते होंगे चिट्टे कपड़े संभालो, मोटा पहुंच जाना
0: आज जी,
1: फेस्टिवल होंगे उ
0: देखो मैं कहता हूँ कि वोट का इस्तेमाल जरूर करो
1: जी,
0: दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैसेज भी है सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की तरफ से।
1: हाँ जी,
0: कि आप सर खैर हर सिटी की तरफ से मैसेज है कि अपना वोट जरूर डालें आज, कॉस्ट करें।
1: और टोरंटो की गल करिए तो ये भी बहुत क्लोज फाइट आ, और जी इन्हें डिबेट्स हो रही, हीटिड बहुत हो रही, और जरा है डे बाय डे जी टेंशन हैगी बढ़ रही है, और एक दूजे तो अफकोर्स ये इल्जाम बहुत लगते हैं, ब्रैडफोर्ड साहब काफ़ी उपर आ चुके हैं, और क्रिस अलेक्जेंडर जेडे उन्होंने स्टैप डिसाइड किया, और उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है बहुत घट गया है इस वेले, और रणवीर जी चाहो उन्होंने एक होर चैलेंज आ रहा, एक होर कैंडीडेट आ, और उन्हों का नाम भी सेम है लास्ट नेम, बैलेट पेपर हों लास्ट टाइम पहले लिखते हैं,
0: ओके
1: चाओ ओलिविया, उस तो बाद चाओ जो उन्होंने अगला नाम आ, सो ये बिल्कुल नैक्सट ही होना, सो वह कहते कि हो सकता कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हो सिर्फ चाओ देख के चैक कर
0: दें,
1: और जी इन्हों वोटा दूसरे चल जाए, और ऑफकोर्स ब्रैडफोर्ड उन्होंने बेनीफिट होना, सो बार बार यह भी कह रहे ओलिविया चाओ होनी कि जस्ट मेक श्योर कि तुम
0: मेरे मेरे वोट
1: लास्ट नेम
0: पूरा पढ़ के देखो,
1: जो फर्स्ट नेम उन्होंने भी पढ़ो, और उस तो अगे जो बॉक्स आ उन्होंने चैक करो।
0: बड़ी टफ टफ है,
1: बहुत टफ है जी।
0: हाँ, और ब्रैम्पटन के बारे में बता दूं कि ब्रैम्पटन की तो जो लग रहा है कि 100% जो है जीत वो पैट्रिक ब्राउन की नजर आ रही है
1: जी जी, जी।
0: लेकिन मिस सागा में आज आई थिंक 29% पे 1% से आ गए हैं बॉनी क्रॉम्बी आज की डेटा जो पोल्स है,
1: नेक टू नेक आजी तिना दी भी ज्यादा दूर नहीं है,
0: 26-27, 28-29
1: 26-29 और 30 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और नंबर जो चेंज होंगे रहने, और बॉनी क्रॉम्बी होनी इस वे फिलहाल इन्होंने नंबर के हिसाब से टॉप पे 30% की उन्होंने सपोर्ट हैगी।
0: कोशिश करेंगे जी उनके साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए
1: जी।
0: चलो ना साथ साथ गीत संगीत भी होता रहेगा फ्राइडे, आज थोड़ा बहुत अच्छे से गीत
1: फ्राइडे बिल्कुल जी,
0: सो विल प्ले सॉन्ग, एक दो मैसेज बड़े इंपॉर्टेंट है उसके बाद विल प्ले सॉन्ग।
2: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन, कॉल 9059288 8557 Anaj Mart।
3: ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਸ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵੈਡਿੰਗ ਭਾਜੀ $6 ਪਰ ਪਾਉਂਡ, ਚਨਾ ਭਟੂਰਾ $7.99 ਅਤੇ ਥਾਲੀ $11.99। ਫੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਕਾਲ 905-607-1123, 905-607-1123, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੋ 3176 ਰਿਜਵੇ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਨਿਟ 66, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਐਟ ਡੰਦਾਸ ਐਂਡ ਰਿਜਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ।
4: You're listening to Asian Connection. Asian Connection. Our number is 416-910-2000.

0: भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: यार फ्रेश स्पाइसी और मजेदार खाना खाने का मन है तो फ्रेश तंदूरी आ जाओ। तंदूरी वेज या नॉन वेज दोनों का असली मजा लो 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन। बर्थडे बैश हो या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, रात को भी खाओ पियो और मजे करो। फ्रेश तंदूरी अब दो शानदार लोकेशंस पर, क्वीन स्ट्रीट एंड कैनेडी। कॉल नाउ 9058740111 पे। ब्रामली एंड बुवेड लोकेशन कॉन्टैक्ट करो 9057921711 पे। फ्रेशली बेक्ड केक्स, जबरदस्त वैरायटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, और हाँ हमारे फूड ट्रक्स भी हैं लाइव केटरिंग के लिए। घर पर इवेंट है, फ्रेश तंदूरी को कॉल करो और अपने इवेंट को यादगार बनाओ। जायकेदार लजीजदार खाओ, फ्रेश तंदूरी पर आओ। खाना लजीज, हर दिल अजीज।

0: ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਸ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ਰੈਕਸਡੇਲ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 416-748-8800।
1: 416-748-8800।
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए है, जे दुख होवे दसना जरूर चाहिए है। और आप शायद इसलिए नहीं हंस रहे कि आपके दांतों में रहता है दर्द। डोंट वरी, जस्ट गो टू डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स लाइक फिलिंग, ब्रेसेस, इम्प्लांट और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। एड्रेस 735 ट्वेन एवेन्यू, मिसिसागा, नॉर्थ ऑफ डेरी ऑन मेविस रोड। टेलीफोन 2894010076, दैट इज 2894010076।
3: थोड़ा थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिदा, दुख होवे दसना जरूर चाहिदा।
0: ऑलवेज रिमेम्बर डेंटल ऑफिस ऑफ डॉक्टर नील गजर।
4: चलिए जी, चलते हैं डॉक्टर नील गजर के ऑफिस में। और पुलकित जी, कैसे हैं आप? वेलकम।
5: ठीक, थैंक यू
4: जी। अच्छा, आज ना थोड़ी सी जानकारी हमें दें हमारे लिसनर्स को कि जो सेंसिटिविटी हो जाती है, राइट, इसकी क्या खास वजह और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं और कैसे आप हेल्प कर सकते हो?
5: जी, सेंसिटिविटी एक्चुअली बेसिकली सेंसिटिविटी, बहुत लोग ना सेंसिटिविटी को पेन के साथ कर देते हैं कंफ्यूज कि पेन और सेंसिटिविटी, वैसे तो दोनों के कॉजेज ऑलमोस्ट सेम से होते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी होती है जब आपको हल्का हल्का कुछ खाने से स्पेशली कुछ फील हो रहा है, कभी ठंडा खाने से लग रहा है और फिर ठीक हो जाता है, या फिर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप पानी पीते हो, नॉर्मल पानी भी पीते हो तो वो लगता है जाके दांतों पे, एंड द मिनट यू स्वॉलो इट्स फाइन। तो उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है जब आपकी गम्स रिसीड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपके गम्स जो हैं वो दांतों की पकड़ छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, तो आपके जो रूट्स हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। पहली बात तो ये होती है। तो इसका इलाज ये है कि जब आप नॉर्मल हर 4 महीने में 3 महीने में या 6 महीने में क्लीनिंग कराते हैं, जो भी आपके हाइजीनिस्ट बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो वो आपकी जो मसूड़ों की पकड़ है वो दांतों पे बनी रहती है, यू नो, कोई एक्स्ट्रा बीच में जो भी कैलकुलस जमा होता है वो निकल जाता है, एंड देन वो जो है अटैचमेंट जो है वो वापस बनी रहती है। इससे ये होता है कि सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। सो रेगुलर क्लीनिंग एवरी 3-4 months, 6 months, जैसे भी आपको आपके हाइजीनिस्ट रेकमेंड करते हैं, वो जरूरी है। और दूसरी जो है सेंसिटिविटी, जो हम नॉर्मल हैबिट्स यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम टूथब्रश यूज कर सकते हैं, आपके मसूड़ों को सॉफ्ट टूथब्रश चाहिए लेकिन आप हार्ड टूथब्रश यूज कर रहे हैं, आपके मसूड़े पकड़ छोड़ेंगे वहां पे, आपको सेंसिटिविटी होगी, आपके दांत रगड़े जाते हैं, यू नो। सो इन दैट केस आपका, आपके हाइजीनिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं आपको कौन सा टूथब्रश यूज करना, कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द अब्रेसिवनेस भी आपकी टूथपेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आती है, है ना। प्लस थर्ड थिंग जो होता है कि कभी कभी आप मेडिकेशंस इतनी लेते हो, मेडिकल कंडीशंस है अंडरलाइन, तो आप जो मेडिकेशंस लेते हो उससे आपका माउथ बहुत ड्राई हो जाता है।
4: Okay.
5: तो समटाइम्स वो ड्राई माउथ जो है उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी ज्यादा होने लगती है और कैविटीज ज्यादा प्रोन हो जाता है बंदा उसके साथ। तो आपका, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से मेजर्स करने हैं। फॉर एग्जांपल एक स्लाइवा सब्स्टिट्यूट आता है, आपको वो करना, आपको वो लेना है, हर 2-3, 5-10 मिनट के बाद आपको पानी सिप करना है, यू नो। ऑल दीज थिंग जो है वो आपके दांतों का आउटर लेयर जो है इनेमल और रूट एरिया को वो बना के रखते हैं, उसको खराब नहीं होने देते, डिके नहीं होने देते या शुरू नहीं होने देते। और सबसे पहली जो डिके की जो है स्पेशली फ्रॉम द रूट एरिया, वो आपकी सिम्टम है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बेसिकली होता है कि जैसे हल्की सी आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट आ गया है एकदम से दांतों में। जब भी हम व्हाइटनिंग कराते हैं उसमें भी हल्के हल्के ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के जैप्स आते हैं जो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो भी अंडरलाइन कॉजेज हैं जब तक हम वो नहीं करते ठीक तब तक आपकी सेंसिटिविटी रहती है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास आते हो वो वी हैव यहाँ पे मेडिकेशन जो हम रेकमेंड करते हैं लगाना, डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो लगाने के लिए, फिर आपको डीसेंसिटाइजिंग माउथ वॉश रेकमेंड करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टफ। और सबसे बड़ी जो कॉज है सेंसिटिविटी की वो है इन्फेक्शन। जब आपके गम्स में इन्फेक्शन हो जाती है ना तो फिर वो मतलब सब कुछ ही कर देता खराब, लाइक आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स होंगी, मसूड़े अटैचमेंट छोड़ने लगेंगे, कैविटीज होना शुरू होगी. तो बेसिकली इन सब चीजों की कॉज एक सिम्टम है सेंसिटिविटी, जो कि अगर हम उसका अंडरलाइन कॉज खत्म कर देते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है इससे.
4: जी और बिल्कुल जी. और अपना टाइमिंग्स और अपना फोन नंबर दे दें कि कब मिला जाए आपको.
5: जी सो डॉक्टर नील गजर डेंटल ऑफिस, टाइमिंग्स हैं 9 to 7 एवरी मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे वी आर ओपन फ्रॉम 9 to 5 एंड फोन नंबर है 2894010076 और यू कैन ऑल्सो गिव अस अ कॉल ऑन 9055642021. एड्रेस है 735 ट्वेन एवेन्यू एंड मेजर इंटरसेक्शन इज मेविस एंड डेरी.
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित जी, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. जी इस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय राजधानी स्वीट्स और खबरों को भी स्पॉन्सर किया जा रहा है राजधानी स्वीट्स की तरफ से. राजधानी स्वीट्स .ca पे जाएं और अपने नजदीक की लोकेशन के बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हो और प्योर वेजिटेरियन फूड के लिए एक इनाम राजधानी स्वीट्स. किया ऑफ ब्रैम्पटन द नंबर वन किया स्टोर इन GTA,
1: नंबर वन इन कस्टमर केयर,
4: नंबर वन इन वॉल्यूम
1: और नंबर वन इन प्राइस लिस्ट.
4: लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड कार्स,
1: 100,000 किलोमीटर्स बम्पर टू बम्पर वारंटी.
4: आपके अपनी जुबान बोलते हैं किया ऑफ ब्रैम्पटन इन ब्रैम्पटन ऑटो मॉल एट 85 कैनम क्रेसेंट.
1: फॉर बेस्ट डील्स कॉल जनरल मैनेजर आशु सूरी एट 9054578410.
4: That's 9054578410 or visit kiaobrampton.ca.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम। आइए सुनते हैं शफकत अली की जुबानी खबरें पाकिस्तान से।
1: अस्सलामु अलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं एशियन कनेक्शन ऑन CMR 101.3 FM पर, और पाकिस्तान से आज की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं शफकत अली। खबरनामे में सबसे पहले आपको ले चलते हैं कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI को इंतहा पसंदी की सियासत तर्क करने का मशवरा दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर इंतहा पसंदी की सियासत जारी रही तो इमरान खान जेल में सदर आसिफ जरदारी के 14 साल दौरे असीरी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला KP सुहेल अफरीदी को मशवरा दिया कि अगर वो इमरान खान से मुखलिस हैं तो इंतहा पसंदी की सियासत तर्क करें और सूबे में अपनी हुकूमत बचाने के लिए मस्बत सियासी रवैया अख्तियार करें। गवर्नर राज एक आईनी और कानूनी ऑप्शन है, ताहम इसे आखिरी चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इमरजेंसी या गवर्नर राज का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन वजीर अला KP सुहेल अफरीदी के रवैये के बाइस हालात इस सम्त में जा सकते हैं। बाद सियासी कुवतें सूबे में गवर्नर राज के बारे में सोचने पर मजबूर हो रही हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद सऊदी अरब का दिफा करना है और सऊदी अरब का दिफा किया जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज मुख्तलिफ सलाहियतों और शोबों में कई दहाइयों से सऊदी अरब में मौजूद हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अचानक वजूद में आने वाला इत्तेहाद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी या गवर्नर राज वजीर आजम हाउस में इजलास तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी या गवर्नर राज के निफाज से मुतल्लक अहम फैसले के लिए वजीर आजम हाउस में कल आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में तमाम मुतल्लका शराकत दार शिरकत करेंगे और सूबे की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हतमी फैसले के लिए मुख्तलिफ आईनी और इंतजामी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक साबिक फोटा के तमाम इजलास समेत खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में इमरजेंसी के निफाज की तजवीज जेरे गौर है। मुजवजा इकदामात के तहत सूबे में अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम अख्तियारात इस्तेमाल करने की तजवीज भी जेरे बहस आएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, जिस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात और सियासी तरीके से मसाइल हल करने के अमकानात पर बातचीत हुई। तहरीक इंसाफ ने 3 अक्टूबर को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के अगले रोज लक्की मरवत से अपने मुतालबात के हक में लॉन्ग मार्च का आगाज किया था, जो आज 6 रोज में दाखिल हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला सुहेल अफरीदी को चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत है तो कल सवाबी क्रॉस करके दिखाएं। गवर्नर KP ने खबरदार किया कि अगर 9 मई जैसे इकदामात करने की कोशिश की गई तो नतायज भुगतना होंगे, गवर्नर हाउस के घेराव की धमकी देने वालों को भी देख लेंगे। मशरके वुस्ता की कशीदा सूरत हाल, PIA की रियाज के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गयी। होसी हमलों के बाद सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ। होसी ग्रुप ने रियाज के हवाई अड्डे को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए तवानाई की तनसीबात पर मजीद हमलों की धमकी दी और कारकुनों को बिजली घरों और दीगर तनसीबात से दूर रहने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशेरा के थाना निजामपुर के 3 पुलिस एहलकार लापता हो गए, जिनमें थाने का मुहर्रर और 2 कांस्टेबल शामिल। पुलिस के मुताबिक एहलकारों के अगवा का शुबा है और इसमें कालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुलविस होने का खदशा जाहिर किया गया। पंजाब असम्बली में गंदम की कीमत 5,000 रुपए फी मन मुकर्रर करने के लिए तहरीके इल्तवा जमा करवा दी गई। PTI किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी और रुकने पंजाब असम्बली इजाज शफी की जानिब से जमा करवाई गई तहरीक में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने और पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों पर ऐवान में बहस का मुतालबा किया गया। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान की खबरें। पाकिस्तान से शफकत अली की जुबानी, एशियन कनेक्शन, CMR 101.3 FM पर।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23।
3: लाइसेंस नंबर 10394।
4: जब हम कोई भी कार, वैन या SUV लेने के बारे में सोचते हैं तो सोचते ये हैं कि पैसे कम हो पर गाड़ी बढ़िया हो, फाइनेंस रेट भी अच्छा मिले और वारंटी भी ज्यादा से ज्यादा माइलेज पे हो। ये सारा कुछ आपको एक ही जगह से मिल सकता है और वो है माजदा ऑफ ब्रैम्पटन एट बवेड एंड वैन क्लिक। यहाँ के जनरल मैनेजर मनजिंदर संधू आपको ऐसी डील्स देंगे जो और कहीं से नहीं मिलेगी। कॉल 9054590290 9054590290 माजदा ऑफ ब्रैम्पटन।
5: A criminal charge is serious. A criminal offense can be devastating to your life. It can affect your family, your career, and can have serious consequences on immigration and citizenship. Our experienced team of lawyers will help you in your time of need. Don't let a criminal charge ruin your life. Call criminal defense lawyer Suki Baidwan.
6: Hi, I am Suki Baidwan. If you have been charged with a criminal offense, call me.
7: 905-230-8888. That's 905-230-8888.

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम। जी बिल्कुल ठीक सुना, और ये मैसेज उन लोगों के लिए है और जो लोग चाहते हैं कि कम समय में अच्छे पैसे बन जाएं, कैसे बनी ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी आपको। विन लाइफ टाइम का बारा जिक्र हम करते आ रहे हैं और मेरे काफ़ी दोस्तों ने जब से ज्वाइन किया बड़े हैप्पी, कहते पाजी मैं तो जॉब छोड़ देनी है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा जॉब ना छोड़ो, मैं राफे साहब से पूछ लेता हूँ क्या करना है। राफे साहब वेलकम सर, कैसे हैं आप?
1: जी थैंक यू जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड मॉर्निंग चलेगा 11,
0: गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, और पहले गुड आफ्टरनून की हाथ पड़ी हुई है, बट गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर ऑल योर टीम मेंबर्स और ऑल योर जितने भी आप लोग सीख रहे हैं इस वक्त आपके साथ बैठे। सर पहले तो सर कॉम्प्लीमेंट मेरा ले लो ऑन एयर, मेरे दो तीन दोस्तों ने ज्वाइन किया था, बड़े खुश हैं सर, तो मुझे कह रहे थे कि मैं जॉब छोड़ दूं। मैं क्या लेट मी आस्क राफे साहब?
1: नहीं सर अभी नहीं, पार्ट टाइम है। देखिए मार्केट 23 घंटे खुली है। हाँ। तो आप इसको पार्ट टाइम स्टार्ट करें।
0: अच्छा।
1: एक दो घंटे डेली करें और फिर जब आपकी इनकम रिप्लेसमेंट इतनी हो जाए कि 10 to 12,000 US आपका बनने लग जाए, देन ऑफ कोर्स
0: 10 to 12,000 US डॉलर सर, आहा क्या बात है। और मोर पता क्या है, ये लोगों को शायद ड्रीम लग रहा है, ये ड्रीम नहीं है। और कल बता रहे थे आप, कल हफीज से कल मुलाकात हुई, तो कहते एक बंदे ने इन टू वीक्स इट टुक आई थिंक 20,000 US डॉलर।
1: जी एब्सोल्युटली, देखें बात ये है कि 2020 आप 18 साल से हमारा रेडियो ऐड कर रहे हैं। हाँ। जो रेवोल्यूशन 2023 के बाद आया ना, वो पहले नहीं था, तो उसमें सबसे ज्यादा ये फंडेड कंपनीज की इंट्रोडक्शन हो गई, तो आपको अपने पैसे बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करने।
0: Yeah.
1: तो ये सबसे बड़ी बात है, और अगर नुकसान भी थोड़ा बहुत हो जाए तो $60-70 का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता।
0: तो रिस्क जो है वो सेव हो गया। सबसे जो खूबसूरत वाली बात ये है कि ट्रेडिंग की, कि जो रिस्क आपका है, जैसे जो लोग 2,000-5,000 लगाते थे उठ जाता था शाम तक,
1: वो खत्म हो गया। वो हम लोग अलाउ ही नहीं करते अब किसी को।
0: हाँ मतलब मैं ऑनेस्टली रफी साहब, कल मेरी दो तीन दोस्तों से बात हो रही थी, वो कहते हैं रणवीर मतलब ये हमें पहले क्या नहीं पता चला। मैं क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता लगा, मुझे
1: बहुत 2023 के बाद आया और

0: कर दिया, सिंपल कर दिया कि ये आजकल बहुत आसान हो गया, किसी टाइम पे फंडेड कंपनीज नहीं थी तो रिस्क बहुत ज़्यादा था, तो वो रिस्क जो है कवर हो गया। अच्छा एक टिप मैं और लेना चाहता हूँ कि अभी भी जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या खास वजह है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे?
1: मेजोरिटी एक तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर एक ग्रीड आ जाती है, एक रिवेंज आ जाता है।
0: अच्छा।
1: आप टेक्निकल सॉफ्टवेयर नहीं होता अगर आपको अकेले ट्रेड किया नहीं, जितना आपको कहते हैं कि आप किसी के साथ बैठ के करो तो कई दफा लोगों के 15 मिनट में $200 बने होते हैं, वो फिर हटते नहीं है।
0: आई नो कहते हटते नहीं है सर, 10 मिनट में जब $300 बन गए विद इन 10 मिनट्स, तो बंदा सोचता है यार सारा दिन पड़ा है अभी तो मैं एक पंगा और ले लूं, पंगा ही कौन बोलूंगा मैं, इट टेक्स वन मोर पंगा।
1: ग्रीड की वजह से, तो फिर इसलिए हमने आपको बताया होता है कि रोज के $100 से $200 पे ट्राई करें और देन इवेंचुअली यू लाइक 1000 अ डे भी आसान है
0: जी। और सर हमारे स्टूडियो में दो लोग बैठे हैं हमारे गेस्ट, और वो दोनों मुझे गर्दन से इशारा कर रहे हैं कि हमने भी पैसे बनाने हैं, तो मैं कहा जरूर बनाओ। और
1: गिरीश जी सेमिनार में आ जाए, 1 PM डैनियल साहब का सेमिनार है, आए अटेंड करें, एंजॉय करें, एब्सोल्युटली
0: जी बिल्कुल। और नोट करें नंबर एक ही याद रखें हम, 9052061008905206108, ये नंबर मुझसे आप कभी भी ले सकते हो, या विल लाइफ टाइम की वेबसाइट पर भी जा सकते ले सकते हो, और रफी साहब को मिलें, डैनियल साहब को मिलें, और एक बार आपने सेमिनार अटेंड कर लिया तो ये इस चीज़ की गारंटी है फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं। और रफी साहब कोई टिप देना चाहोगे जानते पहले?
1: अगेन सर, टुडे एवरीबॉडी इज यंगेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ, 5 मिनट ओल्ड हो गए हैं आपके इंटरव्यू से हम, टाइम आगे जा रहा है पीछे नहीं, तो टुडे इज द राइट डे टू ज्वाइन
0: जी। दैट्स वंडरफुल सर, 9052061008, बहुत मेहरबानी सर, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू,
1: थैंक यू।

जी हाँ, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को चाहिए विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा या स्पाउस और पेरेंट्स को इमिग्रेशन दिलानी है तो राजीव रामपाल को मिलें 7895 ट्रेनमेर ड्राइव यूनिट 22 इन मिसिसागा एट डिक्सी एंड डेरी। कॉल 416-500-8036, दैट्स 416-500-8036।

0: come September.
1: It's a beautiful musical instrument.
0: इस पे ट्यून बनी थी बॉलीवुड की, वो पता क्या बताता हूँ अभी सुनना.

0: मूड फ्रेश हो जाता है बड़ा, राइट। संगीत में इतनी पावर है, जरूर सुना करें अपना पसंदीदा गीत संगीत, और आपका जो मूड है, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी,
1: छह बॉल रह गई हैं जी इधर।
0: ओ हाँ हाँ, काफी कम
1: पटाखे पै रहे
0: हैं। छह बॉल
1: आखिरी ओवर रह गए, बेसिकली 19 ओवर हो चुके ने।
0: हाँ,
1: एंड 226 फॉर 4, दैट इज द स्कोर, 226 फॉर 4
0: इन

0: 19
1: ओवर्स और एक ओवर च देखो हुण 240 मैं क्या सी 240 क्रॉस कर दे कि नहीं, क्योंकि दोनों बैटर जिहड़े अस्पिले आ श्रेयस अय्यर ऑफ कोर्स लास्ट मैच इन्हां ने सेंचुरी लगाई 40 इन जस्ट 17 बॉल्स। सरपंच साहब इन्हां नूं कहंदे आ जी, बड़े खुश हुंदे जदों सरपंच कहंदे।
0: अच्छा, साडे वी हुण सबके साथ मैं बात करूंगा, जब यहां सरपंच कहते हैं तो पंगा पड़ता है।
1: अच्छा,
0: पर यहां सरपंच कहते हैं किसको कहते हैं?
1: श्रेयस अय्यर, जो कि पंजाब की टीम के कैप्टन सी ना जदों आईपीएल च लास्ट ईयर, तो पहले इन्हां ने 7 मैच लगातार जीते और
0: सरपंच कहते हैं।
1: हाँ जी, फिर इन्होंने सरपंच बनाता पंजाब का।
0: मैं शबको साहब से पूछता हूँ। शबको साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चला है? वेलकम।
2: वालेकुम अस्सलाम रमीर जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही टाइम पे इन्होंने बात की है, क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज का, लास्ट ओवर है, तो कहते हैं इसको सरपंच कहते हैं। मैं कहा यहाँ सरपंच का पंगा पड़ जाता।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: आप देख रहे हो मैच?
2: देखिए, इधर रावलपिंडी में भी पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच चल रहा है, ट्राई नेशन सीरीज है। इंग्लैंड की टीम भी आई हुई है।
0: हाँ।
2: और अभी अभी श्रीलंका की इनिंग खत्म हुई है और पाकिस्तान ने इनिंग शुरू की है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग मैच है, हाई स्कोरिंग मैच है आज का।
0: अरे वाह, जबरदस्त। और चलिए साथ साथ और गिरिजी, दूसरा मैच का भी बता दें, इसका भी बता दें।
1: आखिरी ओवर दी पहली बॉल ते तिलक वर्मा छक्का और दूसरी बॉल ते एक और छक्का,
0: बल्ले बल्ले बल्ले,
1: दो बॉल ते दो छक्के लग चुके ने, 238 स्कोर हो चुका। इंटरेस्टिंग आखिरी चार बॉल जिहड़ियां बाकी रह गई हैं और लगातार असीं अपडेट्स पेश करांगे
0: साथ साथ।
1: एंड डेफिनेटली जिहड़ा पाकिस्तान का स्कोर है 2.2 ओवरस 24 फॉर नो लॉस, और दोनों ओपनर जिहड़े आ बड़ी ही अच्छी तरह खेल रहे ने, और कैप्टन फरहान एंड फखर जमन एंड 16 बना चुके ने, 3 चौके लगा चुके ने 24, और टारगेट जिहड़ा हैगा 283 का कोई छोटा नहीं है। और लेकिन जिहड़ी बैटिंग आ इन्हां नूं पहले 6 ओवर च काफ़ी अच्छी करनी पवेगी, और दो छक्के लगा के इंडिया का स्कोर हो गया 238 for 4 19.82 ओवरस।
0: दैट्स वंडरफुल। और चलिए साथ साथ बातचीत यूं ही चलती रहेगी और साथ साथ कॉल भी। चलो पहले एक कॉल लेने, लाइन वन प्लीज। हेलो,
3: थैंक यू जी।
0: जी वेलकम सर।
3: छोटे छोटे दो तीन सवाल हैं। एक तो ये बताएं कि प्रॉक्सी वार में अब हम शामिल हो गए हैं, लगता है प्रैक्टिकली यमन में हमारी जो पार्टिसिपेशन है, ये क्या एयर रेड में है या कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो उसका आपके बलूचिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये बताएं। दूसरा, एक रील बहुत चल रही है, अब कई चैनल चला रहे हैं कि वाहन कॉरिडोर से क्या अफगानिस्तान ने और चाइना ने कोई सड़क प्रूव कर दी है या ये वैसे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। तीसरा छोटा सवाल ये है कि छोटा सरदारी और गवर्नर KPK और ये भी फौज की जुबान बोल रहे हैं, तड़ी लगा रहे हैं, गवर्नर राज लगा देंगे, ये लगाते क्यों नहीं अभी तो, लगाने के किसका इंतजार कर रहे हैं?
2: बहुत शुक्रिया सर। देखें, जहां तक यमन वॉर में शिरकत का ताल्लुक है, तो DGISPR इस हवाले से तस्दीक कर चुके, CNN पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया मक्का मुआहदा ये सऊदी अरब के दिफा के लिए था और सऊदी अरब के दिफा के लिए जो मुमकिन बन सका हम करेंगे। और पाकिस्तानी ट्रूप्स के हवाले से उन्होंने बताया कि आज से नहीं, कई दहाइयों से पाकिस्तानी ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर स्टोरी देखें तो उनका यह दावा है कि होसिस पर जो एयर स्ट्राइक्स सऊदीज कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के JF Thunder 17 फाइटर जेट्स ने भी शिरकत की। और ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो लगता यह है कि यमन में होसिस से कब्जा वापस लेने के लिए या उनको शिकस्त देने के लिए ग्राउंड ट्रूप्स तो भेजनी पड़ेंगी। ग्राउंड ट्रूप्स के बगैर तो किसी सूरत भी ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। और ग्राउंड ट्रूप्स की अगर बात करें तो सऊदीज की स्ट्रेंथ एज सच ग्राउंड ट्रूप्स में नहीं है। हाँ, उनके पास फाइटर जेट्स हैं, F-15 है और यूरोफाइटर टाइफोन है, उनके पास ड्रोन इन्वेंट्री काफी सोफिस्टिकेटेड है, मिसाइल इन्वेंट्री काफी सोफिस्टिकेटेड है, इसी तरह अगर इंटरसेप्टर देखें उनके पास, वो भी दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। ग्राउंड ट्रूप्स के लिए उनको इन्हसार करना पड़ेगा पाकिस्तान का। इतलात ये है, राइटर्स की खबर है कि पाकिस्तान 40,000 से 45,000 एडिशनल ट्रूप्स वहां पर भेज चुका है और इसका बिल्कुल बलूचिस्तान पर असर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का ईरान के साथ बलूचिस्तान साइड से तकरीबन 1,250 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, और उसके साथ साथ अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद एस्केलेट हुआ तो ये भी चांसेस हैं कि होसीज पाकिस्तान पर डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। कराची और बलूचिस्तान ये दो एरियाज हैं जो होसीज की रेंज में हैं, और दूसरा सवाल आपने वखान कॉरिडोर का पूछा, तो खबर दुरुस्त है, वखान के रास्ते अफगानिस्तान चाइना से लैंड रूट कनेक्ट कर चुका है और चाइना बजरिया वखान ईरान के साथ डायरेक्ट लैंड रूट उन्होंने अपना बहाल कर लिया है। और तीसरा सवाल सर, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रही, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और गवर्नर राज वहां पर इसलिए नहीं लगा रहे कि गवर्नर राज लगाकर उसकी सियासी कीमत बहुत भारी है, मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इसकी मुतामिल हो सकती है। जी
0: साथ मैच के बारे में बता दें। हाँ जी, लास्ट ओवर कैसा रहा जी?
1: लास्ट ओवर ताबड़तोड़ चल रहा जी, पहली तीन बॉल तीन छक्के एक स्कोर और विकेट।
0: अच्छा,
1: क्रिकेट दे नजारे देखो,
0: वाओ कितने रन,
1: क्योंकि 245 एक बॉल रह गई है।
0: हाँ।
1: क्योंकि सरपंच साहब जब आए थे उन्होंने कहा मैं भी घटता नहीं छक्का उन्होंने भी लगाना सिखा।
0: अच्छा,
1: लेकिन बाउंड्री लाइन ते कैच दे बैठे, आउट हो गया, बाहर जा चुके ने तिलक वर्मा उधर है गया, लेकिन नए बैटर जड़े आओगे वो आखिरी बॉल फेस करोगे। 245 वेरी गुड स्कोर।
0: हाँ।
1: और थोड़ी ही देर बाद वेस्ट इंडीज की जड़ी इनिंग स्टार्ट हो जाएगी।
0: हाँ।
1: और दूसरी तरफ तीन ओवर्स ने पाकिस्तान ने भी गियर शिफ्ट करते, 34 फॉर नो लॉस उन्होंने जरा तीसरा ओवर सेगा 12 स्कोर लेके आए, एक पहला छक्का भी लगाया फरहान होना ने।
0: अच्छा,
1: 34 फॉर नो लॉस,
0: पाकिस्तान इज बैटिंग राइट,
1: पाकिस्तान इज बैटिंग,
0: 34 फॉर नो लॉस,
1: दे नीड 183 टू विन दिस गेम,
0: 183। हाँ, वैसे स्कोर ज्यादा नहीं है,
1: ज्यादा नहीं है, एंड इट ऑल डिपेंड्स। और आखिरी बॉल भी हो गई इधर।
0: हाँ।
1: चौका लगाता पहली ही बॉल थे, ऑफकोर्स आखिरी बॉल से गई और 249 for 5 पूरा 250 स्कोर चाहिए वेस्ट इंडीज।
0: अच्छा।
1: और ये मैच जीत सकते ने।
0: हाँ।
1: और रणबीर जी वेस्ट इंडीज की बैटिंग भी पावर हाउस आ,
0: That's right.
1: कोई हल्के च नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग अगर विकेट आता वो भी बैटिंग कर सकते ने। सो 250 बहुत बड़ा टारगेट हैगा, 249 for 5 दैट इज द फाइनल स्कोर फॉर इंडिया।
0: वंडरफुल। और चलिए जी, और नेक्स्ट कॉल, विल गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो,
4: थैंक यू रणवीर जी,
0: नो प्रॉब्लम सर, वेलकम।
4: शफकत भाई, 2-2.5 सवाल ने छोटे छोटे। पहली गल तो है कि गंदम की जी प्राइस है ਉਹ 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 5000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓਗੇ ਕਿ 5000 ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੱਸ ਲਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਬਈ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਸੀਏ ਨੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਚੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸੀਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣ 'ਤੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ।
2: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੋ ਆਪਕੇ ਗੰਦਮ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਲਾਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਕਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸੇਮ, किसान खासतौर पे छोटे किसान पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड पर छोटे किसान ज्यादा हैं, 70-75% बेचारे वो हैं जिनके पास लेस देन 10 acres जमीन है, उन बेचारों के इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो गंदम होल्ड कर सकें। यही वजह है कि स्पोर्ट प्राइस दी जाती है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में तो खैर बंद कर दी। अब यहाँ पर 5000 रुपये मन वाली गंदम का अलमिया यह है कि किसानों से सीजन में यही गंदम 1800 रुपये मन खरीदी गई और 3-4 महीने के अंदर अंदर ये एकदम 5-5.5 हज़ार रुपये फी मन कीमत चली गई। पैसा किसने कमाया? पैसा इन्वेस्टर ने कमाया, मिडल मैन ने कमाया, और मेरा नहीं ख्याल दुनिया में और कोई कारोबार ऐसा होगा जिसमें इतनी ज़्यादा प्रॉफिट रेशियो है और गवर्नमेंट दूर बैठ के मज़े से तमाशा देखती रही। आप ईमानदारी से मुझे खुद बता दें इसमें किसानों को क्या फ़ायदा हुआ होगा और क्या फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? दूसरी बात देखें, होसीज अगर पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करते हैं तो अभी जून 20-25 की जो लड़ाई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें काफ़ी सारे सबक पाकिस्तान के लिए भी थे और काफ़ी सारे सबक इंडिया के लिए भी थे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सबक ये था कि पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजीद अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के मिसाइल्स पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर सका, और होसीज के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से कुछ 10 गुना ज्यादा या पाकिस्तान से 20 गुना ज्यादा एडवांस और सोफिस्टिकेटेड है। पाकिस्तान के HQ-9 मेरा नहीं ख्याल कि उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। और तीसरी बात गवर्नर राज की, तो दूसरी तरफ भी सवाल यही है कि फिर लगा दें, धमकियां क्यों दे रहे हैं? तो गिदड़ भबकियां पिछले 4 हफ्तों से चली आ रही हैं, लगा देंगे लगा देंगे, तो भाई लगा दें, आप या तो धमकी ना दें या फिर अमल कर गुजरे। जी
0: जी, और स्टूडियो नंबर 416-593-0055 और वो विल गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज। नेक्स्ट कॉल, हाँ जी, गो अहेड सर।
5: थैंक यू। ये सऊदी अरब की हिफाजत के लिए ये लफ्ज बार बार यूज करते हैं प्रोपेगेंडा के तौर पे। सऊदी अरब पे तो हमला किया ही नहीं है यमन, यमन की सिविल वार के अंदर सऊदी अरब कूद के गया है, जैसे पाकिस्तान कूद के गया था अफगानिस्तान के अंदर, और अभी तक वो अपने जख्म चाट रहा है। लाख बंदा मरवा बैठा है, इकॉनमी अपनी बैठा बैठा है इस वक्त, यानी पावर्टी के हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान नंबर वन आ गया, टेररिज्म के नंबर वन पे भी पाकिस्तान आ गया है। अब और कौन सा अवार्ड लेना है जिसके लिए ये वहां उंगली करने जा रहे हैं? ये तो सिविल वार हो रही है अदन और सना की फौजों के बीच में। सऊदी अरब अपना लुच तल रहा है, ये इनके पास इतनी फौज एक्स्ट्रा है कि ये बलूचिस्तान और केपी के कोई जहाँ पे इतनी बड़ी इंसर्जेंसी हो रही है उसको छोड़ के वहां पे भी एक्स्ट्रा फौज दे सके? ये अलग बात है, पैसे पकड़े में चूंकि फंसे हुए तो हैं, मजबूरी तो है। $5 बिलियन से बिग अमाउंट सऊदी अरब ने आपके अकाउंट में रखे हुए हैं, और पैसे भी इनको चाहिए हैं क्योंकि भुखमरी तो बहुत है ना, मजबूरी तो है, लेकिन क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? टेक्निकली मैं ये पूछता हूँ इनसे।
2: बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये सऊदी अरब की भी लड़ाई नहीं है, और सऊदी अरब तो
0: जी। और नेक्स्ट कॉल प्लीज, 5601 गो अहेड सर, और प्लीज एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देन वी विल टेक नेक्स्ट कॉल।

0: 7 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607 647-822-9607
2: यदि आप होंडा की कोई भी न्यू और यूज्ड कार या वैन लेना चाहते हो तो एक बार बोल्टन होंडा ऑफिस जरूर जाओ। इनका दावा है कि यहाँ आपको बेस्ट डील्स के साथ साथ सर्विस भी बेस्ट मिलेगी। आपका क्रेडिट खराब है? डोंट वरी, फाइनेंसिंग ऑन द स्पॉट। सोचो मत, एड्रेस नोट करो, 65 पिल्सवर्थ रोड, बोल्टन। यू कैन कॉल 9054570888 9054570888 और विजिट boltonhonda.ca। जी, और नेक्स्ट कॉल प्लीज 5601, गो अहेड सर।
3: जी शफकत भाई, सवाल ये है कि पाकिस्तान दफाई ताकत के लिहाज से इस वक्त एक अलग ही लेवल पर जा चुका है, उसमें होसी हूँ या ये TTP के दहशतगर्द हूँ या और कोई हो, उनको मसल का रख देंगे इंशाल्लाह। और ये जो धरना था कि बड़ा शोर मचा हुआ था कि पता नहीं कौन सी क्यामत आ जानी है, टोटली फेल हो गया है और पहले भी फेल हुआ है। तो अब इनको शर्म आनी चाहिए कि बैठकर ही कोई बात करनी है तो कर ले, वरना जो जिन्होंने भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और चीफ का अलानिया है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और अफसरान को हुक्म दे दिया गया कि आप ऑपरेशन शुरू करें और जो पाकिस्तान के खिलाफ एलिमेंट्स हैं KPK में नस्ल दर नस्ल बैठे हुए, उनको उनको उनकी तफरीक करें और उनको मसल दें। थैंक यू।
4: बहुत शुक्रिया सर। पिछले 4-4.5 साल से मसल ही रहे हैं और कितना मसलेंगे, मसल के अभी हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में दुनिया में नंबर वन लिस्ट पर आ गया है। और अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत दुनिया में सबसे हाईएस्ट हो गई है और पूरे खित्ते में बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोगों की रेशो है वो भी पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 23% लोग, 25 करोड़ का अगर 23% निकाल लें तो ये करीबन 6-7 करोड़ लोग बनते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और यही रेशो इंडिया में अप्रॉक्स 5.7 है और बांग्लादेश में ये रेशो 6% तक है और पाकिस्तान में ये रेशो देखें 23% है। और फिर KPK में KPK की अवाम और KPK की तमाम सियासी जमातें आज से नहीं पिछले 20 साल से वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। तो आप क्या अपने मकासद पूरे करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मसल देंगे, तमाम सियासी जमातों को कुचल देंगे? रही बात डिफाई टेक्नोलॉजी की तो मुझे बताएं, डिफाई टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी रानी तो पाकिस्तान ने ईजाद की है या दरियाफ्त की है जिसने पाकिस्तान को दुनिया का नंबर वन मुल्क बना दिया डिफाई टेक्नोलॉजी में? मुझे तो कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट या कोई बड़ी डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। जो अगर आपके पास कोई मालूमात है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी
2: जी। और शकत भाई, आज फ्राइडे है और कुछ मेहमान भी आ रहे हैं और आपको पता इलेक्शन चल रहे हैं कनाडा में और मेयर ऑफ मिसिसागा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बॉनी क्रॉम्बी जी बहुत जल्द स्टूडियो में पहुंचेंगे और आज यहीं पे आपसे इजाजत चाहेंगे। और बाकी वीकेंड आ गया, लॉन्ग वीकेंड आ गया शकत भाई, मंडे छुट्टी है, थैंक्स गिविंग डे है और अब फिर आपसे इंशाल्लाह होगी मुलाकात ट्यूसडे सभी लिसनर्स से। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। और क्रिकेट अपडेट देते हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन की बातचीत करेंगे।
5: जी, 249/5 इंडिया का स्कोर, जो इनिंग खत्म हो चुकी है। संजू सैमसन बींग ए टॉप स्कोरर 82, 9 चौके 4 छक्के, ईशान किशन 43, 6 चौके और 2 छक्के लगाए रहने, श्रेयस अय्यर कैप्टन एंड 40 जस्ट इन 18 बॉल्स, 3 चौके 3 छक्के, तिलक वर्मा 44 नॉट आउट। देखो जी इन्होंने क्या बैटिंग सी और इन्होंने आके ही ताबड़तोड़ बैटिंग की और 18 बॉल्स 44 नॉट आउट और जरा फिनिश किया 249 ते। सो 250 वेस्ट इंडीज जल्दी ही इन्हों की इनिंग स्टार्ट हो जाएगी और ट्राई करांगे कि लाइव अपडेट्स पेश करिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक विकेट हुणे हुणे गिर गई है 54/1, स्कोर नॉट बैड, लेकिन इन्हों के पहले जिहड़े खिलाड़ी आउट हो गए हैं इस वेले, और फखर जमन आउट होकर वापस जा चुके हैं एंड स्कोर इज 54/1, 5.1 ओवरस, दे नीड 183 टू विन दिस गेम।
2: वंडरफुल सर, और साथ साथ हम बातचीत यूँ ही चलती रहेगी आपकी और अपडेट देते रहेंगे, और एक छोटी सी ले लेते हम टाइनी सी ब्रेक।

0: किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट विजिटर पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन और 9054573131 स्टार इमिग्रेशन। यदि आपको घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स तो एक ही नाम कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन, हमारी कम्युनिटी का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस एंड ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। एशियन कनेक्शंस रेडियो का रेफरेंस देने पर मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। फॉर फ्री कोट अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट इज 416-831-4790 और विजिट californiaawning.ca। प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट जितों तुसी हर तरह की मिठाई ला सकते हो, बहुत ही वधिया क्वालिटी ते बहुत ही रीजनेबल प्राइस, प्योर वेजिटेरियन फूड तुसी बैठ के भी खा सकते हो ते केटरिंग भी करवा सकते हो। इन्हां दे स्पेशल्स नोट करो, वेडिंग भाजी $6 पर पाउंड, चना भठूरा $7.99 ते थाली $11.99। फोर लोकेशन टू सर्व यू, कॉल 9056071123, 905-607-1123 या पहुँचो 3176 रिजवे ड्राइव यूनिट 66 मिसिसागा एट दंदास एंड रिजवे, प्रेम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यदि आप एजुकेशन सेल्स में एक एक्साइटिंग करियर ढूंढ रहे हैं तो कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज इज हायरिंग एजुकेशन रिक्रूटर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एजेंट्स टू प्रमोट हाई डिमांड एंड करियर फोकस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन पर्सनल सपोर्ट वर्कर, अर्ली चाइल्ड केयर असिस्टेंट, क्लाउड बेस्ड IT सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव AI। यदि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो या आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस है तो कॉल करें 416-850-1456 और ईमेल योर रेज्यूमे study@thecanadiancollege.ca। कैनेडियन कॉलेज फॉर हायर स्टडीज, बिल्ड योर करियर, क्रिएट योर फ्यूचर।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
2: You're listening to Asian Connection. Asian Connection. Our number is 416-910.

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 101.3 FM ਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड हफ्ते के 24 घंटे और सातों दिन खुले रहते हैं, जो एक ही छत के नीचे तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रक वॉश करना, तेल बदलना और रिपेयर करना। इनके पास बहुत बड़ा यार्ड है जहां काफी कैमरास लगे हुए हैं, ताकि आप ट्रक को वॉश और सर्विस के लिए ड्रॉप करके नेक्स्ट डे पिक कर सको। ट्रक वॉश विद ऑयल चेंज ओनली फॉर $45। फॉर बेटर डील्स एंड बेस्ट सर्विसेज एक बार जाओ ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, 71 स्टैफोर्ड ड्राइव, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9054529955, दैट इज 9054529955।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 Anaj Mart.
3: Hello, let's talk about your mortgage. One of your most important financial decision. Right advice at the right time can save you thousands of your hard-earned dollars.
4: Hi, I'm Amit Khurana with Centum Indigo Mortgage Corporation. I provide timely, transparent and expert service for residential and commercial mortgages. Whether you're a new immigrant, self-employed or you're struggling with your credit, I can help you get the right mortgages at the best rates.
3: That's Amit Khurana. Expect expertise, reliability and prompt service at the best rates. Call now. 647-341-2785. License number M12000871.
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 8557 Anaj Mart.

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज व्यू स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और स्वैग से हमने आपका स्वागत कर लिया है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो के बॉलीवुड फ्राइडे में। और बाहर का तापमान इज राइट नाउ 17 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर्स जो हैं आज तकरीबन 20 डिग्री तक जाएंगे, मिनिमम 6 एंड सनसेट 6:44 PM। Tomorrow's temperatures 18 and 12. Sunday ko hogi barish. 16 degree maximum, 13 degree minimum. And 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल। एंड जितने भी स्पॉन्सर्स के मैसेजेस हैं, 2 बजे तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आज हमारे स्टूडियो में बहुत जल्द आज होगा फुल पंजाबी सेलिब्रेशन हमारे स्टूडियो पर। पंजाब को सेलिब्रेट करेंगे, पंजाब की सिनेमा को सेलिब्रेट करेंगे, पंजाब के गीतों को सेलिब्रेट करेंगे। और मैं खुद पंजाबी हूँ, सो प्राउड टू बी पंजाबी, एंड पंजाबियत को आज सेलिब्रेट करेंगे। उसके पीछे वजह ये है कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत जल्द एक एक्टर सिंगर स्टूडियो में हमारे साथ होंगे प्रमोटिंग हिज लेटेस्ट फिल्म दैट इज़ रिलीजिंग। एंड मेरे यंगर ब्रदर, मैं उन्हें कह सकता हूँ डियर ब्रदर, हरजिंदर गिल साहब भी स्टूडियो में होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। प्लस हमारे जो सरप्राइज एक्टर स्टूडियो में होंगे, उस स्टार से भी होगी बातचीत उनकी नई फिल्म को लेकर। And the segment is brought to you by Brampton TV and Appliances, Sultanji 801 Bovade Drive West at the corner of Bovade and Chinkusi in Brampton से आपको serve करते हैं। और लॉन्ग वीकेंड का आगाज हो चुका है, थैंक्सगिविंग है, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। सो इस मौके पर, इस अवसर पर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर सबसे धमाकेदार डील्स का आगाज भी हो चुका है। एंड आपने पहुंचना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन एंड टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दोज बिग बिग डील्स हैपनिंग। एंड इसके अलावा राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, नवरात्रि के मौके पर पहुंचिए राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की 30+ लोकेशंस पर, 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। एंड ऑल स्टेट इंश्योरेंस की गुरविंदर बामरा जी ऑटो होम इंश्योरेंस में आपकी भारी बचत करवा सकती है। लेकिन आपने क्या करना है, एक कॉल लगेंगे सिर्फ 15 मिनट और आपकी हो जाएगी बचत, फ्री कोट मिल जाएगा ऑटो होम इंश्योरेंस के लिए। 6477-303-3207 पर आप गुरविंदर जी से कर सकते हैं संपर्क। एंड साथ ही साथ जो है इसी तरह से मैसेजेस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एंड मैं लेता हूं बहुत ही एक छोटी मोटी सी ब्रेक और आते हैं बहुत ही जल्द वापस।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई परोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
3: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दे लई जनता दा साथ देन के, उना च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट बढ़िया ग्रो
3: सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्ना पीवी राज, ब्रैम्पटन एंड स्कार्बरो, 6473278111, 6473278111।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स। और इससे पहले कि हम हेडलाइन शुरू करें, साहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर से वैद्य रत्ना पीवी राज जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वैद्य जी, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। हर हफ्ते आप स्वास्थ्य को लेकर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर हम सभी को एडवाइस करते हैं, बताते हैं, एजुकेट करते हैं। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़, थोड़ा अपने बारे में, आयुर्वेद वेदा के बारे में हमारे लिसनर्स को प्लीज़ बताइए।
5: ये दुनिया में असली धन अच्छा स्वस्थ है। मैं साजा केरला आयुर्वेदिक से वैद्य रत्नम पीवी राज हूँ। पहले हमारा सारे लिसनर्स के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हमेशा हमारा पेशेंट्स का तबीयत अच्छा रहने के लिए कुछ ना कुछ सलाह देते रहता हूँ हमेशा। हेल्थ इज वेल्थ। पुराना टाइम पे भी सभी लोग बोलता है आयुर्वेदा लंबी आयु का वरदान है। ये आयुर्वेदा हमारा जीवन में रहेगा तो हमारा सारी शरीर अच्छा हो जाता है। और आयुर्वेदिक का कमाल क्या है, कोई भी बीमारी को जड़ से निकाल देता है और लोगों का शरीर में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। उसका कारण से आगे फ्यूचर में भी कोई भी बीमारी शरीर को तकलीफ ना कर सकते, क्योंकि शरीर में उतना इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। दिस इज पावर ऑफ आयुर्वेद। हम सुबह से रात तक क्या क्या खाता है वो सब कुछ नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पेट से जरूर निकाल जाना है। ऐसा रहेगा तो पेट भी शुद्ध होता है, बॉडी भी शुद्ध होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है। हमारा तबीयत अच्छा रहेगा तो हमारा माइंड भी अच्छा रहता है। हम फैमिली के साथ टाइम भी आराम से स्पेंड कर सकते, बिजनेस आराम से कर सकते, जॉब भी आराम से कर सकते। इसीलिए पहले तबीयत अच्छा रहना है। पैसे, बंगला, गाड़ी, वो सब कुछ बाद में, वो सब कुछ आता ही जाता है, लेकिन तबीयत इम्पॉर्टेंट है। तबीयत एक बार जाएगा तो पूरा फैमिली लाइफ पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसीलिए तबीयत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। हम इधर GTA में ब्राम्पटन एंड स्कार्बरो दोनों लोकेशन में रहता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6473278111। इट्स 6473278111। थैंक यू।
4: बिल्कुल जी, 6473278111 ब्रैम्पटन और स्कार्बरो दो जगहों से जो है वैद्य रत्ना पीवी राज जी आपको सर्व करते हैं। वैद्य जी, आजकल लोगों को डाइजेशन, बदहजमी, गैस्ट्रिक को लेकर बहुत बीमारियां हो जाती हैं, थोड़ा इस बारे में भी हमें ज़रूर गाइड करें प्लीज़।
5: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी अपना लिजनर्स के लिए। गैस, आजकल ये गैस का कारण से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये गैस पेट में फॉर्म हो जाता है, उसका कारण से लोगों को पेट में थोड़ा सा हैवी फीलिंग होता है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, टॉयलेट बराबर नहीं जाता है। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद बार बार टॉयलेट को भी जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि पेट में ज़्यादा गैस फॉर्म हो जाएगा तो ऐसा ही होता है। ये प्रॉब्लम आजकल लोगों को फूड हैबिट का वजह से भी होता है। कुछ लोग ने टाइम टू टाइम खाना नहीं खाता है, उसका कारण से भी होता है। कुछ लोग ने लेट नाइट में डिनर करता है, उसका कारण से भी होता है। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं मिलता है, उसका कारण से भी डाइजेशन

0: सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। एक बात बोलूं जी, ये दुनिया में सब बीमारी लोगों को पेट से चालू होता है। पेट अच्छा रहेगा तो सारी बॉडी अच्छा रहता है। एक एग्जांपल बोलूं, पेट इज लाइक ए मिशन। इफ मिशन गुड, कंपनी गुड। इफ मिशन डैमेज, कंपनी डैमेज। ये तो सही बात है, क्योंकि पेट तो उतना इम्पॉर्टेंट है। लोगों का पेट में गैस फॉर्म हो जाता है ना, उसका कारण से पेट भी ब्लोटिंग हो जाता है और छाती में हेवी फीलिंग होता है, एसिड रिफ्लक्शंस आ जाता है, पूरा दिन थोड़ा सा बॉडी पूरा अनईजी रहता है, माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसका कारण से बॉडी में पेन्स भी बढ़ जाता है, वेट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज रहने वाला लोगों को भी ये गैस का कारण से वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाता है। ये सब का कारण पेट में गैस ट्रबल का कारण से। तो हमारा केरला दवाई में इसके लिए बहुत अच्छा दवाई है। हमारा दवाई खाने के बाद पेट पूरा शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है। सुबह को जाके टॉयलेट में बैठेगा तो पेट पूरा खाली हो जाता है, कुछ भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, बराबर पेट साफ हो जाता है। पेट साफ हो जाएगा तो बॉडी भी हल्का हो जाएगा, माइंड भी फ्री हो जाएगा, तो सारे दिन भी माइंड भी फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा, जो भी काम आराम से कर सकते, माइंड भी डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगा, सारी बॉडी भी अच्छा रहेगा। हमारे पास तो बहुत अच्छा दवाई इसके लिए।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर से वैद्य रत्न पीवी राज जी का नंबर एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर दूं दोस्तों। ब्रैम्पटन स्कारबरो, जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, देयर इज अ लोकेशन क्लोज टू यू। 6473278111, 6473278111, 6473278111।
2: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
1: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Brampton TV and Appliances, Kavya Home Your Care, McVean Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, Win Lifetime Trading. शुरू करते हैं ताजा तरीन हेडलाइंस। बांग्लादेश चाहता है टू रिन्यू गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी विद इंडिया बिफोर दिसंबर 12th। इंडियन ओरिजिन नवनेथन नावी पिल्ले को नोबल पीस प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। ट्रबल्ड गल्फ डिप्लॉयमेंट के बाद यूएसएस लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैक इन होम पोर्ट। और डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस मेडल से इलॉन मस्क को ऑनर किया, कॉल्स हिम मॉडर्न डे थॉमस एडिसन। मस्क को ट्रंप ने नेशनल ट्रेजर बताया। यूएस के ग्रीन कार्ड फाइलिंग्स को सस्पेंड करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने H-1B वीजा यूज को किया डिफेंड। एंड रियाद एयरपोर्ट पर हुती स्ट्राइक से प्लेन डैमेज हुआ, हुतीज ने कल 3 सेपरेट हमलों का ऐलान किया एट द एयरपोर्ट। इसराइल अब कैप्टन स्मिथ मचार को प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर हीरोइज्म से ऑनर करेगा। ट्रंप ने ऐलान किया नवंबर 3 के मिड टर्म पोल्स तक यूएस ईरान पर हमला नहीं करेगा। इंडियन आईटी फर्म्स को ग्रीन कार्ड के लिए वर्कर्स को स्पॉन्सर करने वाले यूएस प्रोग्राम से सस्पेंड किया गया। एंड हूती अटैक्स को देखते हुए सऊदी में इंडियंस के लिए एडवाइजरी, बी अलर्ट एंड स्टे इंडोर्स। एंड यूक्रेनियन फ्रंटलाइन सिटी में रशियन स्ट्राइक ने 2 बसेस को किया हिट, 30 लोग मारे गए। लोकल समाचारों में पोर्ट कोलबर्न में हुई डेडली शूटिंग के बाद 1 पर्सन इन कस्टडी। हैमिल्टन हाउस एक्सप्लोजन से एक शख्स बुरी तरह जख्मी। डाउनटाउन टोरंटो कलिजन के बाद मोटरसाइकिलिस्ट पहुंचा हस्पताल। एंड मिल्टन कैसीनो रॉबरी में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। होमकमिंग पार्टी गोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्वेल्फ पुलिस पोस्ट न्यू फोटोज। एंड फूड एक्सपर्ट्स ने वार्न किया, could be tough winter at the grocery stores. And Paris residency show ke duran Celine Dion slips and falls. भारतीय समाचारों में एक्टर सैफ अली खान को स्टैब करने वाले अक्यूज बांग्लादेशी व्यक्ति ने फिर से प्लीड गिल्टी किया। करंटली अक्यूज्ड इज इन जुडिशियल कस्टडी। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली मेट्रो और ट्रेन्स पर कंप्लीट प्रोहिबिशन होना असंभव। मुख्यमंत्री भगवंत मान का एड पहुंचा अदालत, बोला रेड तो इलीगल था, एजेंसी हैड नो अप्रूवल। महाराष्ट्र के एक रेस्टोरेंट के वेसल में चूहा देखा गया और शुगर सिरप मेड फॉर गुलाब जामुन हैड रैट स्विमिंग इन द वेसल। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि गुवाहाटी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने एक्स असम चीफ को मैनहैंडल किया था। 57 सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स को असम में डिटेन किया गया। उड़ीसा हॉस्पिटल पर एम्बुलेंस ऑक्सीजन सिलेंडर के एक्सप्लोड होने से पेशेंट की हुई मौत। और IIT बॉम्बे कैंपस पर गैस लीक फायर से हॉस्टल में 5 लोग जख्मी। इंडिया ने गर्ल बर्ड्स को उन इलाकों में ऊपर जाते देखा जहां प्रेफरेंस फॉर सन्स वॉज हाइस्ट। इंडिया के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम मददगार साबित हुआ। एस्टिमेट्स के मुताबिक अबाउट 15 एडिशनल गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बर्ड्स नाउ। US ग्रीन कार्ड क्रैकडाउन के बाद जोहो के श्रीधर वेम्बू ने इंडियन से गुहार लगाई टू कम बैक। बोले लेट्स बिल्ड द कंट्री टुगेदर। BRS ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कैंपेन को लेकर कहा नथिंग ग्रेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और गुजरात ने नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी है विद कैप्टन स्मिथ मचार और CWG 2030 टैटूज। पाकिस्तान की खबरों से PMD ने मंडे से कराची में हॉट वेदर की फोरकास्ट की। PAA ने कंफर्म किया। PIA ने रियाद फ्लाइट्स को फिलहाल सस्पेंड किया। पाकिस्तान के हैदराबाद सिटी के लॉयर ने डिलेड जजमेंट की वजह से कोर्टरूम सीट पर आग लगाई। जज के रिजर्व जजमेंट को अनाउंस ना करने पर लॉयर ने यह कदम उठाया। पेट्रोलियम मिनिस्टर का कहना है कि रीजनल टेंशंस ने ऑयल सप्लाईज को डिस्ट्रप्ट किया। गवर्नमेंट मल्टीलैटरल पार्टनर्स को कंसल्ट करे बिना पेट्रोलियम लेवी टारगेट्स को चेंज नहीं कर सकता। और लॉ मेकर ने पेट्रोलियम लेवी को एक हैवी बर्डन बताया। मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट ने फ्यूल सप्लाई चेन को बेहतर किया है। दूसरी ओर PTI MNA जुनेद अकबर का कहना है कि JUIF चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने गवर्नमेंट और PTI के बीच डेडलॉक को खत्म करने की बात की है। हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। दूसरी तरफ अफरीदी लेड कॉन्वॉय पेशावर एंटर हुआ एज PTI लॉन्ग मार्च कंटिन्यूज फॉर द 5th डे। सिटी के कई हिस्सों में मोबाइल सर्विसेज नॉन फंक्शनल थी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसान भून की लॉ डिग्री को जेन्युइन बताया। एंड टॉप मिलिट्री ऑफिसर के अनुसार मीडिएटर पाकिस्तान नहीं चाहता कि मिड ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा आगे बढ़े। ISPR DGI कहते हैं कि पाकिस्तान एक्ट्स एज अ ऑनेस्ट ब्रोकर इन मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मक्का अकॉर्ड पूरी तरह से एक डिफेंसिव ही होगा। दूसरी तरफ स्पोर्ट जगत से इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड T20 खेला जा रहा है जहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 249 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। टारगेट वेस्ट इंडीज को मिला 250 का टू विन। राइट नाउ 9 ओवर्स में वेस्ट इंडीज बैटिंग एट 113 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के सेकेंड T20 से पहले वैभव सूर्यवंशी ने ब्रूटल नेट सेशन के जरिए सेलेक्टर्स को मैसेज भेजा। एंड थर्ड ईयर रनिंग PSL ने IPL विंडो को अवॉइड करने से इनकार किया। PSL होगा बिटवीन 18th मार्च एंड 2nd मई। PSL विंडो ओवरलैप्स विद IPL अराउंड द सेम पीरियड। बॉलीवुड खबरों से एक्टर नाना पाटेकर की मौत के बाद तनुश्री दत्ता ने ईविल डेड बयान को बैक किया। तनुश्री ने कहा डेड डजंट वाइप आउट कांड्स। एंड पुणे फार्म हाउस पर वेटरन एक्टर नाना पाटेकर को स्टेट ऑनर्स के साथ क्रिमेट किया गया। नाना पाटेकर ने एक बार कहा था मैं पॉलिटिक्स से दूर इसलिए रहता हूं बिकॉज आई विल बी थ्रोन आउट इफ आई से समथिंग नैस्टी। पुणे फार्म हाउस से श्याम कौशल ने नाना पाटेकर के साथ लास्ट फोटो शेयर करते हुए कहा नाना स्टूड बाय मी लाइक अ रॉक। शाहरुख खान ने नाना पाटेकर पर कहा गॉन टू सून माई हीरो एक्टर नाना। शाहरुख ने नाना को मेंटोर फ्रेंड और अनबीटेबल कैरम चैंपियन भी बताया। दृश्यम द कंक्लूजन ने अपने फर्स्ट वीक में 240 करोड़ की जबरदस्त कमाई की। ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं कि नाना पाटेकर चले गए पर उनकी आवाज रह जाएगी। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस। स्टूडियो का नंबर 4165930055 एंड The headlines were also brought to you by cholebature.ca, जो कि चार लोकेशन से सर्व करते हैं। 2 in Brampton, 1 in Vaughan, 1 in Mississauga, 5th location opening very soon, dine-in takeout option हर location पर available है। Clear Optical by Varun Kanda, serving from Brampton and Georgetown, name brand sunglasses पर amazing deals चल रही है, take advantage. 905-206-1008 is the number for Win Lifetime Trading. Saturday afternoon, यानी कल 12:30 से 3:30 के बीच होता है free seminar. Please अपनी seat reserve करवा लीजिए, please don't walk in. We'll take a very short break और एक्टर सिंगर हरदीप गरेवाल जो हैं स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत होगी, उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर जानकारी लेंगे। पहले बार हमने 2021 में तुनका में उन्हें देखा था, विच वॉज वन अमेजिंग फिल्म। एंड अब जो है उनकी नई फिल्म आ रही है, उसको लेकर हम हरदीप गरेवाल से करेंगे बातचीत। चलिए एक छोटी सी ब्रेक, आते हैं वापस।
3: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: 2026 ब्रैंटन म्युनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे, तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग। एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 noon टू 8 PM और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन। अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव one and identification showing your name and address to vote. Agar aapko voter notice nahi mila, bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye and a list of candidates ke liye, aaj hi visit karein brampton.ca/brampton votes.
2: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
3: अच्छी, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुल्चे, पाव भाजी, अमृतसरी कुल्चे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
5: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय विन लाइफटाइम ट्रेडिंग। पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से परिवारों को साइड इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, श्योरिटी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। फ्री सेमिनार्स अटेंड करें हर सैटरडे आफ्टरनून। मेक श्योर प्लीज मेक योर अपॉइंटमेंट, वॉक इन ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है सेमिनार, एंड कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। मित्तल सीपीए प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन, फॉर योर टैक्स रिलेटेड मैटर्स 2897484040 2897484040।
6: सिटी हॉल विच ब्रेड ब्रेडफर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती की थी। उदों भी जदों उन्होंने कहा सी कि वो अजिहा नहीं करनगे, वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्होंने सस्ते करा, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणा जित्तण लई वो कुछ भी कह सकते हैं। वो इदां दे ही हन कि तुसीं सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकते हो। अपने घर दे किराए लई, अपने टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है।
7: Authorized by the Olivia Chow campaign.
8: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
9: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है। आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
8: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
10: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन 9054573232। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
11: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी है।

0: जोशी।
1: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info.
2: Hi everybody, this is Neeraj Sridhar, also known as Bombay Vikings. Right now you're listening to South Asian Unlimited Radio.

0: एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940।
1: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 8557। अनाज मार्ट।
2: सहजा आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस और सारी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं। कॉल वैद्य रत्ना पीवी राज, Brampton and Scarborough, 6473278111, 6473278111। 2026 ब्रैम्पटन म्युनिसिपल इलेक्शन मंडे अक्टूबर 26 को होगा। अगर आप वोट नहीं कर सकते ऑन वोटिंग डे, तो आप वोट अर्ली भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवांस वोटिंग। एडवांस वोटिंग की तारीख होगी अक्टूबर 9th, 10th, 11th, 16th एंड 17th। वोटिंग आवर्स आर वीकडेज फ्रॉम 12 नून टू 8 PM और वीकेंड्स पर 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। यू कैन वोट एट एनी एडवांस वोटिंग लोकेशन इन ब्रैम्पटन। अपना वोटर नोटिस जरूर लाएं इफ यू रिसीव one and identification showing your name and address to vote. Agar aapko voter notice nahi mila, bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. Voting locations ke liye, voter information ke liye and a list of candidates ke liye, aaj hi visit kare brampton.ca/brampton votes.

0: Haan, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
4: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल. मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है. सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक, बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं. लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है. आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है. बदलाव के लिए आगे आइए. वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10. ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल.
5: हाय एवरीबॉडी, दिस इज नीरज श्रीधर, आल्सो नोन एज बॉम्बे वाइकिंग्स. राइट नाउ यू लिसनिंग टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
3: क्रेडिट कार्ड, GST या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद, सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca।
4: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTA's बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स। और बाहर का तापमान तकरीबन 19 डिग्री सेल्सियस, क्लाउडी सनी वेदर है, फील्स लाइक 18। संडे को होगी काफ़ी रेन, ट्यूसडे को भी रेनी है, बट टुडे द मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल स्टे अराउंड हियर। अपने घर और बिजनेस को प्रोटेक्ट करें। फेस्टिव सीजन स्पेशल पैकेज है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो लिसनर्स के लिए फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के पॉल सैगल। गेट फ्री स्मार्ट सिक्योरिटी पैकेज, $2,300 इक्विपमेंट्स की कीमत है। स्पेशल प्रमोशन में कोई एक्टिवेशन कॉस्ट नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है। एंड $100 का प्लान अब आपको $60 में मिलेगा। 24-hour मॉनिटरिंग होगी, स्मार्ट डिवाइस के जरिए आर्म डिसआर्म कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। एंड यू ऑल्सो गेट 4 कलर व्यू कैमराज फ्री, पहले 3 महीने फ्री। इंश्योरेंस डिस्काउंट सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टन कंडीशंस अप्लाई। ऑल्सो ऑफरिंग कलर व्यू कैमरा पैकेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम $700 ऑनवर्ड्स। High speed internet, VOIP lines by Safety and Security Solutions. GTA को 2009 से serve कर रहे हैं, since with more than 20,000 satisfied customers. Paul Sehgal, visit paulsecurity.com या call करें 416-940-0624, 416-940-0624. And one more time, Gurvinder Bamra, Allstate Insurance, Auto Home Insurance के amazing rates दे रही हैं। Call करें और पैसे बचाएं, simple. 647-303-3207, 647-303-3207. अगली रिक्वेस्ट भी नीरज श्रीधर मास्टर सलीम की आवाज में, फ्रॉम द मूवी लव आजकल। एंजॉय फिल्माया ऑन सैफ अली खान एंड दीपिका पारिकोन।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई परोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
2: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दा लई जनता दा साथ देन के उना च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डेवलपमेंट नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
1: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026, एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
0: दिस सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कर्णा, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days a week, 905-457-3232। फॉर नेम ब्रांड सन ग्लासेस ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट यू बाय होम लाइफ मिरिकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, फॉर रियल स्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज दैट दे हैव इन द रेंज ऑफ 700,000 and 800,000 इन ब्रैम्पटन, इन GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 या 416-627-4737। And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, जो कि 30+ locations से serve करते हैं 100% pure vegetarian food, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम Rajdhani Sweets and Restaurant।

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com skylakeimmigration।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
3: Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
3: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
4: नया इलाका और नया घर,
3: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल, 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
5: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन. 905-450-2828. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान हमारे साथ है. सुल्तान जी सुल्तानिक डील्स लेकर पहुंच चुके हैं. देर ओपन 7 days a week, 11 AM to 7 PM. फेस्टिव सीजन है भाई, फेस्टिव सीजन में बेस्ट डील्स आप तक पहुंचाना मेरा काम है. सो सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर रुख करेंगे और फेस्टिव सीजन की अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग साल की डील्स आप तक पहुंचाते हैं. सुल्तान जी स्वागत है आपका.
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: सुल्तान जी सबसे पहले फेस्टिव सीजन के मद्देनजर और उसका फायदा लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स का भी फायदा हो जाए. टीवी सेक्शन में मोस्ट अमेजिंग डील्स प्लीज बताएं.
1: मोस्ट अमेजिंग डील सनी भाई, हमारे पास इस वक्त 55 इंच गूगल फीचर्स के साथ 2026 का लेटेस्ट मॉडल है और क्रोमकास्ट बिल्ट इन है 55 इंच, ओनली 399 में
0: जी.
1: सिर्फ 399 का 55 इंच टीवी मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से. 65 इंच की अगर बात करें तो 499 में 65 इंच गूगल फीचर्स के साथ क्रोमकास्ट बिल्ट इन लेटेस्ट मॉडल है स्मार्ट टीवीज, जो कि आपको 499 में 65 इंच मिलेगा. जहां ये अमेजिंग डील्स अवेलेबल हैं जी, वहां ये भी बता दूं कि बिग स्क्रीन टीवीज में हमारे पास जो सोनी ने लेटेस्ट लॉन्च किया है, सोनी का ब्रेविया मॉडल है ये और 100 इंच है ये. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग प्राइस के साथ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस अपने कस्टमर को 2999 में 100 इंच सोनी गूगल फीचर्स के साथ 120 Hz विद गेमिंग मोड, क्योंकि सोनी प्लेस्टेशन 5 बनाया है उन्होंने जो प्रो, अब उसके साथ रेजोल्यूशन इसकी मैच की गई है. बेस्ट डील है, बिगेस्ट स्क्रीन है, 100 इंच सोनी ब्रेविया 3 आपको मिलेगा, ओनली 2999 का. $4,500 इसकी प्राइस है, $1,500 आप ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे सेव करेंगे. इसके साथ साथ 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल लेना चाहें तो हमारे पास 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल 1599 में है. लेकिन साथ के साथ सैमसंग ने जो लॉन्च किया है 85 इंच मिनी एलईडी के साथ, तो मिनी एलईडी 2026 का लेटेस्ट मॉडल सैमसंग का सिर्फ 1199 में 85 इंच मिलेगा. वेरी स्पेशल प्राइस है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, इंसेंटिव वॉक इन कस्टमर को मिल रहे हैं, पेमेंट 6 महीने में करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इवन यहां तक के 75 इंच 799 में सैमसंग मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे. तो 32 इंच से लेके 100 इंच तक एनी साइज ऑफ टीवी आपको चाहिए सोनी या सैमसंग, गारंटेड आप $600 to $800 तक की सेविंग कर सकते हैं. पहुंचना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है. BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट है जी. 905-450-2828 हमारा नंबर है. 905-450-2828
0: 905-450-2828. 200 फेस्टिव सीजन की डील टीवी सेक्शन में तो मैंने आप तक पहुंचा दी. अब जो दो नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, अप्लायंस लॉन्ड्री, देखते हैं कि जब भी सुल्तान जी आते हैं ऑलवेज प्रॉमिस करते हैं और डिलीवर भी करते हैं द बेस्ट डील्स. सुल्तान जी अप्लायंस लॉन्ड्री में फेस्टिव सीजन की क्या जबरदस्त डील्स चल रही हैं?
1: सनी भाई जैसे मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में आजकल बता रहा हूं कि 30% प्राइस इंक्रीज हुई है, क्योंकि 25% टैरिफ लगा है जी स्टेनलेस स्टील अप्लायंस स्टील पे और होम अप्लायंसेस पे. 5% का उन्होंने फ्रेट इंक्रीज हुआ है, तो 30% का डिफरेंस इस वक्त एज ऑफ टुडे अगर कोई कस्टमर बाय करते हैं तो उन्हें मिलता है. लेकिन ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस स्टिल सेविंग करवा रहा है जी अपने कस्टमर की. फॉर एग्जांपल फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर है जो कि स्टीम फीचर के साथ है. वॉशर भी स्टीम, ड्रायर भी स्टीम है. प्लैटिनम सीरीज, प्लैटिनम कलर में आपको ये मिलेगा. अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी का वॉशर एंड ड्रायर, $2,000 वाला. टैरिफ लगी प्राइस इसकी $2,600 है, लेकिन 1799 में हमारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, फ्री डिलीवर होगा और 1799 भी 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर है जो कि $2200 वाला सिर्फ 1499 में लेके $700 स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर पे सेव किए जा सकते हैं। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है $1700 वाला 1099 का पेयर लेके $600 टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव किए जा सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी होगी और 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रिज स्टोव डिशवॉशर बंडल पैकेज लेते हैं $5000 वाला 2999 में मिलेगा, जबकि इसकी भी टैरिफ लगी प्राइस जो है 3899 है। अगर आप बिल्ट इन किचन लेते हैं, बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवॉशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन 40% डिस्काउंट पे $12000 वाला सिर्फ $6900 में मिलेगा। 40% ह्यूज डिस्काउंट है बिल्ट इन किचन में जो कि आपको ऑफर किया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 7 days a week हमारा स्टोर खुलता है जी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है। BramptonAppliances.com सिंगल सिंगल पीस पे भी आप $600-$800 सेव करेंगे। 36 inch वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज है फुल साइज का, बॉटम फ्रीजर डबल डोर ऑन टॉप $2200 वाला 1499 में है, $700 आप सेव करेंगे। टॉल टब की डिशवॉशर है स्टेनलेस स्टील की $900 वाली 499 में लेके $400 सेव करेंगे। टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है जी जो $1000 वाली सिर्फ 599 में लेके $400 आप सेव करेंगे। विजिट करें, सेलेक्ट करें, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 मंथ में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 905-450-2828 हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को, ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको बिग स्क्रीन टीवीज पे या फिर लॉन्ड्री सेक्शन में वॉशर एंड ड्रायर, या अगर आप किचन अप्लायंसेस में फ्रिज स्टोव डिशवॉशर देख रहे हैं तो 905-450-2828 905-450-2828 जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू से गुड बाय। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी मंडे यानी नेक्स्ट वीक, मुझे दीजिए इजाजत। CMR 101.3 FM पर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

मुस्कुराइए दिल से, छूनिए साथ साथ, गुनगुनाइए जरा प्यार से, डालिए हाथों में हाथ, बस वॉल्यूम बढ़ाइए और लवी डवी अंदाज में हमसे जुड़ जाइए। हर मूड का म्यूजिक, नए पुराने सुरीले गाने, लवी डवी फिल्मी बातें, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के अफसाने, रेडियो टोरंटो कनाडा आरटीसी, हर दिल की धड़कन, हमारी आपकी बातों का रंग, ये है आपका अपना शो आमिर और शिवानी की आवाजों के संग। आमिर और शिवानी की आवाजों के संग।

मंडे से फ्राइडे दोपहर 2 से 3 बजे तक। तुम माहौल बनाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और लवी डवी हो जाइए। RTC रेडियो टोरंटो कनाडा 416-303-3639।

0: आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हाँ जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111।
1: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
2: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
3: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
2: क्या वो मदद करेंगे?
3: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
4: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
3: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
4: कॉल सैयद एम रजा 4169375046, दैट इज 4169375046।
5: रेडियो टोरंटो कनाडा, वेरी गुड आफ्टरनून और खूबसूरत सी ये दोपहर 2:08 का वक्त लिए हुए और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। एक सेइंग है, एक कोट है जो कहता है कि अ स्लीपिंग ह्यूमन ब्रेन कैन स्टिल अंडरस्टैंड द वर्ड्स बीइंग स्पोकन अराउंड इट। अगर हम जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे नहीं सोता जैसे हम सोते हैं। हमारे आसपास जो हो रहा होता है, जो बातें चल रही होती हैं, उसको हमारा स्लीपिंग ब्रेन सुन रहा होता है। कभी आप सोचिए, कितनी भी गहरी नींद में हो, आपको हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देंगी आपको, फिर आप उठने के बाद अपने घर वालों से पूछेंगे कि वो आप लोग इस वक्त थे क्या, कोई खाना खा रहा था क्या, कोई आ रहा था क्या, कोई जा रहा था क्या। बिकॉज सेंसेस जो हैं ब्रेन के, वो बहुत शार्प होते हैं सोते हुए भी, है ना। और ऐसे ही दोस्तों, जब हम सपने देखते हैं ना, हमारा बच्चा कोई सपने देखता है, तो एज अ पेरेंट हम जो हैं एक स्लीपिंग ब्रेन की तरह होते हैं कि सोते जगते हमारे जहन में वही चीज़ होती है कि हमारे बच्चे के सपने पूरे हों। और स्पेशली बच्चा अगर करियर के सपने देखे और वो सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करे, तो पेरेंट्स और लव्ड वंस को लगता है कि बस ये बच्चे के सपने पूरे हो जाएं, यही एक ख्वाहिश है जिसके लिए वो दुआ भी करता है, प्रे भी करता है। तो ऐसी ही रूहानी कॉलेज है जो आपके सपनों को, आपकी दुआओं को हकीकत में बदलता है। और हमारे साथ रूहानी कॉलेज से ओम जी जुड़ चुके हैं, ओनर ऑफ रूहानी कॉलेज। ओम जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? सैयद जी, अच्छा अच्छा, ओके ओके, आप दोबारा कर दीजिए। पुट मी ऑन एयर। रेडियो टोरंटो कनाडा, 2:09 का वक्त हो चला है और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सैयद एम रजा साहब हैं। जब हम एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि चारों तरफ से अंधेरा छा गया, हमें समझ में नहीं आता क्या करें, ये वो वक्त होता है जब सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, अननोइंगली गलतियां करते हैं। हम उनको कॉल घुमा देते हैं जिनसे वो चीज़ सॉल्व हो ही नहीं सकती। हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने अक्विंटेंस हैं, उनको हमें लगता है कि उनके साथ जो हुआ, जैसे उन्होंने हैंडल किया, हमारे साथ भी वैसे ही हैंडल करने से सिचुएशन संभल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। और लेकिन जब एक ऐसा नाम हमारे साथ जुड़ता है जो मिलियंस और लाखों की कॉम्पनसेशन हमें दिला सकता है, तो क्यों ना उस इंसान से बात की जाए, उस प्रोफेशनल से बात की जाए और अपने केस को उन्हीं के सामने रखा जाए। और हमारे साथ इट्स ऑलवेज अ वेल प्लेजर टू वेलकम सैयद एम रजा साहब। नंबर में पहले से बता दूं, सैयद साहब की बातचीत सुनने के बाद इस नंबर की जरूरत आपको डेफिनेटली पड़ेगी। सैयद एम रजा साहब का नंबर है 4169375046, दैट्स 4169375046। सैयद साहब, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
6: जी शिवानी जी, आपका और आपके इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया. हैप्पी फ्राइडे और आपको, आपके लिसनर्स को, और हैप्पी थैंक्सगिविंग एज वेल. ये लॉन्ग वीकेंड जो है वो आ रहा हैगा और सबको जो है इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ड्राइव सेफ करें ताकि जो है वो कोई भी एक्सीडेंट में जो है वो इन्वॉल्व ना हो. लेकिन बहरहाल जैसे आप भी बहुत सारे कोटेशंस जो हैं अपने खूबसूरत प्रोग्राम में लोगों को बताती रहती हैं, तो एक कोटेशन ये भी हैगा, अ थिंग विच हैज टू हैपन विल हैपन.
5: यस यस.
6: तो रोड पे अगर एक्सीडेंट होना है तो वो होगा, कभी किसी का होगा, कभी किसी का होगा. क्योंकि कभी ना कभी जो है वो कनाडा में रहते हुए ऐसी सिचुएशन में हम लोग आते हैं.

0: 3 महीने भी नहीं हुए हैं उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स के वेयर यू आर, विच सिचुएशन यू आर। तो जब आपका एक्सीडेंट हो जाता हैगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। उसके बाद आपने सबसे पहले काम जो करना है, आपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना हैगा। देखिए मैं एक चीज बहुत ज्यादा कहता हूँ कि आप अगर अपनी गाड़ियों में डैश कैम लगाएं तो उससे बहुत आसानी हो जाती हैगी।
1: अच्छा।
0: उसका ये है कि कम से कम आपकी लाइबिलिटी डिटर्मिनेशन में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अभी हम एक केस को जो है वो रिव्यू कर रहे थे कि जिसमें जो हमारा क्लाइंट है वो, उसने कहा जी वो रेड सिग्नल पे स्टॉप था और जब जो है वो लाइट ग्रीन हुई देन ही प्रोसीडेड, द अदर लेडी हु वाज मेकिंग अ लेफ्ट हैंड टर्न केम एंड स्ट्रक हर। और जो अदर लेडी की स्टोरी जो है वो ये स्टोरी है कि शी वाज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लेफ्ट हैंड टर्न व्हेन, मींस टू से दैट आवर क्लाइंट दिस पर्सन वेंट थ्रू रेड लाइट एंड स्ट्रक हर। अब ये जो सिचुएशन है बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हैगी, इसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस सीन पे अवेलेबल नहीं है कि जो टेस्टिफाई कर सके कि आया जो है रेड लाइट जो है वो ब्रेक की इस शख्स ने या नहीं की, या वो लेडी जो है वो उसने अनसेफ लेफ्ट टर्न किया। अब इस सिचुएशन में ही सेड शी सेड ही सेड शी सेड ये स्टोरी हैगी, लेकिन अगर यही जो है वो डैश कैम हो तो इससे बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन में जो है वो आसानी हो जाएगी कि एटलीस्ट किसका जो है वो ये फॉल्ट हैगा। और उस सिचुएशन में जो है वो लाइबिलिटी अगर जो है वो स्प्लिट हो या लाइबिलिटी किसी एक पर हो तो बचा जा सकता है। अब इस सिनेरियो में आया तो ये हुआ हैगा कि वो लेडी जो है वो उसका सिग्नल जो है वो ग्रीन एडवांस खत्म हो गया था, मगर उसने तेजी से निकालने की कोशिश की कि मैं भी निकल जाऊं साथ में एक गाड़ी के पीछे, जो अक्सर लोग करते हैंगे, बट शी डिडंट हैव दैट मच टाइम। लिहाजा बहरहाल अब जो भी कुछ हुआ है बहरहाल अब ये तो फर्दर सर्कमस्टांसेस डिटरमिन करेंगी, लेकिन जब ऐसा एक्सीडेंट हो गया हैगा तो अब काम क्या हैगा। अब काम ये हैगा कि अगर आप कॉन्शियस इनफ हैं, जो आमतौर पर जो है क्योंकि गाड़ियाँ सेफ हैं, बहुत ज़्यादा जो है फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं होते हैंगे, मोस्टली सॉफ्ट टिश्यू, तो अब सबसे पहले आप जो है वो गाड़ी की पोजिशन के पिक्चर्स ले लें कि जो है वो आपकी गाड़ी कहाँ पर एंड हुई है, अदर कार कहाँ पर एंड हुई है, और कंप्लीट इंटरसेक्शन का पिक्चर लें और दोनों गाड़ियों की जो एंडिंग पोजीशन है उसकी कंप्लीट पिक्चर जरूर लें बगैर मूव हुए हुए। बाद में भले गाड़ी मूव हो जाए उसका मसला नहीं है, लेकिन आप और जो अदर गाड़ी का जो है वो लाइसेंस प्लेट, उसको जहाँ जहाँ डैमेजेस हुई हैं उसकी पिक्चर्स आप ज़रूर लें, क्योंकि डैमेजेस भी ये बताती हैं कि किस जगह पे फर्स्ट इम्पैक्ट आया हैगा, और जब किस जगह पे फर्स्ट इम्पैक्ट आया है तो उसका मतलब ये है कि किस पोजीशन में गाड़ी थी, और अगर इंटरसेक्शन में थी तो कितना दूर इंटरसेक्शन से निकल गई थी, या इंटरसेक्शन के अंदर ही अभी थी, या तकरीबन इंटरसेक्शन क्रॉस कर गई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है वो ये डैमेजेस की इम्पैक्ट से जो है वो डिटरमिन किया जा सकता हैगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगा कि आप जो है करें और कंप्लीट और क्लियर पिक्चर लेने की कोशिश करें, मतलब थोड़ा सा अपने आप को ज़रा कंट्रोल करते हैं विदाउट बीइंग एक्स्ट्रा हाइपर, ताकि व्यू जो है वो क्लियर आए, ताकि उसको जो है वो कम से कम कुछ आसानी हो अगर वो डैश कैम नहीं है तो
1: जी।
0: लेकिन अगर डैश कैम है तो बहुत ज़रूर बहुत अच्छी बात हैगी। उसके बाद में आपने जो है वो क्या करना है, आपने 911 को कॉल करना है, आप एक्सीडेंट रिपोर्ट कराएं, वो लोग सीन पे आके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आप अगर इस पोजीशन में हैं तो ज़रूर अपना स्टेटमेंट आप दें, आप अपना स्टेटमेंट प्रोवाइड करें ताकि जो है वो ऑफिसर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। अदर पार्टी का भी कोई इंडिपेंडेंट विटनेस अगर लकीली हैगा, मेक श्योर वो इंडिपेंडेंट विटनेस ऐसा होना चाहिए जिसने एक्सीडेंट देखा हो, इट्स नॉट दैट ही डिड नॉट सी द एक्सीडेंट। और इंडिपेंडेंट विटनेस का मतलब है आपका पैसेंजर नहीं, उसकी गाड़ी का पैसेंजर नहीं, बल्कि सम अदर पासर बाय और स्टैंड बाई पर्सन जो वहाँ पे हो और जिसने बाकायदा सारा देखा हो। क्योंकि जब भी इंडिपेंडेंट विटनेस का स्टेटमेंट आता है कोर्ट में स्टेटमेंट, तो अदर पार्टी को उसको क्रॉस एग्जामिन करने का राइट होता है, ताकि अगर वो जिस भी फेवर में जा रहा हो तो उससे जो है वो उसकी जो टेस्टिमनी है उसको टेंट किया जा सके कि ये जो टेस्टिमनी इसकी क्रेडिबल नहीं हैगी। तो लिहाजा ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लॉयर्स का काम है कि विटनेस की टेस्टिमनी को जो है वो टेंट करना कि वो क्रेडिबल ना लगे। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब ये कि इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो उसके बाद में जो है आपने हॉस्पिटल इंजरी हुई है, आपने हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल पे आपने सारी इंजरीज बतानी हैंगी, नो मैटर इट्स माइनर मेजर, ब्लैक आउट हुआ है, आप जो है वो अनकॉन्शियस हो गए थे, योर हेड गॉट स्ट्रक इनसाइड दिखा।

0: बॉडी में कोई इंसाइड किया आएगा, ये सारा आपने बताना। और अगर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और अगर आप वॉक इन या फैमिली क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपने ये सारी सिचुएशन है कि व्हाट हैपेंड टू योर बॉडी इनसाइड योर कार, ये बहुत बहुत आपने जो है वो डेलिकेटली और माइन्यूटली आपने एक्सप्लेन करना है ताकि इनिशियल जो आपकी इंजरीज की रिपोर्टिंग हो वो एग्जैक्टली वही हो जो आपने एक्सपीरियंस किया हैगा। और रिमेम्बर, आपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल नहीं करना हैगा क्योंकि वो आपने उनको कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करना हैगा अनटिल एंड अनलेस आप सैयद लॉ से मशवरा करें। सैयद लॉ इज हेयर टू हेल्प यू, वी आर अवेलेबल ऑन ए कॉल अवे, आप नंबर हमारा बताती रहती हैंगी तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्लीज फील फ्री एनी टाइम टू कॉल। If sometime we are not available, please just leave your text message that rather than a voicemail. Oh, that's very because वो फौरी तौर पे जो है we can see that. तो आप जो है वो कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट, आप एक ही एक नंबर पे कॉल करें। शिवानी जी नंबर आप बता देंगी ताकि आपके लिस्ट का नंबर नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच
1: जी। बिल्कुल, और कहते हैं कि वी ऑल लूज अवर वे एट लीस्ट वंस, सो लाइफ इज टेस्टिंग टू सी हु कैन फाइंड देयर वे बैक। अगर आप किसी भी एक्सीडेंट पे फंस गए हैं तो अपना रास्ता वापसी का जरूर ढूंढिए, और वो रास्ता है सिर्फ 10 नंबर के फासले पर। सैयद एम रजा साहब का नंबर है 416-937-5046। सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।
0: थैंक यू शिवानी जी।
1: थैंक यू जी, प्लेजर। और बड़े खूबसूरत से गाने की तरफ, मौसम बहुत प्यारा है, थैंक्स गिविंग की तरफ बढ़ते हुए कदम है। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और रेडियो टोरंटो कैनेडा से जुड़े रहने के लिए।

0: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
1: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
0: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
1: 90% पास रेट।
0: कॉल नाउ 416-743-9222
1: 416-743-9222
0: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
2: श्री दुर्गा माता ज्योतिष पंडित रामकृष्ण, जी हाँ, क्या आप अपनी घर गृहस्थी, शादी, प्यार, जीवन, बच्चे, हेल्थ या फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर परेशान या निराश हैं? तो रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर पंडित रामकृष्ण अपने एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की सहायता से आपकी पूरी समस्याओं का समाधान बताएंगे। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल गाइडेंस है। सालों के एक्सपीरियंस से पंडित रामकृष्ण का केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी समस्याओं को सुलझाकर आपको सही दिशा देना। अभी कॉल कीजिए पर्सनल पाम रीडिंग और कंसल्टेशन के लिए पंडित रामकृष्ण 437-882-0639 437-882-0639।
3: भाई मैनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा तां जवाब ही नहीं। सोहणे फेस वालीए, उच्ची हील वालीए, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारीए। फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
4: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल। ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
5: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कंटेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज। RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ कॉल 416-303-3639 416-303-3639।
6: क्या आप सुन रहे हैं?
7: क्या आप सुन रहे हैं?
6: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
7: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
6: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
8: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639।
9: आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और दोस्तों, इंडियन सिनेमा में बहुत सारी फिल्में आई, बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत सारी फिल्में आती रहेंगी। सुपर हिट फिल्में, सुपर डुपर हिट फिल्में जिसमें हजारों करोड़ों का कारोबार करने वाली फिल्में, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि आइकॉनिक मूवीज जानी जाती हैं, कल्ट मूवी का दर्जा जिनको मिल चुका है। और उन्हीं में से एक फिल्म थी GP सिप्पी की शोले। कौन भूल सकता है इस फिल्म को? जितनी बार भी देखें उतनी बार पूरी फिल्म देखने के बाद ही हम दम लेते हैं। ये जादू है, आज भी बरकरार है। ये मूवी 1975 में आई थी, 15 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। और जब कोई भी मूवी बनती है तो उसका पहले रफ टेक होता है, उसके बाद फुल टेक होता है। तो इसका जो रफ टेक था या रफ टाइम था मूवी का, जो रफ मूवी बनी थी वो 3-4 घंटे का था, लेकिन उसको बाद में 3 घंटे 24 मिनट का कर दिया गया। और ये जो मूवी थी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग से फैक्ट हैं इस मूवी के। इस फिल्म के दौरान हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रोमांस शुरू हुआ। संजीव कुमार इसमें ठाकुर के रोल में थे और वो हेमा मालिनी को इतना पसंद करते थे रियल लाइफ में कि उन्होंने हेमा मालिनी को शादी का प्रपोजल भी दे डाला, जो हेमा मालिनी ने पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। तो पहले धर्मेंद्र को संजीव कुमार वाला रोल मिलने वाला था ठाकुर का, और संजीव कुमार को मिलने वाला था वीरू का रोल जो धर्मेंद्र को था। था। देखिए, जब धर्म जी को पता चला कि वीरू के रोल में संजीव कुमार ने अभी प्रपोज किया है हाल ही में, वीरू का भी रोल मिल गया, तो ऑन स्क्रीन हेमा मालिनी के साथ तो फुल ऑन रोमांस करने वाले हैं। और ये हमारे धर्म जी को कहाँ गवारा था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना वीरू दे दीजिए और संजीव कुमार के ऊपर ठाकुर का किरदार बहुत अच्छा जचेगा। तो इस तरीके से वो स्विचिंग हुई और हिस्ट्री इज देयर कि कैसे रोमांस हुआ। तो महबूबा महबूबा ये गाना, जिसमें हेलन का मास्टरपीस डांस और जलाल आगा का ड्रमिंग और साथ में गब्बर, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो टोरंटो कनाडा विद आमिर एंड शिवानी।

0: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हाँ, जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111।
1: हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसी भी तरीके की बीमारी हो, मौसमी बीमारी है, सीजनल एलिमेंट्स हैं, या लॉन्ग टर्म कोई बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, सालों से अकेले इस बीमारी का बोझ उठा रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, अब और नहीं, बस एक नंबर आप घुमाइए जो अभी आपको फिर से मैं बता दूं। नंबर है 6473278111। और वैद्य जी, वेलकम करते हैं आपका रेडियो टोरंटो कनाडा में। हमारे लिस्टर्स को थोड़ा अपने बारे में जरूर बताइए और आयुर्वेद में हेल्थ को लेकर कैसा गाइडेंस आप देना चाहते हैं, आयुर्वेद कैसे हमारी काया को निरोग रखता है, हमें निरोग रखता है, हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करता है, हमारे लिस्टर्स को क्या मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे वैद्यराज जी?
2: ये दुनिया में असली धन अच्छा स्वस्थ है। मैं साझा केरला आयुर्वेदिक से वैद्य रत्नम पीवी राज हूँ। पहले हमारा सारे लिजनर्स के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हमेशा हमारा पेशेंट्स का तबीयत अच्छा रहने के लिए कुछ ना कुछ सलाह देते रहता हूँ हमेशा। हेल्थ इज वेल्थ। पुराना टाइम पे भी सभी लोग बोलता है आयुर्वेदा लंबी आयु का वरदान है। ये आयुर्वेदा हमारा जीवन में रहेगा तो हमारा सारी शरीर अच्छा हो जाता है। और आयुर्वेदिक का कमाल क्या है, कोई भी बीमारी को जड़ से निकाल देता है और लोगों का शरीर में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। उसका कारण से आगे फ्यूचर में भी कोई भी बीमारी शरीर को तकलीफ ना कर सकते, क्योंकि शरीर में उतना इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। दिस इज पावर ऑफ आयुर्वेद। हम सुबह से रात तक क्या क्या खाता है वो सब कुछ नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पेट से जरूर निकाल जाना है। ऐसा रहेगा तो पेट भी शुद्ध होता है, बॉडी भी शुद्ध होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है। हमारा तबीयत अच्छा रहेगा तो हमारा माइंड भी अच्छा रहता है। हम फैमिली के साथ टाइम भी आराम से स्पेंड कर सकते, बिजनेस आराम से कर सकते, जॉब भी आराम से कर सकते। इसीलिए पहले तबीयत अच्छा रहना है। पैसे, बंगला, गाड़ी, वो सब कुछ बाद में, वो सब कुछ आता ही जाता है, लेकिन तबीयत इम्पॉर्टेंट है। तबीयत एक बार जाएगा तो पूरा फैमिली लाइफ पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसीलिए तबीयत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। हम इधर GTA में ब्रैम्पटन एंड स्कारबोरो दोनों लोकेशन में रहता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6473278111, इट्स 6473278111। थैंक यू।
1: वैद्य रत्न पीवी राज जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। अब देखिए मौसम बदल रहा है, आज देखिए डबल डिजिट में टेम्परेचर है और अगले हफ्ते फिर से थोड़ा सा मौसम और बढ़ेगा। आज रात में टेम्परेचर सिंगल डिजिट में आएगा। तो इतनी जब तेजी से जब मौसम बदलता है ना, तो ऐसे में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आ जाती हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हमें घेर लेते हैं, और जिसमें एक है एस्थमा की प्रॉब्लम। एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो जरा बताइए कि क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे, कैसे वो आयुर्वेद के जरिए स्वस्थ रह सकते हैं?
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। आस्थमा, आस्थमा नवे डेज बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम वीक इम्यूनिटी के कारण से भी होता है, वेदर का कारण से भी होता है, जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चों को भी होता है। तो इसका कारण से लोगों को खांसी आ जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को सर्दी पकड़ता है, कुछ लोगों को नॉक ब्लॉक हो जाता है, कुछ लोगों को चेस्ट में हेवी फीलिंग होता है, रात को सोने में आवाज़ आता है, वीजिंग आता है, रात को नींद भी बराबर नहीं मिलता है और आंख भी लाल लाल हो जाता है, आंखों में एलर्जी पकड़ता है, इचीनेस हो जाता है, चिक चिक भी आता है, स्नीजिंग बोलता है ना, स्नीजिंग भी आता है। इसका कारण से लोगों को बॉडी भी वीकनेस हो जाता है, कितना खाना खाएगा तो भी बॉडी को बराबर सूट नहीं होता है, थोड़ी देर चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए हमारा केरला में बहुत अच्छा जड़ी बूटियों है, वो दवाई खाने के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता है। हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, वीकनेस के लिए, और कुछ कपल्स को शादी होता है बहुत साल को पहले लेकिन बच्चा नहीं मिलता है, तो उसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो लोगों का शरीर में, उसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई है। और जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए, लिवर इश्यूज़ होता है ना, फैटी लिवर, उसके लिए, बाल हेयर का प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, डायबिटीज़ के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए, माइग्रेन के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा दवाई मिल जाता है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य रत्न पीवी राज जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चाहे सीजनल एलिमेंट्स हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, नंबर सिर्फ एक है और ये है 6473278111 6473278111। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी हमारे साथ देने के लिए, बहुत शुक्रिया।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, वक्त हो चला है 2:39 इज द टाइम। और दोस्तों, अगर हम ख्वाब पूरे करने की बात करते हैं, सपने पूरे करने की बात करते हैं, तो कहते हैं कि अगर एक बड़ी अच्छी सी अपडेट है, हेल्थ की अपडेट है, जो कहती है कि अगर हम सोने से पहले, ये प्रूवन फैक्ट है, एक स्टडी कहती है कि अगर हम एप्पल जूस पीते हैं ना बिफोर गोइंग टू स्लीप, इट कैन कॉज यू टू हैव मोर विविड एंड विविड ड्रीम्स। इसका मतलब ये है कि एप्पल जूस पी के अगर हम सोते हैं तो हमारे हमारे जो सपने हैं वो बड़े, हमें ब्राइट सपने दिखते हैं, हमें क्लियर सपने दिखते हैं, हमें जो विजन है वो बहुत क्लियर दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी के सपने टूटते हैं, करियर के सपने टूटते हैं, तो एप्पल जूस भी मदद नहीं कर पाएगा। मदद करेगा तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन, वो है रूहानी कॉलेज। और बच्चा जो है ना, वो जब ख्वाब देखता है, सपने देखता है, और जीते हुए, सोते हुए, जागते हुए उसी सपने को जीता है, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता है कि वो डॉक्टर बन के मैं कैसा दिखूंगा या कैसी दिखूंगी। और ऐसे में जब सपने टूटते हैं, शैटर्ड होते हैं, तो पेरेंट्स के साथ साथ, वो बच्चे के साथ साथ, उसके लव्ड वंस के साथ साथ, सबको दुख होता है। और इस दुख में शामिल होता है एक और इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट जो उस दुख की घड़ी में सिर्फ शामिल ही नहीं होता, वहां से बच्चे को निकालता भी है, और वो है रूहानी कॉलेज। और नंबर वही है आपका, जाना पहचाना, बहुत प्यार और बहुत पसंद करते हैं आप इस नंबर को भी, इस इंस्टीट्यूट को भी, 905-731-2555, 905-731-2555। और जब रूहानी कॉलेज के ओनर ओम वर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ऐसे ही सपने पूरे होने की तरकीब वो हमें बताते हैं, कैसे रूहानी कॉलेज पूरे करता है ये सपने। ओम जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: Good afternoon, Sivanand ji. I'm good.
0: जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस ओम जी। सबसे पहले तो जो मेडिकल प्रोफेशन है, अब देखिए फेस्टिवल का सीजन है, दिवाली आ रही है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उसके बाद क्रिसमस आएगा, ये सारी खुशियां जो है ना वो दुगनी चौगुनी हो जाती हैं जब हमारे बच्चे के सपने पूरे होते हैं डॉक्टर बनने के। तो कैसे आप इन सपनों को पूरा करते हैं, और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उन्हें करना होगा जिससे वो आपके पास आए और एडमिशन लें?
1: जी बिल्कुल शिवानी जी, जैसे आपने बोला कि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं काफी सारे, तो हमारे बच्चे जो पिछले बैच के थे ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में चले गए, उनकी एडमिशन हो गए हैं, और पेरेंट्स को वही खुशी हो रही कि हर जगह की हमारा बच्चा मेडिकल कॉलेज में चला गया, एंड ही एंड सी विल बी डॉक्टर इन फ्यू ईयर्स। तो ये भी एक तो ये खुशी होगी नॉर्मल। दूसरा ये कि विद इन 4 ईयर जो है हमारा, फोर ईयर्स के जो पहले नॉर्मल रूट से है उससे पहले हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल रूट, क्योंकि उनको बीएससी नहीं करना होता, उनको एमटेक नहीं देना होता, इनको यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी नहीं रहती है कि इनको एडमिशन होगा नहीं होगा। जैसे आपने बोला कि जब एक सपने टूटते हैं तो हमारे पास सवाल ही नहीं आता सपने टूटने का, क्योंकि जैसे 12th ग्रेड पास किया आपने डायरेक्टली रूहानी कॉलेज में आए, और रूहानी कॉलेज का प्री मेड में एडमिशन कर लिया आपने, मतलब कि आपका एक ग्रांटेड जर्नी चालू हो गया कि आपका बच्चा डॉक्टर बन के ही निकलेगा जो हमारे पार्टनर कॉलेज के साथ में। जी जी जी, तो एक बड़ी खुशी होती है, पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन होती है, एक पीस होती है कि एक हमारा बच्चा राइट डायरेक्शन जा रहा है और हमें पता है कि कल के डेट में बन के निकलेगा डॉक्टर, तो एक बहुत ही सुकून मिलते हैं। जी जी
0: जी, बिल्कुल सही कहा, कितना सुकून मिलता है कि अब देखिए, जैसे अभी ओम जी ने बताया, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और ऑलरेडी जा चुके हैं, अपना कोर्स शुरू कर चुके हैं, उनके पेरेंट्स के लिए तो दिवाली की जैसे जितने त्योहार हैं और जितने भी और फेस्टिवल्स हैं, सारे फेस्टिवल्स कितने और ज़्यादा खुशी देने वाले होंगे जब उनको लगेगा कि उनका बच्चा अपने ख्वाब पूरे करने की डायरेक्शन में कदम बढ़ा चुका है। तो ऐसे ही अगर आप भी सोच रही हैं और मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुखी हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ 10 नंबर के फासले पर आपके बच्चे का फ्लरिशिंग करियर आपका इंतजार कर रहा है। 905-731-2555, 905-731-2555। और ओम जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, और दूसरे कौन से कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छी कमाई की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कोर्स को लोगों को पता ही नहीं है, और ये भी नहीं पता कि कितनी ज्यादा इनकम है। जैसे हमारे पास में ऑस्टियोपैथ का हो गया, एक्यूपंचर का हो गया, तो सिंस हमारे क्लिनिक 10 साल से रहे हैं तो हमें पता है कितनी हार्ड होती है किसी जो एक्यूपंक्चरिस्ट को या ऑस्टियोपैथ का जो प्रोवाइडर्स को ढूंढने में, तो एक बहुत हमारा टाइम जाता है और मिलते भी नहीं है। तो हमारे कॉलेज में सेम कोर्सेज अवेलेबल हैं, विद इन वन ईयर टू ईयर के कोर्सेज हैं, और करने के बाद में डबल डिजिट किया उससे ज्यादा ही इनकम और ग्रंटेड एक जॉब होती है, एक गारंटी होती है कि आपको इनकम होगी होगी। ऐसा नहीं कि कोर्स कर लिया आपने जॉब मिलेगी नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है। ये करने के बाद में आपको इतनी ज्यादा डिमांड है कि आपके पास जो लाइसेंसिंग आने से पहले ही कई सारे ऑफर आपके पास आ जाते हैं। जी
0: क्या बात है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसे में आप इंतज़ार मत कीजिए किसी भी, ऐसा ना हो कि कभी कभी हमें लगता है कि हम क्या करें, टाइम ज़ाया कर देते हैं। एक एक मिनट आपके बच्चे का कीमती है, क्योंकि जो जो मिनट जा रहा है बच्चे का, उस पर उसकी बच्चे की परेशानी भी बढ़ रही है, उसकी एंग्जाइटी भी बढ़ रही है, और इससे बच्चा और दूसरी परेशानी में भी जा सकता है। इन सबको अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक नंबर घुमाइए, 905-731-2555, 905-731-2555। उस जगह की जो पॉजिटिविटी है, जो हमने खुद एक्सपीरियंस की है रूहानी कॉलेज की, वो आप दाखिल वहां पे होंगे ना तो आपको लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये एक एडिशनल सपोर्ट है जो आपको मिलती है, और इसी के साथ आपका बच्चा एक शानदार पढ़ाई से एक बहुत ही अच्छी कमाई की तरफ कदम बढ़ाता है, वो भी जिंदगी भर की कमाई। 905-731-2555। ओम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू जी।

अपने लव्ड वंस के साथ बहुत प्यारा सा वक्त बिताने का टाइम होता है वीकेंड का, और जब लॉन्ग वीकेंड हो, थैंक्स गिविंग का वक्त हो, तो अपनों को भी शुक्रिया कहना चाहिए। अपनों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपनों को भी शुक्रिया कहिए और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ ये वीकेंड गुजारिए। यही जिंदगी के अच्छे अच्छे से पल होते हैं। और म्यूजिक को हमेशा अपने साथ रखिए। 81% ऑफ पीपल यूज म्यूजिक एज एन एस्केप फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स इन देयर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर दैट।

0: और दोस्तों, अपनों के साथ वक्त बिताने की, अपनों के साथ प्यार मोहब्बत से मोहब्बत के पल बिताने की जो तमन्ना है, जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है जब हमारे हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है, वो निरोग रहता है, यानी कि डिजीज लेस रहता है, कोई बीमारी नहीं होती है। छोटी मोटी बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती है, लाइलाज बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप एक नाम याद रखते हैं, वो नाम है आयुर्वेद और हर्ब्स गुरु जी का। अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, और स्कार्ब्रो से, ब्रैम्पटन से, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ब्रैम्पटन में होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कार्ब्रो में होते हैं। नंबर तो आपको याद ही हो चुका होगा, ये बहुत पॉपुलर नंबर बन चुका है, 4374383399, 4374383399। गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते नमस्ते बहन जी, मैं बहुत अच्छा है। आप कैसा है बहन जी? थैंक यू
0: जी
1: फॉर
0: बिल्कुल,
1: सेइंग।
0: थैंक यू सो मच गुरु जी। आप जब आते हैं ना, तो आपकी जो मुस्कुराहट है, आपकी जो हंसी है, वो ये बताती है, सब लोगों को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा। देखिए लोग क्या होता है
1: सही बात बहन जी।
0: जी, और इसी के साथ मिलता जुलता मेरा सवाल है। एक एक प्रॉब्लम है जो कि पहले नहीं सुनने में आती थी, आजकल छोटे बच्चों को भी हो जाती है। एक एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। उससे वो डिप्रेशन शायद किसी ना किसी छोटी छोटी बीमारियों से आ जाता है, और वो डिप्रेशन से हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इसका कुछ आयुर्वेद में इलाज है? क्योंकि बहुत पेशेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं आपसे जानने के लिए।
1: यस यस यस जी, क्या है जी, ये डिप्रेशन एक है, सारा बीमारी आने के लिए कारण कारण मेन कारण डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन के लिए सारा बीमार आ जाता है, और ये डिप्रेशन से स्ट्रेस हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, और एंग्जाइटी भी हो जाता है बॉडी को अंदर भी, इस कारण से नर्वस वीकनेस हो जाता है। डिप्रेशन कारण से बीपी प्रेशर भी हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, वैसा होता है। उसके लिए क्या करना, उसको कंट्रोल करना, उसको नहीं कंट्रोल करें तो उसके लिए जॉइंट्स में, बॉडी में, मसल्स में ताकत कम हो जाता है, बॉडी में कमजोर हो जाता है, ये काम करके दूसरा काम कर नहीं पाता है, वैसा वैसा होता है। इसके लिए क्या करना है, हमारे पास हेरबल से बहुत अच्छा इलाज है। ये हेरबल सारा में हिमालय से लेकर आया था, उससे लिए तो बिल्कुल ये सारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेस, मेमोरी लॉस, शॉर्ट मेमोरी, वो भी ठीक हो जाता है।
0: ओ, बहुत बहुत अच्छा जी।
1: वैसा बहुत लोगों हमारे पास वो प्रॉब्लम के लिए आ गया, वो बहुत लोग कम से कम इधर 200-300 लोगों को इधर में ठीक कर दिया था इधर का।
0: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तभी देखिए गुरुजी, जो ठीक होते हैं वो अपने आप ही, आपको तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, जो ठीक होता है वो अपने आप ही अपने जान पहचान वालों को बताता
1: सही
0: है
1: बात,
0: कि मेरी तबीयत ठीक हुई है। और आपका यही चीज है, एक यही आपकी खासियत है कि लोग अपने आप ही आपके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक सेवा भावना
1: सही
0: के
1: बात,
0: साथ काम करते हैं हमेशा। और गुरु
1: सही
0: जी का
1: बात,
0: कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है,
1: सही बात,
0: कंसल्टेशन का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं ना गुरु जी? सही।
1: हाँ जी, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, और हमारा दो लोकेशन में लोकेटेड है, कार्बो में मंडे टू स्टे वेडनेसडे, ब्रामटन में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन ब्रामटन में रहता है। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, सारा नेचुरल तरफ रहता है, इसलिए हमारा बॉडी को दूसरा इफेक्ट नहीं होता, ठीक हो जाता है।
0: अच्छा गुरु जी, चलते चलते बस एक बार बता दीजिए कि जो विमेन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत लेडीज परेशान रहती हैं थोड़ी उम्र के बाद, और लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी, उसमें भी कुछ लाइलाज बीमारियों का भी ट्रीटमेंट करते हैं आप विमेन से रिलेटेड?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन
0: जी।
1: ये वुमेन को 47-49 के बाद मोनोपॉज होता है
0: जी।
1: ये मोनोपॉज कारण से हॉट प्लक्स होता है, नींद नहीं आता है, बॉडी थकावट हो जाता है और घबराहट हो जाता है, उसको बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास मोनोपॉज के लिए, बहुत स्पेशली इलाज मेरे पास है मोनोपॉज के लिए। और यंग लेडीज को क्या होता है, मेंसेस में दर्द होता है, पीरियड्स में दर्द होता है छोटा बच्चे लोगों को, और पीरियड्स में दर्द होता है, ओवर ब्लीडिंग होता है, 15 दिन दस दिन पंद्रह दिन जाता है उसके लिए भी, एंड वाइट डिस्चार्ज के लिए भी, और पीसी बॉडी के लिए भी, और इनसाइड हमारा हमारा वो यूट्रस को इनसाइड वो होता है, फाइब्राइड्स होता है, सिस्ट होता है, वो उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है, उसके लिए भी इलाज है, मेन वुमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा इलाज है, बहुत लोग असर हो गया था मेरे पास आके।
0: बहुत बहुत ठीक। तो देखिए, किसी भी तरीके की बीमारी है, मेन विमेन चिल्ड्रन न्यू बॉर्न, और जिनके पास जिनको संतान का बच्चों का सुख नहीं है वो परेशान है, हर तरीके की बीमारियों की, सीजनल बीमारियां, मौसम बदलने की बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियां, आप बस एक नंबर घुमाइए और आपकी फैमिली की खुशियां वापस आएंगी। 4374383399 आयुर्वेद और हर्ष गुरु जी 4374383399 गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू जी।
2: क्या आप ओंटारियो में अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से कानूनी और बेफिकर होके? विवेक गुप्ता, जो 2012 से अपनी इंजीनियरिंग टीम के साथ लीगल बेसमेंट, मल्टी यूनिट कन्वर्जन, कमर्शियल परमिट और बिल्डिंग अप्रूवल के काम में लोगों की मदद कर रहे हैं, होम एक्सटेंशन जैसे पूल, डेक या गराज बनवाना हो या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन और परमिट के लिए अभी कीजिए बात, विवेक गुप्ता हर पल आपके साथ। कॉल 6479731733, फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल 6479731733।
3: घर लेना हो या करना हो रीफाइनेंस, अब मॉर्गेज की टेंशन को बोलो गुड बाय इन एडवांस। पहला मॉर्गेज हो या सेकंड मॉर्गेज का काम, सुखी कौर के साथ मिलेगा आसान समाधान। सेम डे क्लोजिंग हो या लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, हर मॉर्गेज सॉल्यूशन के लिए बस एक कॉल कीजिए। 5% हो, 10% हो या 15% डाउन पेमेंट, सही गाइडेंस के साथ आसान बने अरेंजमेंट। तो फिक्र कैसी, क्यों होना परेशान, बस सुखी को कीजिए कॉल। सुखी हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल। बिल्कुल सही सुना आपने, सुखी कौर, कॉल 6474087066। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल 6474087066।
2: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
4: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कॉन्टेंट, बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ। कॉल 416-303-3639, 416-303-3639।
5: क्या आप सुन रहे हैं?
6: क्या आप सुन रहे हैं?
5: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
6: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
5: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
7: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416-303-3639, it's 416-303-3639।
0: रेडियो टोरंटो कनाडा, और इसी के साथ मैं शिवानी और आमिर, हम दोनों आपसे लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ की होती है आपसे जल्द मुलाकात, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, इंजॉय द लॉन्ग वीकेंड, और अपनी दुआओं में हमें जरूर शामिल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और नंबर टू कॉल ऑलवेज यही नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द शो, आफ्टर द शो, किसी भी जानकारी के लिए 416-303-3639, 416-303-3639। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गॉड ब्लेस।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jang mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर फ्राइडे की इस शानदार दोपहर में. वेल, फ्राइडे आते ही चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और इस बार तो बात कुछ और ही है क्योंकि सामने है थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड. एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द लव्ड वंस आउट देयर हु आर लिसनिंग टू मी, हु आर सपोर्टिंग मी नोइंगली एंड अनोइंगली. आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट ऑल योर सपोर्ट, माई फैमिली. ऊपर वाले का आशीर्वाद तो खैर रोजाना ही हमारे सर पर रहता है, उनका शुक्रिया तो सबसे पहले हम यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं. और अच्छी बात है ना दोस्तों, जब कोई आपके लिए कुछ करता है उसका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है. दिल में एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखना बहुत जरूरी है. जब हम अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखते हैं, अपनी सक्सेसेस जो होती हैं और हमारे साथ जो लोग हैं उनके सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो बस हमारे साथ जो लोग हैं ना वो और जुड़ते जाते हैं और पॉजिटिविटी जुड़ती जाती है. इट्स नॉट द क्वांटिटी that matters, it's the quality that matters. और यहां पर मैं एक पर्सन का खास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगी जो इस शो की बैकबोन है, विनी, हमारी स्टूडियो इंजीनियर, who is always very happy and smiling and always coming up with the best of the best ideas. Even if I'm having a bad day, she has the smile on her face. So विनी, thank you so much for being there. तो आज दोस्तों एक सिर्फ हॉलीडे का माहौल नहीं है, एक बड़ा खूबसूरत रिमाइंडर है कि जिंदगी में जो लोग हमारे साथ है ना उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वो हमारे साथ नहीं रहेंगे ना, दैट्स व्हेन वी मिस देम. तो आज का पॉजिटिव थॉट कि जिंदगी की असली दौलत वो लोग हैं जिनके साथ हम खुलकर हंस सकते हैं और जिनके सामने हमें कुछ बनने का दिखावा नहीं करना पड़ता. तो इस मौके पर कहना चाहूंगी कि रिश्तों की मिठास यूं ही बनी रहे, हर चेहरे पर मुस्कान सजी रहे, दौलत से नहीं अपनों के प्यार से हर घर में खुशियों की रौनक बनी रहे. तो इस लॉन्ग वीकेंड थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए, अपनों को भी दीजिए और जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया है उन्हें दिल से थैंक यू कीजिए. और आज फ्राइडे का दिन है, आज हम खबरें नहीं करते लेकिन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लैश आएगी तो ज़रूर आपकी नज़र करेंगे. तो सबसे पहले हम बॉलीवुड का रुख करेंगे आज शो की शुरुआत में. और बता दें कि अगले दो दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कल बर्थडे है रेखा का, संडे को बर्थडे है अमिताभ बच्चन का. तो आज सबसे पहले हम पहले दो सेगमेंट्स में रेखा और अमिताभ बच्चन मेड फॉर ईच अदर कहते हैं, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी ऐसा कहा जाता है. अब मानना ना मानना हमारे ऊपर है, राइट. तो भाई बॉलीवुड में खूबसूरत चेहरे तो बहुत आए लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका अंदाज, अदाकारी और बड़ी मिस्टीरियस सी जो स्माइल है ना हमेशा दिलों पर राज करती है. 10th October यानी कल रेखा जी अपना 72nd बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी और बड़ी छोटी सी उम्र में फिल्मों में इन्होंने कदम रखा और सावन भादों से इन्होंने पहचान बनाई और इनके बारे में ड्यूरिंग द शो और बातें करेंगे. और फिलहाल मुकद्दर का सिकंदर से लिया गया बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर करेंगे चंद लाइनों के साथ कि हुस्न की पहचान सिर्फ चेहरे से नहीं होती, हर खूबसूरती की कहानी आईने से नहीं होती। कुछ शख्सियतें उम्र के साथ और निखरती जाती हैं क्योंकि उनकी चमक कभी जमाने से नहीं होती।

हमारी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, वेलकम बैक। शालिनी आपका वेलकम करती है। व्हाट अ प्लेजेंट डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनशाइन आउट देयर। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं ना आपकी जिंदगी में भी सनशाइन आ जाए, तो आपको ऐसी जगह जाना है जहां पर आपके चेहरों पर मायूसी नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात है ना, जो चेहरे हैं वहां पर वो मायूस नहीं दिखते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। When you go to some place, वहां पर जाते ही अगर आपको मायूस से चेहरे नजर आते हैं ना, तो आपकी एनर्जी वैसे ही डाउन हो जाती है। तो ये बड़ी वाइब्रेंट जगह है जहां पर हंसी खुशी का माहौल रहता है, चाहे आप कितने भी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपका स्ट्रेस जो है वो पूरी तरह से जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व हो जाती है, विच इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और कैसे सॉल्व होती है जानने के लिए आइए चलते हैं और रुक करते हैं हम उस ड्रीम लैंड में जिसका नाम है विन लाइफ टाइम, आपको सिखाता है जीतना जिंदगी भर। जॉइनिंग अस नाउ इज रेनाउन ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी। राफी जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
2: जी थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस राफी जी। तो कल की फिर तैयारी पूरी, जो आपका सेमिनार होने जा रहा है, और हम ये चाहेंगे कि आई नो आप पूरी तरह से इस वक्त फुल होंगे, आपके सारी सीट्स भर चुकी होंगी, लेकिन क्या कोई गुंजाइश है अगर अभी भी हमारे लिसनर्स आपके कल के सेमिनार को ज्वाइन करना चाहें तो?
2: जी एब्सोल्युटली, देखें कल है, थैंक्स फॉर गिविंग द लॉन्ग वीकेंड भी है, तो ऑफ कोर्स आप जल्द से जल्द ऑफिस को कॉल करके पूछ लें कि अगर आपको अकोमोडेट किया जा सकता है। अदरवाइज एवरी सैटरडे 1 PM वी डू दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एप्लीकेशन।
1: एंड आई मस्ट थैंक यू राफी जी, आज तो थैंक्स गिविंग का दिन है, तो आज मैं बस सुबह से जो जो जरूरी लोग हैं ना मेरी जिंदगी के, उनको मैं थैंक्स दे रही हूँ। और आप भी एक बड़े, बहुत बड़े पिलर ऑफ सपोर्ट हैं। विन लाइफ टाइम हमारे साथ पिछले 18 सालों से साथ साथ चल रहा है, और कम्युनिटी की तरफ से भी मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी, क्यों इतने लोगों की जिंदगियां आपने सुधारी हैं, और इतने थोड़े से एफर्ट्स लगाकर, सिर्फ 1-2 घंटे का वक्त देकर इतना बड़ा मैजिक आपने क्रिएट किया है।
2: जी देखिए, इसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को भी क्रेडिट जाता है। 18 साल से हम आपके साथ हैं, लेकिन जो मेजर चेंज 2023 के बाद आया है, उसमें हमें लोगों को अट्रैक्ट करना भी आसान हो गया, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर है पैसों का वो खत्म हो गया है। 2023 के बाद कोई भी ऑनलाइन डे ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप आए, सॉफ्टवेयर सीखें, क्लासेस अटेंड करें, विद इन अ मंथ और टू आप रेडी हो जाते हैं, ताकि आपको एक ऐसी स्किल मिल जाती है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, हेंस द वर्ड विन लाइफ टाइम।
1: ऑसम। तो इस काम को करने के लिए राफी जी, किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है और कितना वक्त, कितना मनी इसमें इन्वेस्ट करना होता है?
2: देखिए, ट्रेनिंग में सबसे आसान कर दूं ना।

0: Pay at this number 905-206-1008. Rafi ji, thank you so much humse judne ke liye, and all the very best. Have a great weekend.
1: Thank you, ji. Take
0: You're most welcome. Bye-bye. हेलो
2: सर, आपका क्रिस्टल क्लियर वॉइस बहुत अच्छा लगता है ना, क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर वॉइस.
3: मैं सफिया बोल रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है. आपको यहाँ पे जो पुराने गाने जो लगाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वेदर मैं जरूर सुनती हूँ. प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और इसमें काफी सारी बहुत अच्छी बातें हैं. जब मैं जॉब से आती हूँ तो मैंने लगाया होता है, मैं सुनती रहती हूँ सारी बातें. आप सब लॉयर्स को बुलाते हैं और कोई आप अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं.
4: Your quote of the day and promotions that you advertise on the thing, and it's nicely done.
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
6: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
8: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुंचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन.
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल. क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस. चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है. कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं. अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 437-882-0639. That's 437-882-0639.
0: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s. मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज. ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844.
9: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
10: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
11: Yeah.

0: त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस। वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी आप लोगों का वेलकम करती है। व्हाट अ फैंटास्टिक फ्राइडे इट इज। बिल्कुल फॉल का मजा, फॉल के कलर्स आ चुके हैं बाहर, और आज तो बहुत ही खूबसूरत दिन है। थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत हो रही है आज से। तो चलिए मैं शुक्रिया देने का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे मेहमान का फॉर बींग विद अस, क्योंकि जब वो स्टूडियो में आते हैं तो एक तरह की बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, बड़ा सीखने को मिलता है उनसे। सो थैंक यू सो मच धर्म जी for being with us, and we truly appreciate you.
2: Thank you.
1: जी, और यश विंडोज एंड डोर्स का भी शुक्रिया, मिलियंस ऑफ लोग कर रहे हैं क्योंकि बड़ा मजा आता है उनको, चाहे 2 विंडोज इंस्टॉल करनी हो, चाहे 20 विंडोज, डोर्स, ऑफिसेज हो, घर हो, एक तरह का लुक चेंज हो जाता है उनके प्रॉपर्टीज का। और जब लोग वहां पर आते हैं और फिर कहते हैं कि वाह व्हाट अ हाउस और व्हाट एन ऑफिस।
2: थैंक यू। 5 किलोमीटर के एरिया में हमारी अगर विंडो लग जाए तो आपको वैसे 5 किलोमीटर के एरिया में ऐसी विंडो दिखेगी नहीं।
1: अच्छा, तो यू लिटरली स्टैंड आउट।
2: I love my jobs.
1: Awesome. That's what it is, Dharam ji. और मैंने कहीं पर पढ़ा था, if you love your job, तो it doesn't look like a job. इसीलिए आप लगता है सबसे पहले पहुंचते हैं अपने ऑफिस में और you are the last person to leave the office, isn't it?
2: एकदम, मैं पूरी सारी विंडो देखता हूँ और मैं थोड़ा रिलीजियस हूँ तो सबको पैर पड़ता हूँ।
1: और जब आपने मुझे कहा था कि मुझे फैक्ट्री में आके जरूर विजिट करना, और मैंने जब आपकी फैक्ट्री देखी तो शायद उस दिन से पहले मुझे पता नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड आई एम सेइंग इट ऑन एयर, कि इतनी सारी क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटीज। और उस दिन मुझे पता चला कि जो हम हजारों लाखों डॉलर्स एक्स्ट्रा देते हैं अपग्रेड्स करने के लिए बिल्डर्स को, वो आपकी तरफ से बाय डिफॉल्ट मिलता है और बिल्कुल आंखों के सामने लोग देखते हैं कि कौन सी बन रही है विंडोज।
2: इसीलिए ज्यादातर हमने होलसेल बंद कर दिया और ओनली रिटेल इसीलिए कर रहे हैं कि घर घर जाके जो प्योर प्रोडक्ट है वो सीधे सीधे सीधे कंज्यूमर के पास पहुंच जाए।
1: ऑसम। तो धर्म जी, क्या खासियत है, मैं चाहूंगी एक बार फिर से बताएं आपके प्रोडक्ट की, जो मेन USPs हैं फॉर विंडोज एंड डोर्स, प्लीज हमारे लिसनर्स को बताएं।
2: यश विंडोज एंड डोर 2012 में विंडो डोर की हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी और इसके बाद हमें लगा कि हमें डायरेक्टली ही सब कस्टमरों को विंडो देनी चाहिए। ये पूरी फैमिली ओन कंपनी है। आज अक्रॉस ओंटारियो में 14 साल में 19,000 जॉब प्लस हम जॉब कर चुके हैं। 34 इंस्टॉलर ओंटारियो में, हाईएस्ट इंस्टॉलर यस विंडोज के पास है।
1: वेरी नाइस, क्या बात है दोस्तों। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में वो इंस्टॉलेशन हो जिसमें कोई मिडलमैन हो ही नहीं, कि मतलब फैक्ट्री से आई और सीधे आपकी प्रॉपर्टी तक आ गई, उसमें मजा आता है। ये नहीं कि भाई कहीं पे मैन्युफैक्चर कराया, कोई और इंस्टॉल करने आया, इंस्टॉलर कह रहा है उसने मैन्युफैक्चर ठीक से नहीं किया, इसका लॉक खराब हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मनोवर में प्रॉब्लम आ रही है, वगैरह वगैरह। तो जब दोनों चीजें एक ही कंपनी से डील करते हैं धर्म जी, तो आई थिंक दैट एड्स वैल्यू।
2: पहले तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कैनेडियन वेदर के हिसाब से छोटे घर या बड़े घर में सब में सीनियर हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, एवरीवन हैज अ सेम राइट कि मेरे पास पैसे कम है तो मुझे सस्ती विंडो मिले या उसको महंगी विंडो मिले क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है। यहाँ कोई ऐसा भेदभाव होता नहीं है।
1: क्या बात,
2: सबको फ्रेम वही क्वालिटी की मिलती है, सबको ग्लास लोई 366 ही मिलता है, सबको मल्टी पॉइंट लॉक सिस्टम जो मिलती है वो 30 साल की वारंटी वाली मिलती है।
1: नाइस।
2: और सबको एक ही प्राइसिंग मिलती है।
1: ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। सो स्टाइल, लुक, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट, यू गेट एवरीथिंग एंड ब्यूटी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600, यश विंडोज एंड डोर्स। और अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात धर्म जी, आपसे बहुत लोग जुड़ रहे हैं बिजनेस सीखने के लिए। कई लोग होते हैं जो बिजनेस करते रहते हैं लेकिन उन्हें बिजनेस की ABCD नहीं आती, बस शुरू हो जाता है उनका बिजनेस। सो दे लव टू जॉइन योर ग्रोइंग टीम। सो व्हाट आर द ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज, कहाँ कहाँ अवेलेबल?
2: हमारे पास कारबोरो खाली अवेलेबल है।
1: अच्छा,
2: कारबोरो अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि आप व्यापारी हो, आपको स्कारबोर्ड तो ऑल द वे ओशवा तक अगर आपको पूरी एक कमान संभालनी है तो स्कारबोरो में शोरूम खुल सकता है और छोटे से कन्वीनियंस स्टोर से कम इन्वेस्टमेंट के विंडो डोर की फ्रेंचाइजी मिल रही है जहां आपको सेल्स सेल्स एंड सेल्स के सिवा कुछ नहीं करना।
1: Awesome.
2: हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, हम लोग मेजरमेंट करेंगे, हम गार्बेज डिस्पोज करेंगे, इवन दो वी आर शेयरिंग प्रॉफिट 90% विथ यू।
1: वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो 90% का प्रॉफिट इज समथिंग वेरी वेरी सब्सटैंशियल। तो अगर आप चाहते हैं इस ग्रोइंग टीम का हिस्सा बनना तो राइट अवे धर्म जी से बात करें और सारी इन्फॉर्मेशन ले 416-732-3600, that's 416-732-3600, Yash Windows and Doors। और कुछ ऐड करना चाहेंगे धरम जी?
2: अभी स्पेशली मंडे तक 5% एक्स्ट्रा ऑफर है। अच्छा। विंडो डोर पे 5%, विंडो डोर पेटियो डोर पर 10%, इसके सिवा सीनियर डिस्काउंट 3% अवेलेबल है। अच्छा। स्पेशल एड डिस्काउंट 2% अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर ये मंडे तक आप जॉब करवाते हो, फाइनल करवाते हो, जहां विंटर ज्यादा दूर नहीं है, तो 5% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है।
1: ऑसम, आपको मैं 5% थैंक यू कहती हूँ एक्स्ट्रा फॉर टुडेज डे। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए धर्म जी, मेनी थैंक्स टू यू, आप ऑल द वे आए एंड इट मींस अ लॉट टू अस। और फिर से आपका नंबर मैं बता दूं, 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600, यश विंडोज एंड डोर्स।
2: थैंक यू वेरी मच एंड अ वंडरफुल वीकेंड।
1: यू टू, टेक केयर। जी दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका वेलकम है ऑन CMR FM 101.3। और अब जो है हम अमिताभ बच्चन जी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और ये जो गाना है वो उन्हीं की नजर करते हैं और बड़ा मजेदार गाना है। और अभी रेखा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, अमिताभ का बर्थडे इज लैंडिंग ऑन संडे। तो अब संडे को है तो फ्राइडे को तो मजा मस्ती बनती ही है और डबल मजा डबल मस्ती बनती है। तो अब जो है गाना सेलेक्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, रेखा के लिए भी और अमिताभ के लिए भी। लेकिन भाई जो भी है कोई गाना तो बजाना ही था। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपकी नजर किया है, एक ऐसा ट्रैक है जिसमें पूरी फ्राइडे की मस्ती और एंटरटेनमेंट आपको नजर आएगा, आपको फील होगा। बहुत सारे लोग आए बॉलीवुड में, बड़ी सारी शख्सियत आई, लेकिन एक इंसान ऐसे हैं जिनकी आवाज सुनते ही पूरा सिनेमा हॉल जो है तालियों से गूंज उठता है। कभी एंग्री यंग मैन, कभी शहनशाह, कभी बिग बी, और इंडियन सिनेमा के महानायक की हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। और उनका बर्थडे है 11 अक्टूबर संडे और 84th बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 1969 में। 7 हिंदुस्तानी फिल्म से उनका बॉलीवुड सफर जो है वो शुरू हुआ। कई मुश्किलें आई शुरुआती दौर में। जब हम बड़े सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं ना, हमें लगता है इन्हें तो जिंदगी में कभी परेशानी आई ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल हीरो से जीरो बन गए और जीरो से वापस हीरो बन गए। तो ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि जिंदगी में कुछ भी परेशानी आए, आप वापस उठकर खड़े जरूर होइए और ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर अपना काम शुरू कीजिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है अमिताभ बच्चन के ऊपर कि जिस भारी और दमदार आवाज के करोड़ों लोग आज की डेट में दीवाने हैं, उसी आवाज को लेकर शुरुआती दिनों में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में जो है ऑडिशन के दौरान रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। कैन यू बिलीव इट, जैसे हम रेडियो पे बोलते हैं ऐसे अमिताभ बच्चन भी गए थे अपना ऑडिशन देने और इन्हें रिजेक्शन मिला। लेकिन उस रिजेक्शन को इन्होंने सफलता की पहली सीढ़ी बना लिया और अपने आप को किसी से कम नहीं समझा। तो चलिए ऐसे ही महानायक को हम सेलिब्रेट करते हैं शावा शावा के साथ मस्ती की रेलगाड़ी पर। एंजॉय।

0: वेल दोस्तों से शावा शावा अमिताभ बच्चन का बर्थडे है संडे को, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेगमेंट को पसंद करने के लिए। और अब आप बहुत पसंद करेंगे अगली आवाज जो हमारे स्टूडियो में जुड़ती है एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे, पवन मिड्डा जी फ्रॉम मिड्डा फर्नीचर गैलरी, स्पेशल स्पेशल ऑफर्स लेकर थैंक्स गिविंग वीकेंड के। पवन जी, मैनी थैंक्स टू यू फ्रॉम आवर साइड, मैनी थैंक्स टू यू फॉर बीइंग विद अस। और एक तरह से आप शॉन मीडिया के फैमिली मेंबर हैं और हमारे लिसनर्स के भी फैमिली मेंबर हैं। शुक्रिया फॉर बीइंग हियर इन आवर लाइव्स, वेलकम।
1: थैंक यू वेरी मच सभी भाइयों को मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर है और पांच लोकेशन से आपकी सेवा करते हैं। हम भी आपका थैंक्स करना चाहते हैं, आपका भी, आपके जितने सुनने वाले हमारे बहन भाई हैं उनको भी। और कहते हैं ना कोई जब खुशी का मौका है, थैंक्स गिविंग है, वीकेंड है, छुट्टी है, तो आपके लिए फर्नीचर आपके घर को सजाना चाहते हैं। अगर आप कोई भी फर्नीचर की आइटम सोच रहे थे तो आपके लिए दो चीजों का बेनिफिट दे रहे हैं आपको। एक तो आपको डिजाइनर कलेक्शन दे रहे हैं, एक आपको ये दे रहे हैं। अगर आपके अपने घर का फर्नीचर, पूरे घर का फर्नीचर लेना था और सोच रहे थे कि अभी तो पैसे नहीं, अगले साल लेंगे, ठहर के लेंगे, तो वो भी आपकी तमन्ना हम चाहते हैं कि अगले साल में मत ले जाएं, इसी साल में आप लें
0: जी।
1: आप सारे घर का फर्नीचर सिर्फ आप $111, जैसे शगुन होता है ना, शगुन को पैसे देने $111 पर मंथ आपको देने हैं 36 मंथ के लिए। और पूरे घर का बेडरूम सेट, वो भी हाइड्रोलिक की जो स्टोरेज वाला, बेड, ड्रेसर, मेरा नाइट टेबल, कैनेडियन मेड सोफा, लव सीट, डाइनिंग में मार्बल टेबल, 6 चीजें, मैट्रेस आपकी पसंद की, जो चाहे हार्ड लेनी है, सॉफ्ट लेनी है, मेमोरी फोम लेनी है या पॉकेट कॉइल लेनी है। और डाइनिंग टेबल में भी दो ऑप्शन दी जाएंगी, बेडरूम सेट में भी दो मॉडल आपको दिखाए जाएंगे, सोफा में भी दो मॉडल दिखाए जाएंगे। तो पेमेंट है $111 पर मंथ। और जो डिजाइनर फर्नीचर है, तो मान लो जैसे वही $100 पर मंथ के लिए आप $100, $110, $120 जो भी आपका बजट बनता है, या $70-$80 भी बनता है, तो डिजाइनर फर्नीचर के कोई आइटम्स है वो आप जो वाओ फैक्टर वाला बेडरूम सेक्शन जाना चाहते हैं, वाओ फैक्टर वाला सेक्शनल ले जाओ, कुछ भी ले जाना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी फाइनेंस से आपको वो करके दे रहे हैं आपको। तो आपको आना है मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: थैंक यू सो मच पवन जी। $111 पर मंथ पे तो आपने पूरी तरह से फिट कर दिए हैं अपने हाई एंड फर्नीचर हम सभी के घरों में, सो थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ नाइस डील। और पांच लोकेशन से सर्व करते हैं दोस्तों, एक दो लोकेशन नहीं है। middafurniture.com विजिट करें, गो टू योर नियरेस्ट लोकेशन एंड फाइंड आउट आपकी एलिजिबिलिटी, और ये अच्छा सा ऑफर ग्रैब कर लीजिएगा। 416-901-2810, दैट्स 416-901-2810। पवन जी थैंक यू सो मच, फिर आपसे जुड़ेंगे, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू जी।
0: दोस्तों इट्स 3:32 राइट नाउ और देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं। आपको बता दें टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं, बिजनेस क्लास का बड़ा अच्छा फेयर लगा है फरवरी से मार्च तक, दो बैग्स के साथ $4,560 नाउ। दिल्ली से टोरंटो वन वे नवंबर दिसंबर में 780 में, फिर दिल्ली से टोरंटो नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक रिटर्न फेयर है 1450। इटोबिको एंड ब्रैम्पटन टू लोकेशंस टू सर्व यू देओल ट्रैवल, 905-588-5100 एंड 905-588-4200। मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का फिर से वेलकम करती है शालिनी ऑन CMR FM 101.3। इट्स 333, वाओ इट्स अ डिवाइन नंबर 333, सो मेक अ विश एवरीवन। एक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
2: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: क्या आप अपनी लव लाइफ, मैरिज, करियर, हेल्थ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं? तो एक्यूरेट पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के जरिए पाइए अपने जीवन और आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की गाइडेंस। चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन अवेलेबल है। कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ पंडित रामकृष्ण आपकी सिचुएशन को समझकर सही गाइडेंस और सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। अपनी पर्सनल पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए आज ही कॉल करें पंडित रामकृष्ण 4378820639, दैट्स 4378820639।
4: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: California Awning and Canopy, largest awning supplier Canada-wide. घर हो या बिजनेस, अगर आपको चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो आज ही कांटेक्ट करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए. टॉप क्वालिटी मटेरियल्स, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस और कंपेटिटिव प्राइसिंग. चाहे बनवाना हो सनरूम या कस्टम कैनोपी, हर सोल्यूशन मिलता है प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ. अपनी आउटडोर स्पेस को बनाइए और ज्यादा फंक्शनल एंड ब्यूटिफुल. कॉल करें 416-831-4790 or visit 24 Regan Road, Brampton. California Awning and Canopy. Style bhi, protection bhi. सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है. यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है. एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हां, जड़ से इलाज किया जाता है. आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो. 647-327-8111 647-327-8111.
3: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, जमाना शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना. वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे यानी शालिनी के साथ ऑन सीएमआर एफएम 101.3 एंड इट्स अ थैंक्स गिविंग लॉन्ग वीकेंड, तो थोड़ी मस्ती, थोड़ा और एंटरटेनमेंट तो बनता ही है, राइट? तो भाई फ्राइडे की मस्ती को लेकर चलते हैं एक नेक्स्ट लेवल पर. और जब फिल्म हो हाउसफुल 5, कॉमेडी हो बड़ी, स्टार कास्ट भी हो ह्यूज, तो फुल ऑन पार्टी वाला मूड तो बन ही जाता है, इजंट इट? कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी की धुन पर थिरकते रहिए, जिंदगी की धुन पर थिरकते रहिए, हर मुश्किल में भी मुस्कुराते रहिए. खुशियों के लिए किसी मौके का इंतजार क्यों, हर दिन को एक नया जश्न बनाते रहिए. और आशा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जश्न होंगे. अगर कुछ गम भी है ना, तो खुशियों से उस गम को रिप्लेस कर दीजिए. ऑनेस्टली ट्राई कीजिए एंड यू विल बी एबल टू विन दैट गम, क्योंकि गमों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. जो लोग आपको ज़िंदगी में गम देते हैं, उनको हाथ जोड़ कर शुक्रिया अदा करें और अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में गमों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए. और यही आपको मिलती है मस्ती की रेलगाड़ी पर. एंजॉय करते हैं लाल परी, एंजॉय.

मित्र भाइयों, ये है GM 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनकुम और केम छो। बिंदर भाइयों, क्या आपने कैलेंडर देखा? क्या आपने कैलेंडर देखा? कल है उनका जन्मदिन, जिन्हें हम कहते हैं रेखा। हाँ जी, बॉलीवुड लीजेंड रेखा जी का कल जन्मदिन, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं आपके दोस्त जतिन।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: Haan, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ये है GTA की साउथ एशियन कम्युनिटी की आवाज जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ डेली 4:05 PM जरा सुनिए तो
4: हाँ जी महेंद्र भाइयों, ये है जैम 101.3 और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए चलते हैं जिंदगी जीतने के लिए, जीत लो जिंदगी विथ विन लाइफ टाइम। महेंद्र भाइयों, बेहतरीन ट्रेनिंग यहाँ ट्रेडिंग की मिलती है और फिर आप हर रोज बना सकते हैं 100 से 300, 400, 500 US डॉलर्स। पहुंचना होगा ट्रेनिंग के लिए 2601 मैथसन बुलेवर्ड ईस्ट इन मिसिसागा, यूनिट नंबर 208। डायल भी कर सकते हैं 905-206-1008, 206-1008। डिटेल जानकारी वेबसाइट पर winlifetime.com। आइए सीधे चलते हैं रफी जी के पास। रफी जी, जेएम 101.3 में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है।
5: जी थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स जी।
4: बहुत बहुत शुक्रिया रफी जी। रफी जी, आज का पहला सवाल विन लाइफ टाइम, एक झलक हमारे नए नए श्रोताओं को भी जरूर दीजिए।
5: जी, विन लाइफ टाइम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ऑनलाइन डे ट्रेडिंग के बारे में सारा बिजनेस सिखाता है। अगर आप न्यू कमर्स टू कनाडा हैं, सिंगल मदर हैं, लुकिंग फॉर ए जॉब हैं, स्टूडेंट हैं, इनकम एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो विन लाइफ टाइम का रुख करें, कल का सेमिनार अटेंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो ऑब्लिगेशन, सुने कि कैसे डे ट्रेडिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है।
4: बहुत खूब रफी जी, विन लाइफ टाइम में ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं रहती है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी दीजिए प्लीज।
5: जी, एक दफा आप डे ट्रेडिंग की दुनिया में आए, सॉफ्टवेयर सीखें, कोर्स अटेंड करें,
4: बहुत खूब,
5: बहुत सारी आपको ऐसी कंपनीज मिल जाती हैं जो आपको एज ए ट्रेडर हायर कर लेती हैं, तो वो भी हम आपके लिए अरेंज कर देते हैं।
4: बहुत खूब रफी जी, हमारे नए नए श्रोता को प्लीज बताएं क्यों कोई विन लाइफ टाइम ही ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करे।
5: जी, ट्रेनिंग इसलिए हमारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 18 साल से हम हैं, 4 ऑफिसेज कनाडा में हैं, 12,000 से ज्यादा लोगों ने हमसे रजू करके इस डे ट्रेडिंग की फील्ड में आए हैं। प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, वन मैन शो नहीं है, 30 का स्टाफ है, 7 दिन खुले होते हैं, किसी भी वक्त आप ऑफिस में आके हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इसलिए आके इन पर्सन सेमिनार सुनना बहुत जरूरी है।
4: वंडरफुल रफी जी, सेमिनार के बारे में जानकारी देकर आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस जरूर बताएं प्लीज।
5: जी एब्सोल्युटली, देखें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको winlifetime.com पे मिल जाएगी, आप आए देखें। 5 मिनट के इंटरव्यू में जितनी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो सबसे आसान है कि 1 o'clock tomorrow मिसिसागा में आए। winlifetime.com पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नंबर है 905-206-1008, 905-206-1008।
4: रफी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंदर भाइयों जरूर डायल कीजिएगा 905-206-1008, 206-1008। वेबसाइट विजिट कीजिएगा winlifetime.com। रफी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंदर भाइयों, ये है जैम 101.3, जतीन और अमिताभ के संग, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
5: थैंक यू।

0: क्रिकेट की आज की अपडेट्स ओनली ऑन जैम 101.3। जरा सुनिए तो।
1: वेलकम बैक, यू आर ट्यून टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, और मैं हूं आपका दोस्त अमिताभ। आइए अब रुक करते हैं क्रिकेट की कुछ हेडलाइंस का। रांची में हुई रनों की बारिश, लेकिन टीम इंडिया के हाथ से मैच फिर भी निकल गया। आइए सुनते हैं। 250 रन का टारगेट भी डिफेंड नहीं हो पाया आज टीम इंडिया से। रांची के JSCA स्टेडियम में इंडिया के 249 फॉर 5 के जवाब में वेस्ट इंडीज ने बनाए 252 फॉर 4 मात्र 18.3 ओवर्स में, यानी कि 6 विकेट विक्ट्री विद 9 बॉल्स रिमेनिंग एंड द 5 मैच सीरीज इज नाउ लेवल एट 1-1। शाई होप ने एक बार फिर कप्तानी नॉक खेला, सिर्फ 45 बॉल्स पर बनाए अनबीटन 102 रन। 9 सिक्सेस के साथ विनिंग सिक्स ने उनका 100 भी कंप्लीट किया और वेस्ट इंडीज की हाईएस्ट सक्सेसफुल T20I इंटरनेशनल चेज भी। नॉट सरप्राइजिंगली एंड नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस टूर, शाई होप वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द मैच। मैच का टर्निंग पॉइंट होप और रदरफोर्ड। वेस्ट इंडीज 58 फॉर 3 था, लेकिन दोनों ने 120 रन जोड़े। रदरफोर्ड के 84 ऑफ 37 बॉल्स, फिर शेपर्ड के अनबीटन 34 ऑफ ओनली 13 बॉल्स ने चेस को फिनिश कर दिया। इंडिया की बैटिंग में रहे प्लेंटी ऑफ फायरवर्क्स। संजू सैमसन 82 ऑफ 41, ईशान किशन 43, कप्तान श्रेयस अय्यर 40 और तिलक वर्मा 44 रन नॉट आउट। बड़ा टोटल जरूर बना, मगर विनिंग टोटल नहीं था ये। बॉलिंग में अली एडवांटेज खो गया। मयंक यादव ने 3 फॉर 36 लिए, लेकिन अक्षर पटेल ने 63 और कुलदीप यादव ने 53 रन कंसीड किए। वेस्ट इंडीज ने प्रेशर को बस बाउंड्रीज में बदल दिया। पाकिस्तान से आई है एक विनिंग हेडलाइन। रावलपिंडी में पाकिस्तान ने श्रीलंका के 182 फॉर 8 को चेस करते हुए 187 फॉर 6 18.5 ओवर्स में बनाए, यानी कि 4 विकेट विन। नए T20 कप्तान साहिबजादा फरहान के 89 और मास सदाकत के 50 से सीरीज में पाकिस्तान को मिली 1-0 की लीड। तो आज हमने देखा कि रांची में टीम इंडिया की बैटिंग तो अच्छी चली, पर बॉलिंग को जवाब ढूंढने होंगे। भारत वेस्ट इंडीज सीरीज फिर बराबरी पर। अगला मैच संडे यानी अक्टूबर 11 को इंदौर में खेला जाएगा और हम सब फिर हाजिर होंगे आपके साथ। दोस्तों, चलते चलते आपको बता दें कि ओंटेरियो में कल कई जगह पर अर्ली वोटिंग्स की प्रतिक्रिया आज से शुरू हो गई है, तो अगर आप इलेक्शन डे की भीड़भाड़ से बचना चाहते हैं तो इसका फायदा जरूर उठाएं। प्लीज रेफर टू योर वोटर इन्फॉर्मेशन कार्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। म्यूनिसिपल इलेक्शंस विल बी हेल्ड अक्रॉस द प्रोविंस ऑन अक्टूबर द 26th। मैं हूं अमिताभ, यू आर ट्यून्ड इन टू जैम 101.3। एंजॉय द लॉन्ग वीकेंड। बाय।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

0: डांडिया या गरभा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
1: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद सामान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: घर खरीदना हो, बेचना हो या इन्वेस्टमेंट का हो प्लान, कंफ्यूजन छोड़िए और जाने माने रियल्टी एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछिए अपना कोई भी सवाल। सुनिए रियल एस्टेट पर चर्चा विद पीके सभरवाल एवरी वेंसडे शाम 4:25 पर सिर्फ जैम 101.3 पर। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल विद पीके सभरवाल।
4: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: Skip ad का बटन ढूंढ रहे हैं, रेडियो पर तो वो होता ही नहीं। Your message heard completely by customers across the GTA.

हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जेम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतिन। आइए नजर करते हैं जीटीए पर। थैंक्सगिविंग वीकेंड पर बारिश की एंट्री। जीटीए में थैंक्सगिविंग का लॉन्ग वीकेंड शुरू हो रहा है, लेकिन मौसम कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक फ्राइडे और सैटरडे को तापमान करीब 19 डिग्री रहेगा। संडे को बारिश की संभावना है, जबकि मंडे को मौसम में कुछ सुधार हो सकता है और तापमान 22 डिग्री तक पहुंच सकता है। बिंद्र भाइयों, कनाडा का मौसम भी बड़ा मेहमान नवाज है। थैंक्सगिविंग पर हमने मेहमानों को बुलाया है और बारिश बिना बुलाए आने के लिए तैयार है। लगता है इस बार अम्ब्रेला लेकर ही जाना पड़ेगा। हाईवे 400 पर ट्रक में आग, ट्रैफिक प्रभावित। बिंद्र भाइयों, आज सुबह हाईवे 400 से हाईवे 401 वेस्ट की ओर जाने वाले रैंप पर एक ट्रैक्टर ट्रेलर में आग लगने से रैंप बंद करना पड़ा। इस घटना के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिंद्र भाइयों, टोरंटो में ट्रैफिक का हाल ऐसा है कि गाड़ी लेकर निकलो तो गूगल मैप से पहले घर वालों को बता दो, आज डिनर पर पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमें यही याद दिलाती है, सड़क पर सावधानी और सुरक्षित ड्राइविंग सबसे जरूरी। और टोरंटो में ब्लैक स्ट्रीट बॉयज का धमाका, टिकटों की बिक्री शुरू। 90s के मशहूर पॉप बैंड बैक स्ट्रीट बॉयज ने टोरंटो कॉन्सर्ट के टिकट की आम बिक्री आज से शुरू कर दी है। रॉजर सेंटर में फरवरी 2027 में होने वाले उनके कार्यक्रमों में अब और शो जुड़े गए हैं जो मार्च तक चलेंगे। एक जमाने में कॉन्सर्ट में जाने के लिए मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ती थी और अब परमिशन लेने से पहले बैलेंस देखना पड़ता है। बिंद्र भाइयों, खबरों की दुनिया में हर दिन नया अफसाना है। कभी मौसम, कभी ट्रैफिक, कभी संगीत का तराना है। मुस्कुराते रहिए दोस्तों, यही जिंदगी का खजाना है। यह जीएम 101.3, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: Win at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: It's Bollywood time. Let's go!
2: स्वागत एक बार फिर आप सभी का. मैं हूं अमिताभ और आप सुन रहे हैं जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. आइए जायका लेते हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों का ओनली ऑन जैम 101.3. चलिए रुक करते हैं. नाना पाटेकर स्टोरी में हुआ फ्रेश डेवलपमेंट. गोवा पुलिस ने उनकी डेथ के सर्कमस्टांसिस पर इंक्वायरी शुरू की. प्रोसीजरल केस रजिस्ट्रेशन अपने आप में रॉन्ग डूइंग इस्टेब्लिश नहीं करता. अमिताभ बच्चन का नाना पाटेकर को इमोशनल ट्रिब्यूट. बिग बी ने नाना पाटेकर को याद करते हुए उनका मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया गाते हुए वीडियो को शेयर किया. सलमान खान का डिजिटल अनाउंसमेंट. सलमान खान ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया. शॉर्ट वीडियोस के साथ फैन से डायरेक्ट कनेक्शन की नई शुरुआत है. वीकेंड स्ट्रीमिंग अपडेट. इमरान हाशमी और दिशा पटानी की आवारापन 2 आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो गई है. आमिर खान प्रोडक्शंस का वंस अपॉन अ माइक. कम्यून के साथ नया ओपन माइक प्लेटफॉर्म पोएट्री रैप और रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग को स्पॉटलाइट करेगा. शाहरुख रणबीर और आलिया दिखेंगे एक ही फ्रेम में. नए रुंगटा स्टील कमर्शियल में फिल्म रेफरेंसेज और हुक्का बार डांस फिनाले के साथ तीनों स्टार साथ में नजर आएंगे. फिल्मों की दुनिया से फिलहाल इतना ही. अब म्यूजिक का मूड बनाए रखें. मैं हूं अमिताभ. आप जुड़े हुए हैं विद जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.

नमस्कार, मैं हरसिमरन सिंह। हमारा ब्रैम्पटन शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी बुनियादी सुविधाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं? पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल सड़कें, साफ पानी और सुरक्षा सेवाओं के लिए आपकी आवाज को रीजन तक पहुंचाना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं वार्ड 9 और 10 से रीजनल काउंसलर पद का उम्मीदवार हूँ। एक बड़े बदलाव के लिए आने वाली 26 अक्टूबर को अपना कीमती वोट हरसिमरन सिंह को दें। ऑथोराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: Traffic slow ho sakta hai, lekin mauj masti nahi. Jam 101.3 on CMR with Jatin and Amitabh. Daily 4-5 PM. Zara
4: आज मेरे भाइयों, ये है जीएम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतिन। कनाडा में नौकरियों का बड़ा संकट। सितंबर में 68,300 नौकरियां खत्म हुई। कनाडा में आज रोजगार को लेकर एक चिंताजनक खबर आई है। कहते हैं नौकरी की तलाश में सुबह से शाम हो जाती है, कभी रेज्यूमे भेजते भेजते जिंदगी तमाम हो जाती है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2026 में कनाडा में लगभग 68,300 नौकरियां कम हो गई। अगस्त में 41,700 नौकरियां गई थी, यानी केवल दो महीनों में लगभग 1,10,000 नौकरियां कम हो गई। बेरोजगारी दर अगस्त के 6.4% से बढ़कर सितंबर में 6.5% हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बजाय सरकारी क्षेत्र में ज्यादा नौकरियां कम हुई है। पहले लोग कहते थे बेटा पढ़ाई पूरी करो, अच्छी नौकरी मिल जाए। आजकल तो लगता है पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे जरूरी कोर्स है हाउ टू राइट अ परफेक्ट रेज्यूमे एंड टू फाइंड द जॉब। बंदर भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 35,000, हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंट में 23,000 और मैन्युफैक्चरिंग में 12,000 नौकरियां गायब हो गई है। इस साल की शुरुआत से सितंबर तक कनाडा में कुल 41,200 नौकरियां की शुद्ध कमी दर्ज की गई है। वक्त मुश्किल है मगर उम्मीद का दामन न छोड़िए। मंजिल देर से मिले तो भी हौसलों को साथ न छोड़िए। ये है जीएम 101.3 जतिन और अमिताभ के संग। हम हैं आपके दोस्त जतिन।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: साथ साथ चलते।
1: जी मित्र भाइयों, जुड़ो वॉइस और हम आपके दोस्त जतीन टीम अरोरा के कप्तान परवीन अरोरा जी से बात करने का वक्त हो चुका है। मित्र भाइयों, एवरी वीक हमें रियल एस्टेट के करंट ट्रेंड के बारे में अपडेट देते हैं और साथ में उनके प्रोजेक्ट्स, लिस्टिंग्स और बेहतरीन इंफॉर्मेशन देते हैं रियल एस्टेट के बारे में 20 ईयर्स प्लस इन द बिजनेस। बेनर भाइयों, आइए सीधे चलते हैं परवीन जी के पास और उसके बाद एक बार बात और मुलाकात तो उनसे बनती ही है। जरूर कॉल कीजिएगा 416-910-8923 teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट और एजुकेट करें। ओवर टू यू सर।
2: जतिन जी, मेरी तरफ से हमारे सभी लिसनर्स को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जैसे कि हम एवरी वीक अपने लिसनर्स को मार्केट का अपडेट देते हैं और उसके साथ साथ हम जो नई प्रॉपर्टीज मार्केट में लेके आते हैं उनके बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले तो जतिन जी, मैं मार्केट का थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा कि मार्केट में इन्वेंट्री का नंबर ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, नंबर ऑफ सेल्स भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और दूसरा, ये जो वीकेंड है अमित आपने जतिन जी, ये लॉन्ग वीकेंड है और इस लॉन्ग वीकेंड पे थैंक्स गिविंग वीकेंड है। मेरी तरफ से सभी को लॉन्ग वीकेंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस लॉन्ग वीकेंड पे भी जतिन जी हम लोग काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे मंडे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम मोर देन 50 ओपन हाउसेज इस वीकेंड के ऊपर लगा रहे हैं और आप हमारे किसी भी ओपन हाउस पे विजिट करना चाहें आप विजिट कर सकते हैं। सभी की जानकारी हमारी वेबसाइट पे है। और जो प्रॉपर्टीज हम मार्केट में लेकर आए हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए हमारे पास एक टाउन हाउस लेकर आए हैं माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के पास, जो कि ब्रैम्पटन में है। और ये जो टाउन हाउस है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। और ये जो टाउन हाउस है जतिन जी, हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 595 का। 595 में आपको कॉन्डो भी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको टाउन हाउस मिल रहा है और वो भी पार्किंग और गैराज के साथ। और इसी के साथ 140 स्काई हार्बर, ये भी जो टाउन हाउस है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। ये फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा रोड के पास है और ये जो टाउन हाउस है इसका बेसमेंट बना हुआ है। इसी के साथ अगर कोई हमारे लिस्नर बर्लिंगटन में इंटरेस्टेड है तो बर्लिंगटन में हम 1420 ओकमोंट, ये भी जो है टाउन हाउस है बर्लिंगटन के एरिया में, और ये जो टाउन हाउस है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर इस एरिया में लेना चाहे तो। इसी के साथ ही हम जो सेकंड टाइम बायर्स है उनके लिए काफी प्रॉपर्टीज लेकर आए हैं 42 डॉक साइड, ये जो है डिटैच घर है 410 और सैंडलवुड के एरिया में। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी बेसमेंट बनी हुई है, रेंटेबल अपार्टमेंट है, आप इसको रेंट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही हमने अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाई है 999 पे और इसकी इस वीकेंड के ऊपर हम ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। इसी के साथ फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में हम एक और डिटैच घर कॉर्नर लॉट लेकर आए हैं 2 Stone Crop, और ये जो डिटैच घर है 2 Stone Crop सेकंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है अगर हमारे कोई भी सेकंड टाइम बायर इस एरिया में देख रहे हैं। इसी एरिया में हमारे पास एक प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं जी क्रेडिट व्यू के ऊपर 9165 क्रेडिट व्यू, ये जो प्रॉपर्टी है रवीन लॉट है, बेसमेंट इसका बना हुआ है, सेकंड टाइम बायर के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है 9165 क्रेडिट व्यू रोड। और इसी के साथ इसी नेबरहुड में हमारे पास दो और प्रॉपर्टी है 37 एल्बन मार्कल, ये जो प्रॉपर्टी है 37 एल्बन मार्कल, ये 3 कार गैराज का घर है साइड बाय साइड और इसकी बेसमेंट है वो बनी हुई है। जतिन जी, एक बार ये घर अंदर से जाकर देखने वाला है विद स्पाइस किचन, जो मेन किचन है या घर का जो मेन फ्लोर है, आपको ऐसा लगेगा कि कभी कोई यहाँ पे रहा ही नहीं, बिल्कुल लाइक ए ब्रांड न्यू। और उसी नेबरहुड में एक और प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं 80 रॉयल वेस्ट, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली उन्होंने रेनोवेट की है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड ये भी प्रॉपर्टी है। और अब बात करते हैं मिसिसागा में, मिसिसागा में हमने 1829 सैमुअलसन सर्कल, ये जो प्रॉपर्टी है डिटैच घर है, इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है, ये भी प्रॉपर्टी सेकंड टाइम बायर के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है सैमुअलसन सर्कल के ऊपर। और इसी के साथ साथ जी अगर हम बात करें, कोई हमारे जो अपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हैं और कैलेडन के एरिया में, कैलेडन में हम 91 रसबेरी वॉकआउट बेसमेंट रवीन लॉट है कैलेडन के एरिया में। अगर हमारे कोई लिसनर कैलेडन के एरिया में इंटरेस्टेड है, बड़ा एक्सक्लूसिव नेबरहुड है और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी सेकंड थर्ड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। इसी के साथ जी अगर कोई विटवी के एरिया में भी कोई देखना चाह रहे हैं तो विटवी में हमारे पास 88 फेजेंट रिज, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वॉकआउट रवीन और बेसमेंट बनी हुई है और ये जो घर है बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है, थोड़ा ही टाइम हुआ है इसको बने हुए और ये जो प्रॉपर्टी है और बिल्डर जो उस नेबरहुड में जिस प्राइस पे प्रॉपर्टी बेच रहा है सिमिलर जतिन जी, उससे ये प्रॉपर्टी हमने 2 लाख से भी ज्यादा नीचे लगाई है। अगर हमारे कोई लिस्नर विटवी के एरिया में इंटरेस्टेड है, अगर कोई भी हमारे लिस्नर जैसे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह देख रहे हैं तो कैम्ब्रिज के एरिया में हमने एक 6 प्लेक्स लगाया है और ये जो प्रॉपर्टी है 916 क्वींस्टन और ये जो है मल्टीप्लेक्स है 6 प्लेक्स है, मतलब बहुत अच्छी इनकम की अपॉर्चुनिटी है, आप वहां पे खुद भी रह सकते हैं और आप इसको रेंट भी कर सकते हैं। इसके बिना भी जतिन जी हमारे पास बहुत इन्वेंटरी है, हमारे पास 125 से ऊपर हैं जो लिस्टिंग्स हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग हम इन्वेंटरी कैरी करते हैं। फर्स्ट टाइम बायर हो, सेकंड टाइम बायर हो, कमर्शियल कोई देख रहे हो, कोई प्लाजा देख रहे हो, टोरंटो में नॉर्थ यॉर्क में जतिन जी हमने प्लाजा लगाया है 5.7 कैप रेट के ऊपर, जो कि आज की मार्केट में बड़ी ही जैसे कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि टोरंटो में हम 3-4% कैप रेट पे प्लाजा बेचते थे और वो भी मिलते नहीं थे। आज आपको 5.7 कैप रेट के ऊपर ये प्लाजा है जो अवेलेबल है। उसके साथ साथ हमारे पास जतिन जी एक हमने जॉर्ज टाउन में एक ट्रक यार्ड की ऑप्शन है, ये हमने सेल के ऊपर लगाई है क्योंकि हमारे बहुत लोग हैं ट्रकिंग के फील्ड में, अगर किसी को ट्रक यार्ड की चाहिए ऑप्शन तो जॉर्ज टाउन में हमने ये ऑप्शन है लगाई है। 1.29 एकड़ के करीब है जो इसकी लैंड है और अगर आप इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा जतिन जी 416-910-8923 और इस वीकेंड पे हमने जो भी ओपन हाउसेज लगाने हैं उसके बारे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं और मेरे से और हमारी टीम की तरफ से सभी को थैंक्स टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जतिन जी।
1: परवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैनर भाइयों जरूर कॉल कीजिएगा 416-910-8923 teamarora.com है वेबसाइट। परवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू जतिन जी।
3: अगर फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में है आपका इंटरेस्ट लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हो तो कॉल कीजिए कुमार 905-929-4881। कुमार आपको अपनी कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी आप इजीली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन। बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस। टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर कॉल 905-929-4881 और विजिट kumartradessolutions.com।

0: फ्रेश फ्रूट्स, हर तरह की ग्रोसरी आइटम्स और इंडिया से आया आपका मनपसंद सामान मिलेगा अब बेस्ट प्राइसेस पे, क्योंकि आपके अपने शहर में आ गया है अनाज मार्ट। डेली ग्रोसरी हो, चावल, दालें, आटा, देसी घी, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन का बाकी जरूरी सामान, सब कुछ अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी और बढ़िया प्राइसेस पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आज ही विजिट करें अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड और मेफील्ड रोड का कॉर्नर, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42A, ब्रांटन, 905-928-8557, अनाज मार्ट।
1: मॉर्गेज रेट्स, रिन्यूअल्स, रीफाइनेंसिंग या अपने पहले घर का सपना, अप्रूवल कैसे मिले, पेनल्टीज से कैसे बचें और सही मॉर्गेज कैसे सेलेक्ट करें, हर सवाल का मिलेगा सीधा एंड प्रैक्टिकल जवाब। ट्यून इन टू मॉर्गेज मास्टर क्लास विद अयाज हर थर्सडे शाम ठीक 4:30 PM लाइव ऑन जैम 101.3।
2: नमस्कार ब्रैम्पटन, मैं बलजिंदर सिंह नहल। मैंने अपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है, सड़कों के गड्ढों से लेकर हमारे पार्कों की हालत तक, ट्रैफिक की बढ़ती परेशानी से लेकर सिटी सेवाओं में आने वाली ढील तक। बढ़ता क्राइम और करप्शन आज हमारे शहर की बड़ी हकीकत बन चुके हैं, लेकिन याद रखिए, एक अच्छा और सुरक्षित शहर सिर्फ कागजी वादों से नहीं बल्कि जमीनी काम से बनता है। आपके ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक खत्म नहीं होंगे, इन्हें सिटी हॉल तक ले जाना और इनका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बदलाव के लिए आगे आइए, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसिलर उम्मीदवार, वार्ड 9 और 10, ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
4: घर कहीं भी लेना हो या

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: उसके पैड का बटन ढूंढ रहे हैं, रेडियो पर तो वो होता ही नहीं।
4: Your message heard completely by customers across the GTA.

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमिताभ और आप जुड़े हुए हैं विद जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। लॉन्ग वीकेंड जोर जोर से हमें पुकार रहा है, पर अब वक्त है भारत की कुछ लेटेस्ट हेडलाइंस का। आइए सुनते हैं। नई दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, कल से वोटर लिस्ट प्रोटेस्ट से पहले पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ा, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के एलिगेशंस को रिजेक्ट किया। दिल्ली ट्रैवल अलर्ट, प्रोटेस्ट के आगे ट्रेन कैंसिलेशंस और 57 मेट्रो स्टेशंस के क्लोजर्स अनाउंस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रिकंसीडर करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन का नया लिमिट, वोटर डिलीशन के लिए फॉर्म 7 सबमिशंस अब रिवाइज पीरियड में 10 पर पर्सन और रेगुलर अपडेटिंग में 5 पर मंथ तक लिमिटेड होंगे। पंजाब पुलिस लीडरशिप अपडेट, 4 साल तक एक्टिंग डीजीपी रहने के बाद गौरव यादव को रेगुलर चार्ज मिला, पर कोर्ट के परमानेंट अपॉइंटमेंट डायरेक्टिव के बाद ही ये फैसला आया। टीसीएस शेयर्स में बाइंग, स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन्स और एआई बिजनेस ग्रोथ पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, शेयर्स नियरली 4% तक चढ़े। क्रिटिकल मिनरल्स पर स्ट्रेटेजिक पुश, सेंटर एक महीने में स्टॉक पाइलिंग पॉलिसी फाइनलाइज करने की तैयारी में है। बैटरी और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स को डिसरप्शन से बचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई जा रही है। तो ये थी भारत की कुछ लेटेस्ट हेडलाइंस। मैं हूं अमिताभ, यू आर ट्यून्ड इनटू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। जरा सुनिए तो।

और इसी के साथ वीकेंड की घंटी बज चुकी है जनाब। ड्राइव सेफ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मजे करिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, और अगर ट्रैफिक में फंस भी गए तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैम 101.3 है ना आपके साथ। मैं हूं अमिताभ, मिलते हैं फिर से मंडे को ठीक 4 बजे। जैम 101.3, जरा सुनिए तो।

एंड हियर वी मीट अगेन ऑन द डे जहां सूरज दादा भी रहे पूरे दिन खिले खिले, तापमान रहा इन डबल डिजिट्स मेकिंग इट प्लीजिंग ऑल द वे, और सोने पे सुहागा कि इस फॉल सीजन में भी हम सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे का साथ इन ओपन ग्राउंड्स विद ढेर सारा म्यूजिक मैजिक एंड टैलेंट लाइव एट 14th एडिशन ऑफ कनाडा दिवाली Rasmataz. मैं तो पहुंच चुकी हूँ भाई एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर. इट्स अ वंडरफुल इवनिंग टुनाइट एंड पहला दिन है आज 3 दिन के फेस्ट का. 6 बजे से शुरू हो जाएंगी आज की परफॉर्मेंसेस जहां हाईलाइट परफॉर्मर रहेंगे जसबीर जैसी. आप सबने वो गाने गाए होंगे, सुने होंगे और उन पे डांस भी किया होगा. दिल्ली की कुड़ी गुजरात दी एंड द लिस्ट इज लॉन्ग. और साथ में रहेगी धमाकेदार परफॉर्मेंस कथक रॉकर्स की. फ्यूजन होता है बहुत अच्छा. विवेक अग्निहोत्री ऑफ ताशकंद फाइल्स कश्मीर फाइल्स फेम वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक स्पेशल अनाउंसमेंट करके जाएंगे. वो आपको सुनने के लिए यहाँ होना होगा. आप भी इस अमेजिंग इवनिंग का पार्ट बने और परफॉर्मेंसेस एंजॉय करें, मेमोरीज बनाएं. अच्छी चीज क्या है, कोई टिकट नहीं लेना आपको, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आना है अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ और एक अच्छा सा टाइम एंजॉय करना है. एंड यस, एक ब्राइट सी इवनिंग रहेगी यहाँ. खाना पीना पूरा होगा, पूरा का पूरा मेला लगा है. दिवाली की शॉपिंग भी अभी से शुरू कर सकते हैं. सो भाई मिलते हैं आज यहीं पर अभी फिल्मी नुक्कड़ के साथ जुड़े रहें और लाइव मेरे साथ हो जाएं एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर वाली नोट. दिस इज स्वाति एट कनाडा दिवाली रैज़मटाज़ 14th एडिशन मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर पे पहुंचेगा. मुझसे मिलना मत भूलिएगा. मिल मिल के मनाते हैं दिवाली आज से ही.

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बी इट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज। बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन। प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे। अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: सिटी हॉल विच ब्रेड ब्रेडफोर्ड ने तुहाडा टीटीसी किराया वधाया अते वार वार सर्विस विच कटौती कीती। उदों भी जदों उन्होंने कहा सी कि वो अजिहा नहीं करनगे, वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उसे तरह जिवें उन्होंने सस्ते करां, किराया कंट्रोल, पुलिसिंग अते बाइक लेना दे मामले विच कीता। ब्रेडफोर्ड कहंदे कुछ होर हन अते करदे कुछ होर, क्योंकि चोणां जित्तण लई वो कुछ भी कह सकते हैं। वो इदां दे ही हन कि तुसीं सचमुच उन्हां ते भरोसा कर सकते हो। अपने घर दे किराए लई, अपने टीटीसी किराए लई, अपनी सुरक्षा लई 26 अक्टूबर नूं फैसला तुहाडा है। Authorized by the Olivia Chow Campaign.

0: इडियट्स हो या ट्यूजडेज, फिल्में तो दोनों ही हैं हमारी फेवरेट, और दोनों को ही लिखने वाले चेतन भगत से होंगी आपकी भेंट। फिल्म स्टोरीज इंस्पिरेशन सब पर करेंगे वो लाइव कॉन्वर्सेशन एट क्लासिक लीजेंस इंडियन फिल्म फेस्टिवल। सिनेमा से है प्यार तो इससे आप न कर पाएंगे इनकार। फॉर डिटेल्स विजिट mycliff.in।
1: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 p.m.
0: राइट, फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर आप हैं स्वाति और पायस के साथ। एक टाइम है नाउ एक फ्रेश फ्रीज न्यू रिलीज आपको सुनवाने का। तो गाना मैंने जैसे ही सुना मुझे लगा कि अरे यार ये तो आपसे इंट्रोड्यूस कराना बनता है। इट्स एन इंडी पॉप सिंगल बाय अमित त्रिवेदी, माय फेवरेट, विच इज वेरी मोटिवेशनल। यू नो जैसे कि सिंकिंग स्पिरिट जब लिफ्ट अप हो जाती है ना किसी गाने को सुन के, जोश आ जाता है वो अपना टाइम आएगा टाइप। हालांकि ये बहुत सॉफ्ट वर्जन है उसका, नो रैप शैप। ये कहता है कि एक दिन यू नो मेरे सामने जमाना झुकेगा, आसमां झुकेगा और एक दिन मैं उड़ेगा। चिनैन अहमद के वोकल्स हैं, लिरिक्स सिद्धांत मागो के हैं जो मुझे अच्छे लगे। कोई हैवी डिजिटल कमर्शियल बीट्स नहीं है, अकोस्टिक ड्रिवन है, कंटेम्प्रेरी पॉप स्टाइल है, रिदमिक है, जिसमें मेलोडी सुनाई भी देती है और महसूस भी होती है। सॉफ्ट नोट पे ट्रैक स्टार्ट होता है और धीरे धीरे यू नो थोड़ा सा रॉक पोर्शन, थोड़ा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अपनी स्पेस बनाते जाते हैं। वोकल हार्मोनीज जो हैं इसमें, उन्होंने इस गाने को अलग ही लेवल पे एनहेंस कर दिया है मैं कह सकती हूँ। नो ईडीएम क्लटर एट ऑल। लिरिक्स एक्चुअली विनर है इस गाने के। इट्स मैं उड़ेगा बाय अमित त्रिवेदी, फ्रेश ब्रीज न्यू रिलीज। सुने और बताए आपको कैसा लगा।

0: दिवाली होगी फुल ऑन मस्ती विद पंजाबी बीट्स एंड हैप्पी एनर्जी। कनाडा दिवाली राजमटाज में लाइव परफॉर्म करेंगे अपने जसबीर जस्सी एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर अक्टूबर 9, 10, 11। फॉर डिटेल्स विजिट canadadiwali.ca।
1: जी हाँ, जसबीर जस्सी पहुंच चुके हैं यहाँ, जहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ, मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर पे हूँ मैं। कनाडा दिवाली राजमटाज 2026 14th एडिशन को अपना कंट्रीब्यूशन देने, और आप सबको भी इनवाइट यही करना चाहूंगी जहाँ मैं हूँ। जसबीर जस्सी जी ना मेरे सामने स्टेज पे भी साउंड चेक कर रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, और मैं सोच रही हूँ साउंड चेक में इतना मजा आ रहा है तो जब ये एक्चुअली लाइव परफॉर्म करेंगे तो कितना मजा आएगा। इनके सारे हिट्स वो मेरे सामने जब छोटे छोटे यू नो साउंड चेक कर रहे हैं तो मतलब डांस तो अपने आप होने लगता है ना इनके गानों पर। बहुत अच्छा गाते हैं, यू नो ही इज अ वंडरफुल पर्सन, क्योंकि मैं जब इनसे मिली आते ही तो इतने प्यार से नमस्ते सत्याकाल करते हैं, यू नो वेरी पॉजिटिव वाइब। आप आए यहाँ पर इन्हें लाइव परफॉर्म करता हुआ देखें, इनके गाने आई एम श्योर आपको पता है कौन कौन से हैं, दिल्ले की कुड़ी गुजराती 96 एंड देन कोका एंड देन यू नो अभी जो आपने एक सुना अच्छा सा, अभी सुनेंगे आप अच्छा सा, अभी मैं चलाने वाली हूँ इनका एक और गाना, और लिस्ट इज लॉन्ग लॉन्ग द लश्कारा है वो बहुत हिट है, और बहुत सारे गाने गाने वाले हैं। इतना अच्छा सा म्यूजिक बैंड है इनका यहाँ पर, और सिर्फ यही नहीं है, जसबीर जस्सी तो है ही, उनके लिए तो आपको आना ही है। आज विवेक अग्निहोत्री जी भी स्टेज पर एक बहुत खास अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उन्होंने ताश कन फाइल्स बनाई है जो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट मूवीज है, कश्मीर फाइल्स बनाई है और बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन आज क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं स्पेशल, उसके लिए आपको यहाँ आना होगा, आपको लाइव सुनेंगे आप, यू नो यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्टोरिकल मोमेंट। और कथक रॉकर्स, हमने कुमार शर्मा जी से बात भी करी थी है ना, कथक रॉकर्स की उनकी टीम जो होगी वो परफॉर्म करेगी अमेजिंग फ्यूजन कथक, बॉलीवुड एंड कथक का एक बढ़िया सा फ्यूजन, तो ट्रीट तो है भाई यहाँ पे अच्छी खासी। और बाद में एक टोरंटो सितार, बहुत अच्छा सा सितार आपके लिए प्ले किया जाएगा, परफॉर्मेंसेस हैं, मेला शेला पूरा लगा हुआ है जो मैं देख रही हूँ रौनक के बाहर। खाना पीना इतना बढ़िया बढ़िया है, आप जो चाहे खाना चाहे आपको कोई ना कोई फूड स्टॉल अपनी पसंद का जरूर मिल जाएगा, दिवाली शॉपिंग के लिए जगह मिलेगी, दिवाली से पहले दिवाली मनाने का एक यू नो मूड सेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको पहुंचना कहाँ है, मिसिसागा में सेलिब्रेशन स्क्वायर में आना है, इट्स फ्री इवेंट, यस इट्स अ 3-day फ्री इवेंट, आपको सिर्फ आना है अपनी झील लेके, अपनी उमंग लेके, अपना उत्साह लेके, और परफॉर्मेंस में तालियां बजानी है, आप अपने आप बजाएंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी व्हेन यू आर हियर। एंड रिमेम्बर इट्स अ फ्री इवेंट, आएंगे, खाना पीना आपकी मर्जी है, जो मर्जी वो खाएं, नहीं मर्जी ना खाएं, पर परफॉर्मेंस देख के दिल आपका खुश होने वाला है। तो आज आएंगे तो जसबीर जस्सी साहब भी मिलेंगे, जो जो मैंने हाइलाइटर्स बताए वो सारे मिलेंगे, कल कौन कौन होंगे उसकी रिपोर्ट तो मैं आपको कल दे सकती हूँ, लेकिन ये बता देती हूँ आप canadadiwali.ca पे जाएं, canadadiwali.ca, वहां पे सारी डिटेल्स 3 दिन की इवेंट्स की, कौन कौन सी सेलिब्रिटीज किस दिन परफॉर्म करेंगी, वो सारा आपको मिल जाएगा। वैसे इसका हिस्सा ऋचा शर्मा भी होने वाली है जो बहुत अच्छा गाती है, इसका हिस्सा चंकी पांडे भी होने वाले हैं, इसका हिस्सा खान साहब भी होने वाले हैं जिन्होंने धुरंधर के गाने गाए हैं, और बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंसेस रहेंगी, तो बी अ पार्ट ऑफ दिस, डोंट मिस दिस, आ जाएंगे और मुझसे मिले बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, स्टेज के आसपास मैं भी मिल जाऊंगी, सो सी यू सून हियर, जल्दी से आ जाए।

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: हम होंगे आपके साथ हमेशा।
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: अब फायदा उठाएं अक्टूबर के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 5 इयर्स वेरिएबल 3.45% व्हिच इज प्राइम माइनस 1, 3 इयर्स फिक्स 4.29%, 5 इयर्स फिक्स 4.39%। साथ ही हॉट हॉट कैशबैक भी अप टू $5,600 और एक गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा अप टू $1,500। कॉल अमित खुराना नाउ एट 647-341-2785, 647-341-2785 और विजिट amitkhurana.ca।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
3: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
2: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं ना तुम अच्छा गाते हो।
3: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
4: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

मैं देख रही थी कि इज ऑल्सो वर्ल्ड पोस्ट डे विच इज द एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो कि 1874 में हुआ था इन स्विस कैपिटल बर्न में और ये डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड पोस्ट डे बाय यूपीयू कांग्रेस इन टोक्यो जब हुआ था जापान में इन 1969 तब से सभी देश पूरी दुनिया भर में पार्टिसिपेट करते हैं एनुअली इन द सेलिब्रेशंस ऑफ दिस डे यानी कि अक्टूबर 9th एज वर्ल्ड पोस्ट डे. अब पोस्ट की बात आती है तो लाल से जो हमारे घरों में घर के आसपास लगे होते थे पोस्ट ऑफिस के बॉक्सेस वो जहन में आते हैं या फिर डाकिया एक यूनिफॉर्म में जो आता था और दिवाली वगैरह पे उनको हम इनाम भी देते थे और कैसे इंतजार रहता था वो याद आते हैं और बहुत सारी यादें चिट्ठियों और जो पोस्ट कार्ड्स पढ़ने में लिखने में जो मजा आता था वो याद आते हैं. वो अब मेल में नहीं है पोस्ट आजकल बन के रह गई है इंस्टाग्राम पोस्ट स्नैपचैट पोस्ट फेसबुक पोस्ट ये ही सब मायने रह गए हैं पोस्ट के और साथ में जो खत जिनका इंतजार रहता था लव लेटर स्पेशली वो भी आजकल यहीं पे सोशल मीडिया में पूरा हो जाता है आदान प्रदान.

movies released Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच. फ्राइडे है तो वीकेंड वॉच तो बनता है. तो भाई कोई मेजर हिंदी फिल्म तो रिलीज नहीं हुई है थिएटर पर इस हफ्ते, पर ओटीटी पर कुछ नया जरूर है. पहले तो नेटफ्लिक्स पर क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है रिपोर्टिंग लाइव, इसमें परिणीति चोपड़ा है, देवेन भुजानी है, आदिल हुसैन है, शेखर सुमन है, अमोल पालेकर भी है लीड रोल्स में. कहानी एक यंग रिपोर्टर की और उसके कैमरामैन की जो एक इलीगल सैंड माइनिंग रैकेट को बेनकाब कर रहे हैं और फिर कैसे कैसे चैलेंजेस वो फेस करते हैं. न्यूज रूम बैटल्स, करप्शन, सबका मिक्स है इसमें. सब्जेक्ट बोल्ड और सोशली रेलेवेंट है, पर प्रेडिक्टेबल एग्जीक्यूशन आप कह सकते हैं, इसमें आपको पता होगा कि आगे क्या होता है तो मजा कम रह जाता है. वेल इंटेंशनड है बट कन्वेंशनल है एंड एक्साइटिंग थोड़ी कम है. देन अमेजॉन प्राइम पर रोमांटिक ड्रामा इश्का इश्का रिलीज हो रही है. इट्स अ वेब सीरीज. हेली शाह, अनुष्का कौशिक और सत्यजीत दुबे है इसमें. उनका लव ट्राइंगल है एंड इट एक्सप्लोर्स अ फाइन लाइन बिटवीन लव एंड टॉक्सिक ऑब्सेशन. कहानी एक दोस्ती की है, बचपन से जो दोस्ती है कैसे लव अफेयर में बदलती है, फिर कैसे ऑब्सेशन एंड पोजेसिवनेस में. लड़का तो मूव ऑन कर जाता है पर लड़की नहीं कर पाती, और उसके बाद कुछ कुछ आपको लगेगा कि अरे ये तो गुप्त फिल्म की कहानी चल रही है. ग्रिपिंग स्टोरी है एंड क्या होगा उसके लिए तो फिल्म देखनी होगी, मतलब वेब सीरीज. बट इस वेब सीरीज में आखिर तक ये आपको मुझे लगता है इतना बांधे नहीं रख पाएगी जितना मैं रिव्यूज पढ़ पा रही हूँ, बट आई वुड लाइक टू वॉच इट. देन देयर इज साला आशिक ऑन जियो हॉटस्टार, रोमांटिक ड्रामा सीरीज है. कहानी इसमें एक फॉरबिडन रोमांस की है, फॉरबिडन बोले तो इंटरकास्ट मैरिज जो कि होनी पॉसिबल इतनी अभी भी नहीं होती कई जगह भारत में, तो रिस्पेक्टिव फैमिलीज तैयार नहीं होती. और इसके बाद इसमें पॉलिटिकल टर्न आ जाता है, फाइट फॉर सर्वाइवल. ये पढ़ते हुए मुझे इश्क ज्यादा याद आ रही थी इवन ट्रेलर देख के भी. अब उसके से कितनी मिलती है कितनी अलग है उसके लिए तो देखनी पड़ेगी, बट ओवरऑल इसको रिव्यूज बेटर मिले हैं बाकी दो से. ऑनर किलिंग्स की बात हो रही है इसमें, परफॉर्मेंसेस कह रहे हैं बहुत अच्छी है. ताहिर राज भसीन की, मिथिला पारकर हैं, चंकी पांडे हैं. तो ये अगर आपको तीन में से एक चूज करनी पड़े तो इसकी तारीफें ज्यादा हैं. बाकी कैनेडा दिवाली रैसमटास तो है ही, 14th एडिशन मिस सागा सेलिब्रेशन स्क्वायर पे जहाँ पे मैं आज हूँ. अक्टूबर 9, 10, 11 तीन दिन का ये फेस्ट है, फ्री है आपके लिए. आपको सिर्फ यहाँ पहुँचना है और फिर सेलिब्रिटीज जो हैं भारत से आए हुए वो आपके लिए परफॉर्म करेंगे बॉलीवुड से. स्टार स्टडेड है पूरा और एक अच्छा सा मंजर रहेगा. तो इट्स फ्री, खाना पीने का मज़ा आप लीजिएगा. यहाँ पे पूरा मेला लगा है, वो आपको खरीद के खाना होगा, लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगे और दिवाली की शॉपिंग भी. समय है आपका तो चॉइस भी होगी आपकी. सी व्हाट यू वांट टू डू विद योर टाइम ओवर दिस वीकेंड.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
2: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
3: घर कहीं भी लेना हो या

0: फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844 दैट्स 6478648844
1: और विजिट teamsabarwal.com.
2: योर सर्च एंड्स हियर.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: गेट ऑन योर फीट विद पेपी नुक्कड़ बीट्स।

होती है दिल की जुबा. ये सुन के मुझे याद आ गया कि यस ट्रेंडिंग टुडे वाज अ वर्ड साइट डे आल्सो, कि आंखें सिर्फ देखने का काम ही नहीं करती है, बहुत से इमोशंस भी बयां कर देती हैं. सो टेक केयर ऑफ योर आई साइट लाइक यू टेक केयर ऑफ योर फेस, योर स्किन, योर फिजिक, योर हार्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेल्थ एज योर अदर स्टफ इज. सो चेकअप टाइमली कराते रहें आंखों का, गाजर वाजर खाते रहें और अखियां शखियां लड़ाते रहें. चलते हैं एक और गाने की तरफ, गुस्ताखियां बाय आदेश श्रीवास्तव फ्रॉम द मूवी आंखें.

सोचो अगर कथक और रॉक में हो जाए संगम तो क्या होगा? बन जाएगा कथक रॉकर्स। सेलिब्रिटी परफॉर्मर कोरियोग्राफर कुमार शर्मा इज गोइंग टू परफॉर्म लाइव एट कैनेडा दिवाली राजमटास ऑन अक्टूबर 9, 10, 11 एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू विटनेस द मैजिकल फ्यूजन ऑफ रिदम कल्चर एंड रॉक। फॉर डिटेल्स विजिट canadadiwali.ca। क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज। बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन। प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर। बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे। अभी कॉल करें 647-222-2094, 647-222-2094।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz
2: 647-453-5353.
3: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: फिल्मों के पीछे का सच और सोच जानना चाहते हैं? Then who better than national and international awards के विनर विवेक अग्निहोत्री of Tashkent Files, Kashmir Files and Bengal Files. उनसे करें बेबाक बात at Classic Legends Indian Film Festival. For details, visit myclif.in.

0: 7 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: म्यूजिक चार्ट्स पर ये है ऑन टॉप, प्राइवेट स्टूडियो से नुक्कड़ इंडी।

इंडो कैनेडा आर्ट्स काउंसिल वापस लेके आ गए हैं अपना दिवाली रेसमेटस 14th एडिशन। इस साल भी धमाकेदार लाइनअप है सेलिब्रिटीज का, परफॉर्मर्स का एंड सेलिब्रेशन का एट सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा। 3 दिन का ये फ्री फेस्टिवल है ऑन अक्टूबर 9th, 10th एंड 11th, दैट्स फ्राइडे सैटरडे संडे, और हर दिन ढेर सारी कलरफुल परफॉर्मेंसेस हैं। भारत से सेलिब्रिटीज जो आ रहे हैं वो स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। पूछो कौन कौन आ रहे हैं। ऋचा शर्मा, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट सिंगर्स, वो आएंगी गाएंगी। जसबीर जस्सी होंगे, वो भी गाएंगे। चंकी पांडे आएंगे। चेतन भगत, अब इनकी बुक्स तो आपने पढ़ी होंगी, फिल्म भी देखी होंगी इनकी बुक्स पे जो बनी है 3 इडियट्स एंड 2 स्टेट्स, वो भी वहाँ होंगे। पल्लवी जोशी जो कि 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, विवेक अग्निहोत्री वो भी 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं कश्मीर फाइल्स और ताशकंद फाइल्स वाले, फिल्में नहीं देखी तो देख लीजिएगा पर ये दोनों भी होंगे और इनके साथ आप बातें भी कर सकते हैं क्लासिक लीजेंड्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि इसी के अंतर्गत है। उनके साथ मास्टर क्लास भी होगी एक्टिंग और फिल्म मेकिंग पर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। कश्मीर फाइल्स की गैला स्क्रीनिंग भी है ऑन अक्टूबर 10th एट नोएल रियान थिएटर, जहां पे आपको मौका मिलेगा इन लोगों से डिस्कशन करने का, क्वेश्चन और आंसर पूछने का ऑन द टॉपिक। बाकी मेला शेला पूरा लगा होगा। एंड यस, कथक रॉकर्स वाले कुमार शर्मा जी भी होंगे अपनी पूरी टीम के साथ परफॉर्म करने। तो 3 दिन की दिवाली फुल ऑन मस्ती और उमंग से भरपूर जो है, इन्हें आप अपने कैलेंडर में डालें और 9, 10 और 11 अक्टूबर को वहां जरूर पहुंचे। डिटेल्स के लिए canadadiwali.ca पर जाएं, और बाकी मैं भी वहां होंगी, मुझसे मिलना मत भूलिएगा।

0: Почемка. अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना न भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट। और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, खेतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

0: से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: अब फायदा उठाएं अक्टूबर के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 5 years वेरिएबल 3.45%, which is prime minus 1. 3 years fixed 4.29%. 5 years fixed 4.39%. साथ ही हॉट हॉट कैशबैक भी अप टू $5,600 और एक गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा अप टू $1,500. कॉल अमित खुराना नाउ एट 647-341-2785, 647-341-2785 और विजिट amitkhurana.ca।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
1: फॉलो अस ऑन फेसबुक, फिल्मी नुक्कड़, इट्स द फ्री टाइम।

स्टोरीज फिल्मों में होती है तेरी मेरी ही कहानी, कुछ सच्ची मुच्ची वाली, कुछ ख्वाबों ख्यालों वाली, फिर चाहे वो लव आजकल वाला हो या कयामत से कयामत तक वाला, या 1942 की लव स्टोरी हो या वो 1981 वाली कुमार गौरव और विजेता पंडित की डेब्यू फिल्म जिसके स्टार्स तो स्टार्स नहीं बन पाए, बट वेल फिल्म और उसके गाने आज भी है सुपरहिट।

जाएं तैयार फॉर द 14th एडिशन ऑफ कैनेडा दिवाली राजमचास, जहां सेलिब्रिटी लाइनअप में होंगी इस साल रिचा शर्मा परफॉर्मिंग लाइव हर सुपरहिट सॉन्ग्स इन हर दमदार आवाज एट मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर, अक्टूबर 9, 10, 11। कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फॉर डिटेल्स विजिट कैनेडा दिवाली डॉट

क्या आप बिजनेस ओनर, ट्रक ड्राइवर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और बैंक ने मॉर्गेज देने से मना कर दिया है? क्रेडिट स्कोर कम है या इनकम प्रूफ नहीं है? प्रॉपर्टी का अप्रेजल कम आया है और इसलिए क्लोजिंग नहीं हो रही? तो कॉल कुमार गौरव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्गेज सॉल्यूशंस, बीट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉर्गेज. बैंक्स हो या बी लेंडर्स, ही डील्स विद एवरीवन. प्राइवेट मॉर्गेज के लिए तो ही हैज लेंडर्स जो 48 आवर्स में क्लोजिंग करवा सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. बेसमेंट बनानी है तो भी फंड्स अरेंज करा देंगे. अभी कॉल करें 6472222094, 6472222094.

नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर यू आर विद स्वाति एंड पायस विनी एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। हमारा हैंडल रहता है rjswati_toronto, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और, आप हर सोशल मीडिया पे हमसे rjswati_toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं। दैट्स माय हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस। कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती है, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं, तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना। फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है, सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए, तो इट्स वेरी इजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। तो याद रखें rjswati_toronto, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर। माई नंबर इज 6478305042, दैट 6478305042।

That was from प्रेम रतन धन पायो. और जितना प्रेम रतन धन मैं सोच रही थी सूरज बढ़ जाते हैं ने पाया और दिया है नाम सबको, शायद ही किसी ने दिया लिया हो. एंड मोस्टली इट्स सलमान खान as प्रेम इन हिज films. वैसे इनकी फिल्मों में ना जो फैमिली फन, जो फैमिली बॉन्डिंग या फंडू सा म्यूजिक होता है ना अलॉन्ग विद दैट प्रेम, वो अपने आप में यूएसपी होता है इनके बैनर की, है ना. फ्रॉम दैट कन्फेशन ऑफ मैंने प्यार किया टू दैट क्यूट क्यूट क्वेश्चन हम आपके हैं कौन, एंड फ्रॉम दैट डिक्लेरेशन कि हम साथ साथ हैं टू दैट सर्टिफिकेशन ऑफ विवाह, इट्स अ चेन ऑफ वंडरफुल सिनेमा बाय सूरज बढ़ जाती है. और मैं देख रही थी कि ये जो उनका फिल्म मेकिंग टैलेंट है ना, ये तो उनके पापा से आया है, तारा चंद बढ़ जातिया. ऐसे ही सिंपल सा, सुंदर सा, साफ सुथरा सिनेमा बनाते थे वो भी. एंड ऑन दिस टैलेंट रन इन द फैमिली वाली नोट, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद द सॉन्ग जो कि तारा चंद बढ़ जातिया की ही एक फिल्म से है. गाना ये भी बहुत प्यारा है. हम मिलते हैं फिर कल, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्बे मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मतामू देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम जारी है, दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर 9052571342।

0: Assalamu alaikum. I'm your counselor candidate, Naila Saeed from Ward 7, Mississauga. I'm an educator, mother of three daughters, master's in public administration, and proudly serving the community last 28 years. Vote in support. Main 28 saal se community ke saath judi hoon aur maine apni successful business yahan establish kiya hai jiske zariye se hazaron subsidized child care spaces create hue hain, kai so jobs create hue hain. Now I want to make a real change in Ward 7. I'm bringing that practical, compassionate leadership on the table, and I need your help to be your voice. I need your support to become your representative for Ward 7, Mississauga, as a councillor candidate.
1: Shabana Hassan, founder of Key Financial Investment and Insurance Inc. aur unki team aapki har tarah ki financial planning mein aapki help kar sakte hain. Life insurance, supervisor insurance, visitor insurance, mortgage insurance, RDSPs, RESPs, RRSPs, TSFAs, FHSAs ke saath saath health and dental plans, disability and critical illness insurance, retirement planning aur state planning ki professional services ke liye aaj hi call kare Shabana Hassan 647-997-722. For let's secure your financial future together. Call Shabana Hassan 647-997-7224.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और appliances कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे.
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए next month.
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं.
2: That's wonderful.
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 volt का सारा सामान भी मिल जाएगा.
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: On Bowie Head, just west of McLaughlin. Telephone 905-450-2828 और visit bramptonappliances.ca.
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
5: जी हाँ 416-570-0157 अंजुम कुरैश साहब के रबते का नंबर एक्सेलेंट क्लेम का नाम आता है साथ ही अंजुम कुरैश साहब का नाम आता है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में आपको सर्व कर रहे हैं मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे वेरी रेनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाए आप गिर जाए इवन आपको टिकट मिल जाए बिल्कुल परेशान ना हो 416-570-0157 पे अंजुम कुरैश साहब से रबता कीजिए हमारे साथ आज के दिन मौजूद हुआ करते हैं खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैश साहब अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को भी आदाब नमस्ते सत श्री अकाल और जैसे कि हम हमेशा लेकर आते हैं एक अवेयरनेस आपके लिए कि अगर कार एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए हमेशा याद दहानी दिलाते हैं कि कार एक्सीडेंट हो जाना कोई इतने अचंभे की बात नहीं है लेकिन कम से कम आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वहां से 911 खड़े होकर कॉल करनी है अगर पुलिस नहीं आ रही है तो आप एक दूसरे के साथ जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसमें आपने लाइसेंस की तस्वीर उतारनी आगे पीछे से आपने रजिस्ट्रेशन कार रजिस्ट्रेशन की और पॉलिसी की तस्वीर उतारें और ये मैच करें कि जो आपने पॉलिसी की स्लिप ली है वो और ड्राइवर का नाम जो है वो सेम है कि नहीं है अगर ड्राइवर और स्लिप का नाम सेम नहीं है तो आप गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर उतार लें ताकि ड्राइवर को ट्रेस किया जा सके कि ड्राइवर इस गाड़ी का कौन है और ये देख लीजिएगा कि अगर आपकी एक्सपायरी वैलिड है या नहीं अगर आपकी एक्सपायरी वैलिड नहीं है तो फिर 911 कॉल करें और उनको कहें कि यहां पर एक्सीडेंट हुआ है लेकिन जो है जो ड्राइवर जो चला रहा था उसकी पॉलिसी एक्सपायर है वी नीड यू तो समटाइम वो आ जाते हैं क्योंकि सीन की रिपोर्ट सबसे बेहतरीन होती है अगर कोई आपके पास आता है आपका नाम पता पूछता है आपसे पूछते हैं कि कैसे हैं आपका मतलब ठीक है पानी पिएंगे वो आपके बेहतरीन विटनेस हैं उनसे जरूर जरूर आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनसे ले लीजिए ताकि आपको इंडिपेंडेंट विटनेस के तौर पे आपको वो काम आ सके मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी 416-570-0157 अगर आप कुछ पूछना चाहें तो
5: जी जी बिल्कुल जब एक्सीडेंट हो जाता है जाहिर है बाज लोग इंजर हो जाते हैं तो फिर उनकी कॉम्पनसेशन कुछ चर्से तक चलती रहती है वो बेनिफिट

0: कितने से तक मिलता है और केस कितनी देर में जो है वो फाइनल क्लोज हो जाता है?
1: आपका मतलब इनकम रिप्लेसमेंट?
0: जी, इनकम रिप्लेसमेंट, जी बिल्कुल
1: जी। IRB जो है वो उतने अरसे तक मिलती है जब तक कि आपका फैमिली डॉक्टर आपको लिख के दे कि आप काम पे नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ पर सबसे जो मेन चीज है आपका फैमिली, आप खुद डिसाइड नहीं करते, आपका फैमिली डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको एक महीने का ऑफ चाहिए, आपको दो महीने का ऑफ चाहिए, आपको लंबा ऑफ चाहिए, लेकिन डॉक्टर के नोट पे होता है। और जब डॉक्टर आपको कहता है कि आपको काम पे वापस जाना है तो पहले वो आपको मॉडिफाइड जॉब पे भेजता है, फिर आप अपनी परमानेंट जॉब पे जाते हैं। तो जितनी देर आपकी इंजरी है, जिस वक्त तक डॉक्टर आपको समझता है वो आपको नोट देगा। कितना अरसा बेनिफिट मिल सकते हैं, जितने अरसे का डॉक्टर का नोट आपके पास है। और केस कितना अरसा चलता है, अगर मिसाल के तौर पे आपकी माइनर इंजरी है, इसमें कोई हड्डी नहीं टूटी, ब्रेन इंजरी नहीं हुई, तो एक साल के बाद केस सेटल हो जाता है। अगर किसी की ऑन गोइंग सर्जरीज चल रही है, ब्रेन इंजरी है, बहुत सीरियस इंजरीज है, तो वो जो केस है दो दो तीन तीन साल भी चलते हैं, डिपेंड ऑन इंजरी। लेकिन जो भी, जब आप लॉयर के साथ बैठते हैं, लॉयर आपको गाहे बगाहे गाइड करता रहता है और तमाम तरह चीजें आपके सामने होती है, आपकी इंजरी आपके सामने होती है, आपको खुद पता होता है कि मैं कब बेहतर फील करूंगा, तब कहीं जाके आपका सेटलमेंट होता है। 416-570-0157 किसी भी कार एक्सीडेंट में, चाहे आप एट फॉल्ट हैं चाहे नॉट एट फॉल्ट हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर अपने पास संभाल के रखें, इंशाल्लाह मंडे को फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए,
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। 416-570-0157 416-570-0157 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM KP में गवर्नर राज एमरजेंसी लगाने के मामले के बायस वफाकी काबीना के अराकीन को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई है और वफाकी काबीना का इजलास भी जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। सदर मुल्कत आसिफ अलजरदारी, वज़ीर शहबाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम की शिरकत भी इसमें मुतवक्के है। इजलास में कौमी सलामती इदारों की रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया जाएगा। सबक फाटा के जमशुदा अजलास समेत 12 अजला में एमरजेंसी के नफाज की इस वक्त तजवीज है। सूबे में अहम इख्तियारात वफाक के इस्तेमाल करने की भी तजवीज है। जरा के मुताबिक आर्टिकल 232 से 234 तक गौर वगौस के बाद अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान है और हो सकता है कि वीकेंड पर यह इजलास बुला भी लिया जाए। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM और ये वक्त आपके लिए चलने का आज के इशारे के सेगमेंट की तरफ।
2: बारहा ऐसे भी अपने दिल को बहलाना पड़ा, शाम तन्हाई में यादों से लिपट जाना पड़ा। हर दफा पहली शनासाइयां ना याद आई उसे, हर दफा अपना तारुफ फिर से करवाना पड़ा। रेजा रेजा हो गए हैं आज मेरे ख्वाब, फिर आज एक पत्थर से फिर शीशे को टकराना पड़ा। ना रसाइयों की थकन ने कर दिया हलकान, फिर दश्त से निकले तो वापस दश्त में आना पड़ा। फिर भी हमने अकल को रहबर नहीं माना जलील, दिल के को हर फैसले पे हमको पछताना पड़ा। बारहा ऐसे भी अपने दिल को बहलाना पड़ा, शाम तन्हाई में यादों से लिपट जाना पड़ा।

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. پاکستان میں وزارت مذہبی امور، وزارت خزانہ اور قومی بجٹ کے اشتراک سے حج سیونگ پلان پر کام شروع کر دیا گیا ہے. ترجمان مذہبی امور کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد سود سے پاک حج سیونگ پلان متعارف کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. سیکرٹری مذہبی امور کی زیر صدارت وزارت خزانہ مرکزی قومی بجٹ کے نمائندوں کا مشاورتی اجلاس ہوا. ترجمان مذہبی امور کے مطابق عازمین حج سیونگ پلان میں ڈیجیٹل ذرائع سے ماہانہ رقم جمع کرا سکیں گے. پلان میں بچت کی مدت کا انتخاب اور فیملی ٹرانسفر کی سہولت بھی شامل ہوگی. ترجمان کے مطابق حج سیونگ پلان کے طریقہ کار اور دیگر تفصیلات مناسب وقت پر جاری کی جائیں گی. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک. پروگرام میں واپس آتے ہیں.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، آواز کا سفر دل سے دل تک. Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 اور Dundas کے انٹرسیکشن مسساگا میں باربیکیو کا اصلی مزہ باربیکیو ٹونائٹ پر. چرگا، لاہوری فش، چپلی کباب، کڑاہی گوشت، چکن تکا مسالہ، چکن بریانی، سیخ کباب، رشمی کباب، چکن بوٹی، چکن تکا، بہاری کباب، لیمب چاپس، افغانی تکا، نہاری اور بہت کچھ. خوبصورت کشادہ پیٹیو باربیکیو ٹونائٹ ریسٹورینٹ. 9052680088. اٹس 9052680088. ڈنڈاس کے انٹرسیکشن مسساگا. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% guaranteed approval. Call Shiraz Hussain 647-271-4147. 647-271-4147. ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسساگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ، لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن. 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ، بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن. 905-232-567.
2: سٹی ہال میں بیڈ بریڈفورڈ نے آپ کے ٹی ٹی سی کے کرائے بڑھائے اور بار بار سروس میں کٹوتی کی، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ اپنی بات سے پھر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے ان معاملات پر بھی کیا. کفایتی رہائش، کرایہ کنٹرول، پولیسنگ، سائیکل لینز. بریڈفورڈ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، کیونکہ الیکشن جیتنے کے لیے وہ کچھ بھی کہہ دیں گے. وہ بس ایسے ہی ہیں. کیا آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اپنے مکان کے کرائے پر، اپنے سفر کے کرائے پر یا اپنی حفاظت پر؟ 26 اکتوبر کو فیصلہ آپ کیجیے.
3: Authorized by the Olivia Chow campaign.
1: اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر اور ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے. اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں، بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو، اسکلڈ ورکر کلاس ہو، کینیڈین ایکسپیرئنس کلاس، اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ، تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی. دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں، ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ، ویسٹ میں ہائی وے 10 اور سٹیلز کا انٹرسیکشن. ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464. گرین سٹار امیگریشن. قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے. اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے. 416-671-0577. جی ٹی پھر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں. مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں. کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے، اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے. کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم. ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577.
4: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پیسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو.
5: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی، یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے، تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے.
6: ہانڈی مسالے، بالکل گھر جیسا سواد.
7: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-4000. 5550-746-5550.
8: Assalamu alaikum. Mera naam Zainab Azim hai. I'm running for mayor of Milton. Main Milton mein hi pali thi. I teach at Harvard University, Policy and Economics, where I did my master's. I worked at the Deputy Prime Minister and Minister of Finance's office for 3 years. And most recently, maine Zoran Mamdani ke campaign pe bhi kaam kiya hai. And this year, we are running to bring careers close to home, transit every 20 minutes to deal with the parking and traffic problems, and Alive After 5, which means more things to do in Milton so you don't have to go to Mississauga. Make sure to vote for Zainab Azim for mayor of Milton on October 26th, and you can find more at milton.com.
9: आज की बदलती दुनिया में कनाडा में डॉक्टर और लॉयर के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर का होना भी बहुत जरूरी है। क्या किसी इमरजेंसी में आप और आपकी फैमिली सरवाइव कर सकते हैं? आप अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन बचत नहीं होती। आप स्टेट प्लानिंग के बारे में क्या जानते हैं? इसी तरह आपकी इनकम तो कम है लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा देते हैं। क्या आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अच्छी हो रही है या फिर ना होने के बराबर? अगर एक भी सवाल का जवाब वाज़े नहीं तो आपको जरूरत है एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की। केयर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल लिमिटेड के आरिफ शेख और उनकी टीम आपके इन मामलों में आपको प्रोफेशनली गाइड करेंगे। आरिफ शेख ऑफ केयर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल लिमिटेड एट 416-722-1111 या लॉग इन हो careinsurance.ca फॉर केयर यू ट्रस्ट।
10: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
9: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
11: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। बेशुमार मरीज उनकी हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरासिस और सारी बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं। ब्रैम्पटन और स्कारप्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं। कॉल कीजिए 6473278111। It's 6473278111।
12: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM। Students mera pata ke number 416-593-0003। Sahaja Kerala Ayurvedic Herbal Consultation Center se hamare sath maujood hain Kerala Vidya Ratna PV Raj sahab, khandani vaid hain, nabz dekh ke bimariyon ko ilaaj karte hain. Zamana qadeem se jadi bootiyon se ilaaj ek authentic ilaaj hai aur iska koi side effect bhi nahi. Raabte ke liye inka number note kar le 6473278111 6473278111। वैद्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। वैद्य जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
13: सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
12: वैद्य जी बहुत बहुत वेलकम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे शो में आप हर हफ्ते तशरीफ लाते हैं। आयुर्वेदा असल में क्या है, कैसे काम करता है, उसके फायदे क्या है, थोड़ा आपके अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज।
13: ये दुनिया में असली धन अच्छा स्वस्थ है। मैं साजा केरला आयुर्वेदिक से वैद्य रत्नम पीवी राज हूँ। मैं हमेशा हमारा पेशेंट्स का तबीयत अच्छा रहने के लिए कुछ ना कुछ सलाह देते रहता हूँ हमेशा। हेल्थ इज वेल्थ। पुराना टाइम पे भी सभी लोग बोलता है आयुर्वेदा लंबी आयु का वरदान है। ये आयुर्वेदा हमारा जीवन में रहेगा तो हमारा सारी शरीर अच्छा हो जाता है। और आयुर्वेदिक का कमाल क्या है, कोई भी बीमारी को जड़ से निकाल देता है और लोगों का शरीर में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। उसका कारण से आगे फ्यूचर में भी कोई भी बीमारी शरीर को तकलीफ ना कर सकते, क्योंकि शरीर में उतना इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। दिस इज पावर ऑफ आयुर्वेद। हम सुबह से रात तक क्या क्या खाता है वो सब कुछ नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पेट से जरूर निकाल जाना है। ऐसा रहेगा तो पेट भी शुद्ध होता है, बॉडी भी शुद्ध होता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है। हमारा तबीयत अच्छा रहेगा तो हमारा माइंड भी अच्छा रहता है, हम फैमिली के साथ टाइम भी आराम से स्पेंड कर सकते, बिजनेस आराम से कर सकते, जॉब भी आराम से कर सकते। इसीलिए पहले तबीयत अच्छा रहना है, पैसे बंगला गाड़ी वो सब कुछ बाद में, वो सब कुछ आता ही जाता है, लेकिन तबीयत इम्पोर्टेंट है। तबीयत एक बार जाएगा तो पूरा फैमिली लाइफ पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इसीलिए तबीयत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हम इधर GTA में ब्राम्पटन एंड स्कारबोरो दोनों लोकेशन में रहता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6473278111, इट्स 6473278111।
12: नंबर नोट कर लें, 6473278111। अच्छा वैद्य जी, काफी सारे लोगों को मौसम के बदलने से अस्थमा की तकलीफ हो जाती है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है उनके लिए इसमें इजाफा भी होता रहता है, उनको कोई गाइडेंस दीजिए, कोई सलाह दीजिए उनको।
13: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। आस्थमा नवे डेज बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम वीक इम्यूनिटी के कारण से भी होता है, वेदर का कारण से भी होता है, जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चों को भी होता है। तो इसका कारण से लोगों को खांसी आ जाता है, कुछ लोगों को सर्दी पकड़ता है, कुछ लोगों को नॉक ब्लॉक हो जाता है, कुछ लोगों को चेस्ट में हेवी फीलिंग होता है, रात को सोने में आवाज़ आता है, वीजिंग आता है, रात को नींद भी बराबर नहीं मिलता है और आंख भी लाल लाल हो जाता है, आंखों में एलर्जी पकड़ता है, इचीनेस हो जाता है, चिक चिक भी आता है, स्नीजिंग बोलता है ना, स्नीजिंग भी आता है। इसका कारण से लोगों को बॉडी भी वीकनेस हो जाता है, कितना खाना खाएगा तो भी बॉडी को बराबर सूट नहीं होता है, थोड़ी देर चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए हमारा केरला में बहुत अच्छा जड़ी बूटियों है, वो दवाई खाने के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता है। हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, वीकनेस के लिए, और कुछ कपल्स को शादी होता है बहुत साल को पहले लेकिन बच्चा नहीं मिलता है, तो उसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो लोगों का शरीर में, उसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई है। और जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, वेट लॉस के लिए, लिवर इश्यूज होता है ना, फैटी लिवर, उसके लिए, बाल हेयर का प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, डायबिटीज के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए, माइग्रेन के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा दवाई मिल जाता है।
12: ये जनाब वैद्य जी कई पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी किस्म की कोई बीमारी हो, आप इनसे राब्ता कर लीजिए। 6473278111, इट्स 6473278111। वैद्य जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच,
13: नमस्कार।
12: नंबर नोट कीजिए, अभी कॉल कर लें, 6473278111, 6473278111।
0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। पाकिस्तान और श्रीलंका दरमियान पहला T20 मैच आज पिंडी में पाकिस्तान ने जीत लिया, 4 विकेट से श्रीलंका को शिकस्त दी है। कप्तान साजिद फरहान ने 89 रन की उम्दा इनिंग्स खेली है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। लाहिर उडारा ने 51 रन की 91 रन की उमदा इनिंग्स खेली, मेंडिस ने 23 रन बनाए। डेब्यू किया था मोहम्मद इरफान रंधावा ने, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, 4 ओवर में 21 रन के 2 खिलाड़ी आउट किए। नसीम शाह ने 3 विकेट ली, रजाउल्ला, शताब खान और साइम यूब ने भी 1-1 विकेट ली। और जबरदस्त पाकिस्तान की कारकर्दगी, सफदर फरहान के 89 रन, मास सदाकत के 50 रन, फखर जमान के 21 और ख्वाजा नाफ ने 12 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली। इमरान रंधावा ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो फास्ट बॉलर तो दोनों बहुत अच्छा उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। साथ ही रजाउल्ला थोड़ा सा अभी स्पीड पेस तो है लेकिन वो वेवर्ड हैं, उनकी स्कोर बहुत बनता है। शदाब भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। ख्वाजा नाफे मेखल विकेट कीपिंग उनके बस की बात नहीं है, बेहतर यह है कि उनको लाजमी तौर पर जो है वो चेंज ही कर दें। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM।